0: सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत आइए आप सुनते हैं सिद्धार्थ वर्मा का सितार वादन, राग है अहीर भैरव। संगत कलाकार हैं अभिषेक कोटनाला तबले पर।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सिद्धार्थ वर्मा का राग अहीर भैरव। सुबह के 6 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि

0: की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वांस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has said that India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade. But today, trust has become just as important alongside trade.
2: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
1: Mr. Modi further said the country is investing across sectors that will drive growth, innovation and opportunity for generations to come. He said that this is a defining period in India's journey where aspirations are reaching new heights. Mr. Modi said that at the G7's meeting in Evian, he emphasized the importance of partnerships based on trust. Prime Minister said India's message to the G7 summit was clear that global governance will only be effective when it is inclusive. Earlier, Modi was welcomed with the message Bonjour Modi or Hello Modi and chants of Bharat Mata Ki Jai. The Indian community in France gathered in large numbers chanting slogans of Modi, Modi and Bharat Mata Ki Jai. Prime Minister Narendra Modi has left for New Delhi after concluding his successful and productive visit to Paris, marking the third leg of his two-nation visit to France and Slovakia. In a social media post, Mr. Modi said that the India-France friendship will be

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। चिंतन कार्यक्रम में आइए सुनते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचार।

स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास प्रतिदिन अनेक लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। स्वामी जी से अपनी जिज्ञासा व्यक्त करके व उनसे समाधान पाकर लोग खुशी खुशी अपने घर लौटते थे। एक व्यापारी अपने जीवन में बहुत व्यस्त रहता था। उसका व्यापार बहुत तरक्की कर रहा था। वह अपने व्यापार में पूरी ईमानदारी बरतता था। ईश्वर में भी उसकी अटूट आस्था थी, किंतु उसे अपने व्यस्त जीवन में आराधना का समय नहीं मिल पाता था। वह अपनी इसी समस्या को लेकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचा। स्वामी रामकृष्ण बोले, इस प्रश्न का जवाब मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, पर पहले तुम मुझे यह बताओ कि क्या तुमने कभी किसी ग्रामीण स्त्री को ढेंकी से चूड़ा बनाते देखा है? स्वामी जी का यह अजीबो गरीब प्रश्न सुनकर व्यापारी बोला, नहीं स्वामी जी, मैंने तो किसी ग्रामीण स्त्री को ऐसा करते आज तक नहीं देखा। अरे, मुझे अपने व्यापार से फुर्सत मिले तब तो मैं कुछ देखूं। इस पर स्वामी जी बोले, चूड़ा बनाने वाली ग्रामीण स्त्री एक हाथ से चूड़ा पलटती जाती है।

तथा दूसरे हाथ से बच्चे को गोदी में लेकर दूध पिलाती रहती है। उस दौरान यदि कोई पड़ोसन या अन्य व्यक्ति उसके पास आता है तब वह उनसे बातें भी करती है, ग्राहक आने पर उनसे हिसाब भी करती है, किंतु इन सब के बीच उसका कार्य निरंतर चलता रहता है। इन सब कामों के बीच उसका ध्यान ओखली और मूसल पर लगा रहता है। वह भली भांति जानती है कि यदि थोड़ी सी भी असावधानी बरती गई तो मूसल हाथ पर गिरेगा और हाथ टूट जाएगा। उस ग्रामीण स्त्री की तरह ही हमें अपने सांसारिक कार्यों के बीच सर्वशक्तिमान ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए। उसके लिए अलग से समय नहीं निकाल पाने का पछतावा नहीं करना चाहिए। स्वामी जी के इस उदाहरण से व्यापारी भली भांति समझ गया कि व्यस्त रहते हुए भी ईश्वर की आराधना की जा सकती है। तभी स्वामी जी बोले, पुत्र एक बात और याद रखना कि कार्य और व्यापार में ईमानदारी बरतना, मन लगाकर काम करना भी ईश्वर की आराधना के ही बराबर है। व्यापारी स्वामी रामकृष्ण परमहंस से अपनी जिज्ञासा का उत्तर पाकर संतुष्ट हो गया और उन्हें प्रणाम कर वापिस चला गया।

0: चिंतन कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचार।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रस्तुत है रामचरितमानस से संगीतमय प्रस्तुति। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे बालकांड भाग 91।

राजर्षि जनक की यज्ञशाला जहां सीता जी का स्वयंवर आयोजित है। सभी राजे महाराजे अपनी सुंदरतम वेशभूषा धारण किए बैठे हैं। रंगभूमि में जनक सुता का प्रवेश होते ही देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, पुष्प वर्षा करती अप्सराएं गाने लगीं। चकित चितवन से सीता जी ने श्री राम को देखा, किंतु गुरुजनों तथा उपस्थित अतिथि समाज को देखकर वो सकुचा गईं। श्री राम की मोहिनी छवि हृदय में बसाकर वो लाज छुपाने हेतु सखियों को देखने लगीं। श्री राम तथा सीता का युगल मनोहारी रूप देखकर उपस्थित जन समुदाय मन ही मन विधाता से प्रार्थना करने लगा कि वो महाराज जनक को प्रेरणा दें कि वो अपना प्राण त्याग कर सीता जी का विवाह श्री राम से करते हैं। वृद्धावली गाते हुए भाटों ने

0: च कार्तज्ञ भावं ज्ञापितवान्। आगामी फरवरी मासे पुनः मेलनस्य आकांक्षां प्रकटयन् सः अवोचत् यत् प्रवासाय अस्माकं मैत्रीभावाय च धन्यवादः। वयं शीघ्रमेव फरवरी मासे पुनः मेलनाय प्रतीक्षामहे। जय हिंद। केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आभासीय माध्यमेन चतुर्णां राज्यानां कृते MSP इति न्यूनतम समर्थन मूल्येन बृहत् परिमाणे तिलहन क्रयणस्य स्वीकृतिम् अयच्छत्। कृषि मंत्रालयानुगुणम् एषः क्रयण संकल्पः तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा इत्येतेषु राज्येषु मूल्य समर्थन योजनान्तर्गतं प्रचलति। अस्मिन् ग्रीष्मकालीन ऋतौ उत्तर प्रदेशः सर्वबृहत् लाभार्थी राज्यत्वेन उदितः, यस्य कृते 98,2,84,000 मेट्रिक टन मितं मुद्गम, 97,2,97,000 मेट्रिक टन मितं माश, अथ च 18,7,41,000 मेट्रिक टन मितं कलाय क्रयणस्य अनुमतिः दत्ता। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयस्य सचिवः संतोष कुमार सारंगी न्यगादीत् यत् दृढ़ नीतिगत संरचनया अभिनव सर्वकारीय प्रयासैः भारतम् अद्य जगति नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रे प्रमुख देशत्वेन समुदेति। नवदिल्ल्याम् आयोजिते हरित एवं सतत विकास संधिः इत्याख्ये दशमे संवाद सत्रे नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा इति विषये भाषमाणः श्री सारंगी गत दशके भारतस्य अभूतपूर्व प्रगतेः उल्लेखं कृतवान्। तेन प्रतिपादितं यत् एषः विकासः मुख्यतया नवीकरणीय क्रयण अनिवार्यता, प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दिशानिर्देशाः सहैव स्वचालित मार्गेण 100% वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेशं करोति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वो साझा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में PM विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से PM किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वे ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण

कृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधा कृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारियों को कैसे सीमित किया जा सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने कहा है कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने भी कहा कि ईरान के दक्षिणी बंदरगाहों पर जहाजों का आवागमन सामान्य हो गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 से गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप ए में मैक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

संगीतिका कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं संघमित्रा चक्रवर्ती के गाए कुछ भजन। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं ललित किशोर की रचना, बोल है रे निर्मोही जब दरसिजा, स्वर संघमित्रा चक्रवर्ती का।

0: संगीतिका कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संघमित्रा चक्रवर्ती के गाए कुछ भजन। आपका साथ दिया था बांसुरी पर प्रमोद प्रसन्ना ने, सरोद पर दानिश असलम ने, हारमोनियम पर जाकिर धौलपुरी, सितार पर अकील अहमद और तबले पर प्रदीप्ता महाराणा। इसके साथ ही संगीतिका कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर 7:30 हुए हैं। अब वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का, और आज के इस कार्यक्रम में आपका साथ दे रहे हैं सिद्धार्थ और नवीन।
1: और दोस्तों, सुबह का वक्त कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी से भरा रहता है, और ये ऐसा वक्त होता है जब आप अपनी दिनचर्या को शुरू कर रहे होते हैं, पूरे दिन भर के लिए आप तैयार हो रहे होते हैं। और ऐसे में हम आपसे यही कहेंगे कि फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, भंवरों की तरह गुनगुनाते रहिए, चुप रहने से रिश्ते भी उदास हो जाते हैं, कुछ उनकी सुनिए कुछ अपनी सुनाते रहिए।
0: और सिद्धार्थ, किसी ने क्या खूबी कहा है कि वो जताता तो बहुत था मगर निभाना भूल गया, मुझे अपना तो कहता था मगर अपनाना भूल गया।

0: तो दोस्तों, जैसा कि बात हो रही थी कि किस तरीके से सुबह का वक्त सकारात्मक ऊर्जा वाला वक्त होता है, और नवीन, जैसा कि हम जानते हैं कि योग दिवस भी आ रहा है और हम सभी उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो सुबह सुबह के वक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम अपने मन को एकाग्रचित करते हैं, अपने स्वास्थ्य के ऊपर काम करते हैं, और थोड़ा सा सुबह अगर हम व्यायाम कर लेते हैं या योग कर लेते हैं तो पूरा दिन हमारा अच्छा गुजरता है।
1: सिद्धार्थ, अगर आप दिन भर बिजी हैं तो शायद सुबह का वो वक्त जब आप एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आपके दिन का सबसे बेस्ट टाइम वही होता है, क्योंकि तभी आप शांत बैठ के सोच सकते हैं ना कि आपको आज दिल की प्लानिंग कैसे करनी है, है ना सिद्धार्थ?
0: और बिल्कुल नवीन, और इसके साथ ही जब आप ये सब करते हैं, जब योग करते हैं, जब कुछ थोड़ा व्यायाम करते हैं, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है।

0: और आप दिन भर के लिए पूरी तरह से फिट एंड फाइन हो जाते हैं।
1: और ऐसे में अगर आपके कानों में संगीत की मिश्री ना घुले तो भाई ये ध्यान और ये योग थोड़ा सा अधूरा तो लगता ही है। अब देखिए, मैं और सिद्धार्थ आपके लिए बेहद चुनिंदा और खूबसूरत गीत लेकर आ रहे हैं जो मॉर्निंग में आपकी सुबह सुबह के ध्यान में इतनी एनर्जी डाल देगा कि आप दिन भर के लिए तरोताजा महसूस करेंगे, है ना सिद्धार्थ?
2: बिल्कुल, और हम यही कह सकते हैं कि बादलों की चादर ओढ़े सावन जब मुस्कुराता है, पपीहे की मीठी पुकार में दिल का दर्द छलक जाता है, एक बूंद की चाह में जैसे पपीहा आस लगाए बैठा है, वैसे ही मन भी अपने प्रिय और मिलन का गीत गाता है।
1: और हम बात कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत गीत की, 1971 में आई फिल्म गुड्डी के उस कालजयी गीत की जिसने हर दिल को झनकृत कर दिया था, बोले रे पपीहरा।

0: वाह क्या बात है। जब ये गाना बजता है ना सिद्धार्थ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वाणी जयराम की वो रेशमी आवाज और जया बच्चन का वो सादगी भरा अभिनय।
1: बिल्कुल। और नवीन, यहाँ पे अपने श्रोताओं को ये बता दें कि ये जो गीत आपने सुना है ये राग मियाँ की मल्हार पर आधारित गीत है, और मल्हार राग का संबंध सावन, बादल, वर्षा और इन सब की अनुभूति से मिलकर होता है। और इस गीत के संगीतकार वसंत देसाई और गीतकार गुलजार हैं, और दोनों ने मिलकर इस गीत को एक, जिसे हम कालजयी गीत भी कह सकते हैं, एक ऐतिहासिक गीत बना दिया जो लोगों की जबान पर हमेशा रहता है।
0: और रेडियो से जब भी ये गीत बजता है ना तो ऐसा लगता है कि दूर कहीं से पपीहे की आवाज़ चली आ रही है। गुलजार साहब के गीत, वसंत देसाई का संगीत, वाणी जयराम की आवाज़, जया बच्चन की सादगी भरा अभिनय, बहुत कुछ, इन सबको संजो के मैं और सिद्धार्थ, मैं नवीन और सिद्धार्थ आपके लिए लेकर आए ऐसे खूबसूरत गीतों का संकलन। लेकिन अभी मन की बात।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: कभी आंखें बंद करके बैठिए और सोचिए, ध्यान लगाइए कि क्या पुराने दिन अच्छे थे या आने वाले दिन अच्छे हैं, या जिन दिनों को आप जी रहे हैं वो अच्छे हैं। और कुल मिला के जब आपका ग्राफ कुछ ऐसा होगा जब आपके बीते हुए दिनों का जो है पीक वो सबसे ऊपर होगा, वर्तमान थोड़ा सा पैरेलल चलेगा और फ्यूचर का कुछ तो पता ही नहीं, है ना सिद्धार्थ?
1: बिल्कुल, क्योंकि हमेशा हम अपने अतीत, अगर कहते हैं ना कि अगर वर्तमान हमारा अच्छा हो, अगर हम वर्तमान को बेहतर कर दें तो हमारा अतीत अपने आप अच्छा हो जाएगा और भविष्य तो होगा ही, क्योंकि आज जो वर्तमान है कल वो अतीत होगा, और वर्तमान अच्छा करेंगे तो आने वाला भविष्य भी अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमें जीवन से जोड़ती हैं और इस जीवन के एक एक पल को खास बनाती हैं।
0: सिद्धार्थ, कभी कभी ऐसा लगता है कि मन कहता है कि जो बीती हुई स्मृतियां हैं ना वो हमेशा अच्छी ही होती हैं, क्योंकि हमें तब पता चलता है जब हम वर्तमान में जीते हैं, अरे पुराने दिन तो बहुत अच्छे थे, लेकिन हाँ आने वाले दिन भी खूबसूरत हों, इसलिए फिलहाल जो आप कर रहे हैं मन लगा के करिए, है ना?
1: बिल्कुल, जो आप कर रहे हैं नवीन कह रहे हैं कि उसे मन लगा कर करते रहिए। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी कोई काम आप दिल से करते हैं, जब दिल की बात सुनते हैं ना तो वो दिल तक पहुंचती है, वो कभी गलत नहीं हो सकती। तो अपने दिल की बात सुनिए, अपने मन की बात सुनिए, क्योंकि कहते हैं कि ख्वाबों की उम्र छोटी सही मगर रंग गहरे छोड़ जाती है, जवानी की हर एक धड़कन जिंदगी को गीत बना जाती है।

0: जी हाँ, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। बिल्कुल जैसा कि नवीन ने कहा कि हम फ्यूचरिस्टिक बात कर रहे हैं, हम आगे की सोच रहे हैं, और हमारा वर्तमान अच्छा है तो भविष्य भी अच्छा होगा, इसलिए कोशिश करना हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों नवीन?
1: बिल्कुल, कोशिश लगातार करते रहिए। और इस गाने को सुनकर मुझे एक बहुत अच्छी सी बात याद आती है, जब भी आप पहाड़ों की तरफ रास्ता अपना रुख करते हैं, बस में होते हैं, तो ये गाना ना सबसे पहले चलता है बस में। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, कहीं भी हो लेकिन मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, जिंदगी जीते रहिए।
0: बिल्कुल। और नवीन, जब गानों की बात चल रही है, गीत संगीत की बात चल रही है, गुड मॉर्निंग चल रही है, तो एक और गीत का यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। ओ हंसनी मेरी हंसनी, याद है तुम्हें ये गीत?
1: बहुत ही जहरीला इंसान का बहुत सुंदर गीत।
0: किशोर कुमार ने इस गीत को अपनी मधुर आवाज दी है, आर डी बर्मन का संगीत है और गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी। ये जो गीत है ये ऋषि कपूर और मौसमी चटर्जी पर फिल्माया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गीत की जो धुन है और इसके शब्दों में प्रेम की कोमलता के साथ विरह की हल्की सी कसक भी है, क्यों नवीन?
1: बिल्कुल। और उस पर किशोरदा की आवाज का वो जादू जो सीधे रूह को छू लेता है। तो चलिए बिना किसी देरी के और बिना किसी इंतजार के चलते हैं, क्यों सिद्धार्थ?
0: बिल्कुल। और चलते चलते ये आपसे कहेंगे कि हवा के साथ उड़ चले हैं कुछ पुराने ख्वाब भी, हवा के साथ उड़ चले हैं कुछ पुराने ख्वाब भी, तेरी यादों की हंसनी आज फिर दिल में उतर आई।

0: जी हाँ, हम तो यही कहना चाहेंगे कि हंसनी बनकर उड़ती हो सपनों के आकाश में, छोड़ गई हो मधुर तराने मेरे मन के विश्वास में। तेरी याद का एक पंख लिए दिल अब भी उड़ना चाहता है, जहाँ कहीं भी तुम हो प्रिय वहीं ये मन ठहरना चाहता है।
1: बहुत ही खूबसूरत कविता, लेकिन अब वक्त हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। सिद्धार्थ और कहता है कि हमें इस प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप करना होगा, यहीं अलविदा करना होगा। तो किस खूबसूरत गीत के साथ आज के इस प्रोग्राम को हम ख़त्म कर रहे हैं?
0: नवीन एक हिंट दे रहे हैं चार लाइनों के माध्यम से कि मंजिल मिले ना मिले सफ़र सुहाना रहे, मंजिल मिले ना मिले सफ़र सुहाना रहे, लम्हों पे गीत और दिल में तराना रहे। जिंदगी की राहों में बस यही दुआ है, हर पल गाता रहे मेरा दिल का फसाना रहे।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे गीतों भरी गुड मॉर्निंग। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 8 बजने को हैं, अब से कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले हिंदी में, फिर अंग्रेजी और उर्दू में। तो आइए सुनते हैं समाचार।

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान, पीएम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
2: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैंने सातवें दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
3: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी

0: दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पूरी जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
2: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
3: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
2: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
4: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का असम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमरीकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से

0: The Indian Express headline reads, Deal ending war gives Iran critical economic lifeline. The Times of India leads with the headline, Versailles the second, Trump rushes where historians would dread to tread. In Paris, Prime Minister Modi has asserted that AI, that is artificial intelligence, means all-inclusive for us and dubbed India a tech hub, writes the Asian Age. And finally, the Indian Express reports that a massive 1,200-year-old oak tree in Sherwood Forest in Nottinghamshire, England, which is said to have once sheltered Robin Hood, has died. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approve large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आलमी सतह पर गैर यकीनी और रुकावट की कैफियत के तनाजुर में दुनिया के लिए एक भरोसेमंद और मजबूत साझेदार के तौर पर उभर रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए कम से कम इमदादी कीमत पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद की मंजूरी दे दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में सिकल सेल के बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ समझौते के हिस्से के तौर पर ईरान की बंदरगाहों पर अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी हटा ली है। और हॉकी में न्यूजीलैंड में जारी खवातीन के एफआईएच नेशंस कप में भारत ने उरुग्वे को 2-3 से हराकर मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल की है और वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार के तौर पर उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि एक वक्त ऐसा भी था कि जब मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की नौइयत को सिर्फ तिजारत से ही परखा जाता था, लेकिन आज भरोसा भी उतना ही अहम बन गया है जितनी के तिजारत है।
3: हर देश रिलायबल सप्लाई चेन चाहता है, हर देश स्टेबल पार्टनरशिप चाहता है, हर देश ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके, और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
2: जनाब मोदी ने यह भी कहा कि मुल्क मुख्तलिफ शोबों में सरमाया लगा रहा है जिससे आने वाली नस्लों के लिए तरक्की, इख्तिरा और मौकों को तकवियत मिलेगी। जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने फ्रांस के शहर एवियों में G7 की मीटिंग के दौरान एतमाद और भरोसे पर मबनी साझेदारी की अहमियत पर जोर दिया। वजीर आजम ने कहा कि G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस के लिए भारत का पैगाम बिल्कुल वाजे था कि आलमी हुक्मरानी तभी मुअस्सर साबित हो सकती है जब ये सबकी शमूलियत वाली हो। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि वो फ्रांस में एक ऐसे वक्त आए हैं जब उनकी सरकार ने 12 साल मुकम्मल कर लिए हैं और इन बरसों में मुख्तलिफ शोबों में भारत में बड़ी तब्दीली आई हैं।
3: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP 2 गुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी 2 गुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
2: इससे कबल फ्रांस में भारतीय बिरादरी ने बोंजोख मोदी

0: या हेलो मोदी और भारत माता की जय के नारों के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खैर मकदम किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दो मुल्कों फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने दौरे के तीसरे मरहले में पेरिस का कामयाब और मुफीद दौरा मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि आने वाले वक्त में भारत फ्रांस दोस्ती और ज्यादा मजबूत होगी। इधर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे के इख्तिताम पर जनाब मोदी के लिए हिंदी जबान में एक खसूसी अलविदाई वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराया है।
1: Priez Maître Narenda, Mouji Baoud Kouchi, oui Abka Nice, Evian, Paris. Mani Issa Sadve, Daure Kelie, Swagat Karke, France au Barat, Kidosti Amarai.
0: पेश है वजीर आजम के पेरिस के दौरे की खबरें देने वाले हमारे नामा निकार की एक रिपोर्ट।
2: पेरिस में नीस में भारत इनोवेट्स और वीवा टेक 2026 का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि दुनिया भारत की बढ़ती हुई इख्तराई कुव्वत का मुशाहिदा कर रही है। वीवा टेक सरबराह मीटिंग में जनाब मोदी ने आलमी इख्तराकारों पर जोर दिया कि वो भारत के साथ मिलकर सभी के फायदे के लिए काम करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि टेक्नोलॉजी का फायदा सभी को मिलना चाहिए। इस दौरे में भारत और फ्रांस ने तिजारत, तकनीक और आलमी सिक्योरिटी के शोबे में इश्तराक को मुस्तहकम बनाने का इरादा किया। फ्रांस की सरगर्दा टेक कंपनियों ने भारत की तरक्की के सफर में एतमाद का इजहार किया और मैन्युफैक्चरिंग, मसनूई जहानत और ग्रीन बहरी बुनियादी ढांचे के शोबों में और ज्यादा शमूलियत के मंसूबों का ऐलान भी किया। पेरिस से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम करेंगे। इस तरगीबात से मुल्क में रोजगार के 15 लाख मौके पैदा करने में मदद मिली है। लेबर और रोजगार महकमे के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पिछले साल अगस्त से अब तक 63 लाख से ज्यादा मुलाजिमीन को बाजाबता अफरादी कुव्वत में शामिल किया गया है, जिनमें तकरीबन 30% खवातीन हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मस्कुर स्कीम कारकुनों और आजिरों की बाजाबता मईशत में शामिल होने के लिए हौसला अफजाई की खातिर तैयार की गई है। इसके तहत पहली बार के मुलाजमीन 15,000 रुपए तक की तरकीब हासिल करने के अहल होंगे। इस तरह उन्हें अफरादी कुव्वत में शामिल होने पर अहमियत की हामिल मदद मिलेगी, जबकि इजाफी रोजगार के मौके दस्तियाब कराने वाले आजिरों को हर इजाफी मुलाजिम रखने पर 3,000 रुपए माहाना तक की तरकीब मिल सकेगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पिछले साल 1 अगस्त को नाफिज हुई थी। इसका मकसद रोजगार के मौके पैदा करने को फरोग देना और मईशत के सभी शोबों में सोशल सिक्योरिटी दायरे को वसत देना है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग पर खास जोर दिया गया है। इसका मकसद 2 साल के अरसे में मुल्क में मुलाजिमत के 3.5 करोड़ से ज्यादा मौके दस्तियाब कराना है। दिल्ली से प्रिया मोंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
0: ज़िराअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने 4 रियासतों के लिए कम अज़ कम इमदादी कीमत पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद की मंजूरी दे दी है। वजारत के मुताबिक तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कीमतों की इमदादी स्कीम के तहत ये सरकारी खरीद की जाएगी। साल 2026 के मौसम गर्मा के सीजन के लिए मंजूरी के तहत उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सरकारी खरीद होगी। वहां 48,298 मैट्रिक टन मूंग, 97,970 मैट्रिक टन उड़द और 41,718 मैट्रिक टन मूंगफली की सरकारी खरीद की मंजूरी दी गई है। गुजरात में इस मौसम गर्मा के सीजन के लिए 18,250 मैट्रिक टन मूंग की सरकारी खरीद की मंजूरी दी गई है। मंजूरशुदा सरकारी खरीद की कम अज कम इमदादी कीमत की मालियत 160 करोड़ रुपए से ज्यादा रहने का तखमीना लगाया गया है। वजीर मौसूफ ने रबी मार्केटिंग सीजन के तहत तमिलनाडु के लिए मूंग की सरकारी खरीद की हद 885 मैट्रिक टन से बढ़ाकर 990 मैट्रिक टन करने की मंजूरी भी दी है। इस तरह फसल की 105 मैट्रिक टन इजाफी सरकारी खरीद हो सकेगी। जनाब शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा के लिए मौसम गर्मा के सीजन के दौरान 2115 मैट्रिक टन मूंग की सरकारी खरीद की मंजूरी दी।

0: है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर में सिकल सेल के बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। मजकूरा दिन सिकल सेल की बीमारी SCD के बारे में आलमी सतह पर बेदारी बढ़ाने के मकसद से हर साल मनाया जाता है। इस दिन बीमार अफराद को लाहिक चैलेंजों को उजागर किया जाता है और बेहतर तहकीक, फंडिंग और मुसावियाना इलाज और मुआलजे की हिमायत की जाती है। मध्य प्रदेश के अपने दौरे के बाद सदर जमहूरिया अपनी आबाई रियासत ओडिशा के दो रोजा दौरे के लिए आज दोपहर मयूरभंज जिला पहुंचेंगी। मजीद तफसील हमारे नामा निकार से।
1: मयूरभंज जिले में अपने क्याम के दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अवामी फलाह व बहबूद, देही तरक्की और कबायली बिरादरियों को बाइख्तियार बनाने पर मरकूज प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। रायरंगपुर में सदर जमहूरिया एम्स भुवनेश्वर की जानिब से मुनाकिद एक हेल्थ कैंप पहुंचेंगी और देही इलाकों में पाइपलाइन के जरिए पानी की फराहमी से मुतालिक एक बड़े मरबूत प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगी। सदर जमहूरिया ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए खसूसी सर्किट हाउस और नए तामीरशुदा रायरंगपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट का भी इफ्तिताह करेंगे। आकाशवाणी भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन लद्दाख के लेह में आज से शुरू होने वाली योग के बैन अल-अक़वामी दिन की तकरीबात में शिरकत करने के लिए वहां के तीन रोजा दौरे पर रहेंगे। ये जनाब राधाकृष्णन का मरकज के जेर इंतजाम इलाके का पहला सरकारी दौरा होगा जो इस महीने की 21 तारीख तक जारी रहेगा। भारत ने पिछले 12 साल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश कयादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों की बुनियाद पर काबिले जिक्र तब्दीलियां की हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की भलाई और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इकदाम किए हैं। आज हम शिमाल मशरिक में बड़ी तब्दीली लाने से मुतालिक हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम का जायजा ले रहे हैं।
1: अगर मुल्क की तामीर और तरक्की की बात की जाए तो शिमाल मशरिक को नज़रअंदाज करना नए भारत में मुमकिन नहीं है। एक वक्त था जब इस खित्ते की पहचान सिर्फ तशद्दुद, नाकाबंदी और नज़रअंदाज होने तक महदूद थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इसे बदला। गुज़श्ता 12 साल में वज़ीर-ए-आज़म ने 83 मरतबा से ज़्यादा शिमाल मशरिक का दौरा किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 47,270 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए जा चुके हैं और 46,290 किलोमीटर से ज़्यादा का रोड नेटवर्क तामीर किया जा चुका है। गुज़श्ता 12 साल में 8 नए हवाई अड्डे बिल्कुल नए सिरे से तामीर किए गए हैं। इससे पहले 2014 में इनकी तादाद 9 थी, जो अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान स्कीम के तहत 90 रास्ते और 12 हवाई अड्डे फ़ाल हो गए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए एटानगर के देरा नुतुंग गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर MQ खान ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में फिजाई कनेक्टिविटी बेहतर हुई है।
2: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 3 घंटे में, 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। रोड कनेक्टिविटी जो थी वो अपर्याप्त थी या सिंगल लेन हुआ करती थी, अभी 4 लेनिंग हो गई है।
1: आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए गुवाहाटी के एक रिहायशी ने इस बात पर जोर दिया कि खित्ते में रोड और फिजाई कनेक्टिविटी बेहतर हुई है।
3: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और काफी सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है, तो काफी हम लोग खुश है।
1: दिल्ली से आकाशवाणी न्यूज के लिए सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: अमरीका ने ईरान की बंदरगाहों और साहिली इलाकों में बहरी जहाजों की आमद रफ्त पर अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी हटा ली है। अमरीका की मरकजी कमान ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर सभी कार्रवाइयां रोक दी गई हैं। सोशल मीडिया की एक बयान में अमरीका की मरकजी कमान ने यह जानकारी दी है। हॉकी में न्यूजीलैंड में जारी खवातीन के FIH नेशंस कप में भारत ने उरुग्वे को 2-3 से हराकर लगातार 3री कामयाबी हासिल की है और वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शायब होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने अमरीका ईरान के दरमियान अमन माहदे पर दस्तखत

0: किए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि दोनों ममालिक के सुदूर ने 14 निकाती माहदे की तौसीक की, जिसमें आबनाए हुरमुज खोलने और पाबंदियों में नरमी किए जाने का फ्रेमवर्क शामिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पेरिस में वाइवाटिक 2026 से खिताब करते हुए कहा कि मसनूई ज़हानत AI की तरक्की में सबकी शमूलियत, तहफ़ुज़ और अवामी मफाद के बुनियादी उसूलों पर मबनी होनी चाहिए। इस खबर को अखबारात ने सफ़े अव्वल पर शाये किया है।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आलमी सतह पर गैर यकीनी और रुकावट की कैफियत के तनाजुर में दुनिया के लिए एक भरोसेमंद और मजबूत साझेदार के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरकीबात तकसीम करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए कम से कम इमदादी कीमत पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद की मंजूरी दे दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में सिकल सेल के बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। अमरीका ने ईरान के साथ समझौते के हिस्से के तौर पर ईरान की बंदरगाहों पर अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी हटा ली है। और हॉकी में न्यूजीलैंड में जारी खवातीन के FIH नेशंस कप में भारत ने उरुग्वे को 2-3 से हरा कर लगातार तीसरी कामयाबी हासिल की है और वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सितार वादन। कलाकार हैं डॉक्टर अमृत दिशा। आइए इनसे सुनते हैं सितार पर बजाया राग मियां की तोड़ी। आपका साथ दिया है तबले पर बलजीत सिंह ने।

0: सितार पर बजाया राग मियां की तोड़ी। कलाकार थी अमृत दिशा। तबले पर आपके साथ संगत कर रहे थे बलजीत सिंह। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। हम अपने सुनने वालों को बता दें, आज दिन में 1:10 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे फिल्म लव इन टोक्यो के कुछ चुनिंदा गीत। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 9:15 हुए जाते हैं। आइए सुनते हैं गांधी चर्चा पर। गांधी चर्चा के अंतर्गत ये वार्ता, विषय है योग और स्वास्थ्य के विषय में गांधी जी के विचार। वार्ताकार हैं निशा जिंदल।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है योग और स्वास्थ्य के विषय में गांधी जी के विचार। आलेख एवं स्वर निशा जिंदल।
1: महात्मा गांधी के लिए स्वास्थ्य ही वास्तविक धन था, जो शरीर मन और आत्मा के संतुलन पर आधारित था। वे योग को आत्मा से जुड़ने और शारीरिक मानसिक शांति के साधन के रूप में देखते थे। वे कहते थे कि स्वच्छता पूजा के समान है। वे स्वच्छ मन शरीर और वातावरण को स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य मानते थे। उनका मानना था कि स्वास्थ्य की कुंजी हमारे भोजन में है। वे कम और सादा भोजन करने की सलाह देते थे। गांधी जी के लिए स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं, बल्कि शरीर मन और आत्मा की शुद्धि थी। वे मानते थे कि सच्चा स्वास्थ्य स्वयं के लिए अनुशासन और प्रकृति के नियमों के पालन से आता है, न कि दवाइयों से। गांधी जी योग को केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम मानते थे। उनका मानना था कि शरीर के नियम तोड़ने पर बीमारी होती है और प्रकृति ही उसे ठीक कर सकती है। वे मिट्टी पानी और धूप की चिकित्सा को बेहतर मानते थे। स्वस्थ शरीर मन और आत्मा की सामंजस्यपूर्ण स्थिति है। इस स्थिति में व्यक्ति सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त होता है और उसके सभी अंग प्रत्यंग सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित ढंग से कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में यह वह आदर्श स्थिति है जिसमें शरीर स्फूर्तिवान मन प्रसन्न और आत्मा मुदिततापूर्ण होती है। स्वस्थ शरीर का अर्थ मोटा तगड़ा शरीर नहीं, अर्थात इसमें पहलवानों का अतिशय दौड़ने कूदने वालों का समावेश नहीं है, वरन इसका आशय व्याधि रहित शरीर से है, अर्थात वैसा शरीर जो सामान्य काम कर सके और जो मनुष्य बिना थकान के रोज 10-12 मील चल सके। उन्होंने तर्क दिया कि बीमारी प्रकृति के नियमों को तोड़ने का परिणाम है, तो प्रकृति ही इसे सुधार भी सकती है। उन्होंने 50 से अधिक वर्षों तक प्राकृतिक चिकित्सा का अभ्यास किया। वह किसी प्रणाली के पक्षधर नहीं थे, पर बीमारियों की रोकथाम और उपचार की शक्ति में उन्हें बहुत विश्वास था। इसीलिए वे कहते थे कि स्वास्थ्य शब्द का अर्थ समझना बहुत जरूरी है, जिसका अर्थ है शरीर की सहजता। एक स्वस्थ व्यक्ति वह है जिसका शरीर रोगों से मुक्त हो और बिना थकावट के अपने सामान्य कार्य कर सके। गांधी जी कहते थे कि अपने शरीर के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है, जिसके बारे में अधिकांश लोग अनभिज्ञ है। योगासनों का अभ्यास करने से शरीर में शक्ति और लचीलापन बढ़ता है, साथ ही तंत्रिकाओं को आराम मिलता है और मन शांत होता है। आसन मांसपेशियों जोड़ों और त्वचा के साथ साथ

0: ग्रंथियों, तंत्रिकाओं, आंतरिक अंगों, हड्डियों, श्वसन प्रणाली तथा मस्तिष्क को भी प्रभावित करते हैं। गांधी जी लंबी सैर के बहुत ही शौकीन थे। उन्होंने एक बार कहा था कि वे प्रतिदिन 10-12 मील चल सकते हैं। वे चरखा कातना, अनाज पीसना, सफाई करना और बागवानी जैसे कार्यों को ही अपना व्यायाम मानते थे। उनके लिए मानसिक शांति शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी थी। वे प्रतिदिन नियम से प्रार्थना करते थे जो उन्हें मानसिक शांति और ऊर्जा प्रदान करती थी। गांधी जी के लिए ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल यौन संयम ही नहीं बल्कि इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करना था, जो मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के लिए जरूरी था। वे मानते थे कि बीमारी होने वाली मौतों से कहीं अधिक मौतें बीमारी के डर से होती हैं। इसीलिए मानसिक रूप से निडर होना जरूरी है। गांधी जी ने कहा था, स्वच्छता स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वे स्वयं अपना शौचालय साफ करते थे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते थे। वे गांवों को आदर्श बनाने के लिए स्वच्छता को अनिवार्य मानते थे। गांधी जी नशाबंदी के कट्टर समर्थक थे। वे मानते थे कि शराब और तंबाकू न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बर्बाद करते हैं बल्कि व्यक्ति की नैतिकता को भी नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अपने रचनात्मक कार्यक्रमों में नशाबंदी को प्राथमिकता दी है। गांधी जी ने भगवद गीता के निष्कपट कर्म या अनासक्ति योग को अपने जीवन का आधार बनाया। उनका मानना था कि व्यक्ति को कर्म फल की इच्छा के बिना अपना कर्तव्य करना चाहिए। वे इसे गीता का संदेश मानते थे जिसमें कर्म करते हुए फल के प्रति निर्लिप्त रहना सिखाया गया है। गांधी जी के अनुसार योग का अर्थ आत्मा के साथ जुड़ना है। योग का उद्देश्य न केवल शरीर को स्वस्थ रखना है बल्कि मन और आत्मा को भी शांत रखना है। योग का मतलब सिर्फ हिमालय में बैठकर ध्यान करना नहीं बल्कि गरीबों की सेवा करना है। वे कर्म योग को जीवन के हर क्षेत्र में लागू करने के पक्षधर थे। महात्मा गांधी के लिए योग का अर्थ था सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए निस्वार्थ भाव से कर्म करना। महात्मा गांधी का योग पारंपरिक आसन प्राणायाम से भिन्न एक क्रियात्मक व आध्यात्मिक जीवन दर्शन था जो मुख्य रूप से अनासक्ति योग पर आधारित था। गांधी जी का मानना था कि कर्म करो लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो। यह गीता पर आधारित उनकी व्याख्या थी जिसे उन्होंने कोसानी में लिखा। वे हमेशा सीधे और स्थिर बैठते थे जो उनके अनुशासित व्यक्तित्व को दर्शाता था। अनासक्ति योग महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित एक दर्शन और जीवन शैली है जो मूलतः भौतिक संसार की किसी भी वस्तु से अनासक्ति को प्रोत्साहित करती है। अनासक्ति योग कर्मों के परिणामों से भी किसी भी प्रकार के लगाव को त्यागने का अभ्यास है। ऐसा माना जाता है कि अनासक्ति के माध्यम से दुखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि नियमित योग अभ्यास से कई स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं, जिसमें हृदय स्वास्थ्य में सुधार, मांसपेशियों की शक्ति में वृद्धि और रक्तचाप का सामान्य होना शामिल है। योग तनाव को दूर करने में और नींद को बेहतर बनाने में कारगर माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2014 में भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने इसे मान्यता दी और 2015 से यह वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है, जो स्वास्थ्य, संतुलन और एकता का संदेश देता है।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था योग और स्वास्थ्य के विषय में गांधी जी के विचार। आलेख एवं स्वर निशा।

इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वीके तोमर।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांधी चर्चा। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लेके हाजिर हाँ मैं जसपाल कौर ते अज दे प्रोग्राम विच असी सुनांगे एक कहानी। इस तो अलावा असी कुछ गीत भी सुनांगे। एक सुखी सफल सहज ते खुशहाल जीवन हर मनुख दा सुफना हुंदा है। हर मनुख यह चाहुंदा है कि उसकी जिंदगी विच मानसिक शांति होवे, सुकून होवे ते सुख सहूलत होण। लेकिन मनुखी जीवन की सब तो वड्डी ते कौड़ी सच्चाई ए है कि जिंदगी संघर्षां औकड़ां ते चुनौतियां दा ताना बाना है। हर मनुख नूं अपनी जिंदगी विच अनेकां संघर्षां मुश्किलां दा सामना करना पैंदा है। कुछ मनुख जीवन दियां इन्हां मुश्किलां तो हार मन के निराश हो जांदे ने ते कुछ व्यक्ति अजिहे भी हुंदे ने जो अपनी हां पक्खी सोच ते हौसले नाल उन्हां मुसीबतां दा डट के सामना करके अपने आप नूं होरां लई सफलता अते साहस दी एक विलक्षण मिसाल बना लैंदे ने। कहिण दा भाव इह है कि साडी शख्सियत ते साडा जीवन साडे विचारां उत्ते निर्भर करदा है। मनुखी विचार भी दो तरह दे हुंदे ने, हां पक्खी ते ना पक्खी। हां पक्खी विचार ते सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग साडे जीवन नूं सार्थक बनाउंदे ने ते सानू बेहतर करन लई प्रेरित करदे ने। हां पक्खी सोच दी शक्ति सानू अपनी ऊर्जा दी सही वरतों करन विच सहायता करदी है ते उलट हालातां विच सहज रहन दी ताकत भी दिंदी है। दुनिया विच सफल लोकां दी हां पक्खी सोच नूं ही सफलता दी कुंजी मन्या गया है। साडी ए हां पक्खी सोच जिथे साडे निजी अते पेशेवर जीवन नूं सफल ते बेहतर बनाउण विच समर्थ है, उत्थे ही ये तनाव ते निराशा तो नजिठण विच वी सहायक है। जीवन दे बुरे दौर ते हालातां विच हां पक्खी सोच ही आत्मविश्वास ते मुसीबतां ते जित हासिल करन दा मूल मंत्र है ते अपनी इसे हां पक्खी सोच नाल असी जीवन दे हर टीचे नूं हासिल कर सकदे हां। इह तां गल होई हां पक्खी सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग दी ताकत दी। आओ अज दे प्रोग्राम दी शुरुआत करदे हां रोशन प्रिंस दे गाए इस गीत दे नाल।

0: सरबजीत दगाया ए गीत हुणे तुसी सुनिया। हुण पेशे अज दी कहानी मन दी खूबसूरती ते कहानीकार ने उमंग सरीन।
1: बम बम भोले बम बम भोले, चिमटा वजांदा एक बाबा गेट दी कुंडी खड़का रहा सी। मैं बाहर जाके वेख्या ते एक साधु दिखिया, गेरवे रंग दा ढिला जिहा कुड़ता, तहमद वर्गी उच्ची लूंगी पाई हुई सी। ए सरू जिहा लंबा कद, पक्का रंग ते उहदा मुंडे होया सर सीगा। उस दियां मोटियां मोटियां लाल अखां, मस्त मलंग जिहा साधु सीगा। उहदे इक हथ विच इक बंद टोकरी सी, दूजे विच चिमटा। जा माई, नाग बाबे लई दुध लिया ते बाबे ले लियाई भिक्षा। मैं नवीं व्याई सी उस वेले। माई शब्द सुन के थोड़ा अचकचा गई, पर फिर अंदर जाके मैं सामान ले आई ते साधु ने झोली फैला दित्ती ते हस के कहन लगा, थैंक यू माई चाइल्ड, जिउंदी रह। अज नाग पंचमी है, कह के उन्हें टोकरी का ढक्कन खोल दिता। लो पुत्र जी, नाग देवता दे दर्शन कर लो ते आशीर्वाद भी लै लवो। मैं वेख्या टोकरी विच कुंडली मार के नाग देवता बैठे सी, एक हिस करके जिमें मैनू आशीर्वाद दे दिता अपना। साधु जी ने सर्प दे काले पिंडे ते इस तरह हाथ फेरिया जिमें कोई माँ अपने बच्चे दे जिसम ते हाथ फेरे। फिर ढक्कन बंद करके चिमटा वजांदा अगे निकल गया। वो साधु दी खन खन कर दी हसी, मखमल जी आवाज़ ते अंग्रेजी बोलना मैनू बड़ा हैरान जिहा कर गया। बनारस दी गलियां विच इस तरह दे साधु आम दिख जांदे ने, पर यह कुछ अलग ही सीगा। इन्ने विच मेरी सासू जी आ गई ते साधु नूं जांदे वेख के बोली, बेटा भिक्षा दे दित्ती चंगी तरह? मैं कहा, हाँ मम्मी जी, बाबा जी ने जो जो मंगिया मैं दे दिता, आटा चावल दुध सब कुछ। मम्मी जी हस पे, नी कुड़िए उस साधु नहीं सी, उस साधवी सी, सोमेश्वरी नाम है उसका। मैं हैरान, मर्दाना कद काठी, चौड़े मोढ़े, मुंडिया सिर, उस साधवी, साधु नहीं साधवी। हाँ, पर गल्लां उहदियां मैनू कुछ कुछ मुलायम लगियां सीगियां ते जे मैं अखां बंद करके उहदी आवाज़ सुना ना ते वाकई वह किसी मैनू तीवी दी लगदी। फिर मैं मम्मी जी दे कमरे उहनां दे पिछे पिछे आ गई। मम्मी जी, तुसी जानदे हो उस दे बारे, मैनू दसो ना। हाँ कुड़िए, जानदी हाँ, कोल दे मुहल्ले विच रहिंदी सी। की नां सी? हाँ सोमा, सोमा।

0: परिवार दे देता है। पर पैसा मम्मी, भिक्षा तो ते उन्ना पैसा ना मिलता होएगा। हाँ बेटा, ईश्वर ने ओदा भी बंदोबस्त कर दिता। गुरु जी का रसूख, वड्डे लोगों नाल मिलना जुलना, जान पछाण सारी काम आई। ते लोग हुण पैसे नाल भी मदद करन लगे। समाज कल्याण के नाम ते इहनू बहुत कुछ मिलता है। भिक्षा तो जो कमांदी है ना, वह भी सारा ए जत्थे नू दे दिंदी है। हुण इत्थे दे लोग जिहड़े ने ना, वह सारे इस दे बारे जानते ने, इस दे काम दे बारे जानते ने। ते किसी भी बूहे तो इहनू खाली नहीं मुड़ना पैंदा पुत्तर। माँ ने गहरी साह लै के अपनी गल खत्म कीती। मैं कुछ पल उस तरह ही बैठी रही, बिना हिले डुले। मैं सोच रही सी खौरे कि स्याही नाल लिखिया होवेगा उसका नसीबा रब ने, सुखा ते नीरस। ते फिर सौंप दित्ती होवेगी उन्हों हिम्मत, ते कह दिता होवेगा जा मरुस्थल विच तू उगा दे हरियाली, तू खिला दे फुल ते बिखरा दे खुशबू। मेरी अखां दे सामने अजे भी कुटे मुंडे सिर वाला एक चेहरा घूम रहा सीगा। पर हुण मैनूं लग रहा सीगा कि एक नूर जरूर सीगा उस चेहरे ते, जिन्ने सारी कुरूपता नूं ढक लिया सी बहुत सोहनी तरह। मैं सोचिया रब ने शायद उन्हों जिस काम लई बनाया सी ना, उस काम लई तन दी नहीं मन दी खूबसूरती दी जरूरत सीगी। बम बम भोले दी आवाज़ दूर तो हजे भी मेरे कन्नां विच पै रही सी।
1: हुणे तुसीं सुन रहे सी उमंग सरीन दी कहानी मन दी खूबसूरती। हुण सुणदे आं हरभजन मान दा गाया ए गीत।

हरभजन मान दे गाए इस गीत तो बाद हुण प्रोग्राम दे अखीर विच पेश है हरजीत हरमन दा गाया ए गीत नी मैं दिल

0: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी बहक, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज। 10:00 को हैं, अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात फ्रांस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
3: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका नीस एवियन पेरिस मैं इसे साथ वे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे, जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूहों से बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार यात्रा पर रहेंगे। श्री वैष्णव पटना और छपरा में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे पटना के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन से छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशानुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: President Murmu will arrive in Odisha this afternoon on a two-day visit to her home state. In hockey, India defeated Uruguay 3-2, registering their third consecutive win in the FIH Women's Nations Cup in New Zealand yesterday. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 10:10 और पूरे 25 सेकंड हो चुके हैं और ये समय है ईमेल पर आधारित आपकी पसंद के फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। सबसे पहले आपको बताते हैं अपना ईमेल आईडी, जिस पर आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना संदेश, अपनी पसंद के गीत के साथ भेजना है। तो नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी जो आपको जिस पर भेजना है वो ईमेल आईडी है ip.radiotelly@gmail.com। और श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट,
2: मैं हूं नवीन सक्सेना। आज के इस प्रोग्राम में अगले 45 मिनट 50 मिनट ऐसे होंगे जो बेस्ड होंगे आपके ईमेल पर, आपके संदेश, आपके नाम, आपके विचार, आप अपने क्या बांटना चाहते हैं और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं। तो मैं और सिद्धार्थ आपकी इस खूबसूरत जर्नी में, इस खूबसूरत यात्रा में आपके साथ रहेंगे। आपको बस इतना करना है कि ईमेल भेजना है, नाम भेजना है, रेडियो का वॉल्यूम तेज कर देना है ताकि आप अपना नाम और अपने पसंद के गीत सुन सकें।
1: और नवीन, यहाँ पे अपने श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि अपनी पसंद का गीत तो आप हमें भेजेंगे ही, लेकिन इसके साथ अगर आप अपना कोई संदेश भेजना चाहते हैं तो वो हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा। जैसे कि आज का दिन आप कैसे बिताने वाले हैं या कहाँ आप जाने वाले हैं, कैसे क्या कुछ करने वाले हैं, तो
2: या सोचिए या जी 21 तारीख यानी परसों की बात, आप योग दिवस को कैसे मनाने वाले हैं और आपने कितना योग सीखा है, कितने आसन आप सीख रहे हैं या आप प्रण ले रहे हैं कि अगले एक साल आप फिट रहने के लिए हिस्सा बनेंगे योग दिवस का।
1: बिल्कुल, तो नवीन ये हम सभी के लिए एक मौका है कि जब योग दिवस के अवसर पर हम सभी अपने जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर फोकस करें, अपनी फिटनेस का ध्यान रखें। और कहते हैं ना कि कभी भी जब से शुरुआत करो तभी से आप अच्छे कामों के लिए कोई दिन नहीं होता, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो योग दिवस से बेहतर शुरुआत का दिन हो नहीं सकता।
2: तो आपके ईमेल पर आधारित सबसे पहले हम एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत प्ले करने वाले हैं और फिर आपके संदेश।

0: जी हाँ, हम आ गए आज फिर दिल लेकर, यानी दिल से दिल तक पहुँचने के लिए, दिल की बातें करने के लिए। और हमारे सामने जो संदेश है राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा का, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, ये लिखते हैं अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दें गोल्डन रेडियो श्रोता संघ। और साथ में शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई सुणकार, पिंकी सुणकार, आर्यन कृष्ण और सुनकार भी हमें इस वक्त सुन रहे हैं। और बहुत सारे श्रोता हमसे लगातार जुड़ते जा रहे हैं और आपके जो संदेश है वो हम इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। और नवीन, अगला संदेश किसका है?
1: अगला संदेश मुझे ताज मोहम्मद साहब का नजर आ रहा है। आपका तहे दिल से शुक्रिया।

0: शुक्रिया जी। लिखने वाले हैं गुलाम साबिर राही बहराज जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से इन्होंने लिखा है।
1: जी हाँ, और अगले संदेश पर अगर हम नज़र डालें तो ये आया है गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही शाहीन फातिमा अदनान खान और अनु खान का। ये कहते हैं कि इन्हें कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, कोई भी गीत सुनवा दें। और नवीन, अगला संदेश।
0: अगला संदेश दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से रेखा बंसल कुमार सिन्हा है, अजय कुमार गुप्ता है, नन्हे मुन्ने अन्विका और तनुश्री गुप्ता का संदेश हमें मिल चुका है।
1: बिल्कुल, तो हम अगले संदेश पर नज़र डालते हैं। हमारा अगला संदेश है मुकेश भट्टा जी का, और ये कहते हैं कि हाय सर, प्ले एनी सॉन्ग। और ये इस संदेश के बाद हमारे पास जो अगला नाम हमें दिखाई दे रहा है, बड़ा कलरफुल सा संदेश भेजा है, फॉन्ट भी बहुत अच्छा यूज़ किया है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप ने कालगा से इनके साथ जुड़ गए हैं। शुभचंद बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, ये लिखते हैं कि डियर प्रोग्राम एंकर सिद्धार्थ एंड नवीन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम आवर साइड, प्लीज इंक्लूड अवर रिक्वेस्ट ईमेल इन द सॉन्ग गिवन इन द सब्जेक्ट और यू कैन इंक्लूड दिस मेल इन एनी सुटेबल सॉन्ग। तो हमने आपके ईमेल को शामिल कर लिया है।
0: अगला संदेश हमें मिला है बुधराज खोरवाल साहब का, उत्तम नगर दिल्ली से। इनके साथ हैं कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश, इनका भी संदेश हम शामिल कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में।
1: और इसके अलावा हमारे पास एकता कॉलोनी रोहतक से संदेश आया है, सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट का संदेश हमको मिल चुका है।
0: संदेश हमें आपके मिल रहे हैं, लेकिन हमने आपसे एक बात पूछी थी कि आने वाले योग दिवस पर आप किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे, किस ग्रुप के साथ जुड़कर आप योग करेंगे या फिर आप इंडिविजुअली पार्क में या घर में जाकर योग करेंगे। प्यारे भाई जनाब आरजे सिद्धार्थ सर जी, नवीन सर जी, नमस्कार, आदाब और नमस्कार। लिखने वाले हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी और बिल्कुल आखिर में दो इमोजीज हैं धन्यवाद के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: जी हाँ, लगातार हमसे हमारे जो श्रोता हैं वो लगातार जुड़ रहे हैं। और अगर हम देखें तो इस समय बिल्कुल योग के ऊपर हमारे पास एक संदेश आया है नवीन। ये कहते हैं कि जीवन शैली इसे अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करके हम तनाव को दूर कर सकते हैं और एक निरोगी जीवन जी सकते हैं। ये कहने वाले हैं रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू ने हमको ये संदेश भेजा है। बहुत ही प्यारा सा संदेश है। इसके अलावा हमारे पास एक जो अगला संदेश है ये लिखते हैं कि ओके, ये संदेश है धमेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार का। ये लिखते हैं आदरणीय सर सिद्धार्थ जी और नवीन जी, आप दोनों को हार्दिक नमस्कार, बेहतरीन प्रस्तुति आप दे रहे हैं और बेहतरीन नगमे आप सुनवा रहे हैं, हम भी प्रोग्राम सुन रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं। और जब आप हमें इस तरह से अपने संदेश लिखते हैं तो सच पूछिए तो हमें भी बहुत आनंद आता है।
0: और एक क्यूमुलेटिव अगर यूँ कहें कि कुल मिला के बहुत से लोगों ने जिस गीत की फरमाइश की है वो फिल्म शागिर्द का गीत है और जो जुड़ा हुआ है आपकी सेहत से। और उस पूरे गीत के अंदर आपको बताया जा रहा है कि आप किस तरह से यंग और जवान रह सकते हैं।

0: जी हाँ, बड़े मियाँ दीवाने, ऐसे ना बनो, बिल्कुल ऐसे आप नहीं बनना चाहिए आपको। आपको तंदुरुस्त रखने के लिए हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आप इस साल योग दिवस को मनाने के लिए क्या कर रहे हैं और आपने योग दिवस वाले दिन क्या कुछ कार्यक्रम बनाया है। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, नवीन जी, सिद्धार्थ जी, नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। अभी तो हम आपके कार्यक्रम सुन रहे हैं, फिर किसी काम के लिए बाहर जाएंगे, क्या बात है। और ये लिखते हैं कि हम रोज़ एक घंटे योग करते हैं सिर्फ कपालभाति, और अनुलोम विलोम आने वाले योग दिवस को हम दिल खोल कर एंजॉय करेंगे, क्योंकि जान है तो जहान है, बिल्कुल स्वास्थ्य ठीक है तो सब ठीक है। ये कहना है छत्तीसगढ़ से लेवाई गुलाबदास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी का। तो नवीन, तुम तो बहुत ज़्यादा योग करते हो और शुरू से मुझे लगता है कि जो फिटनेस तुम्हारा जो फर्स्ट लव होता है ना, वो है पहला प्यार जो है वो तुम्हारा फिटनेस है।
1: बिल्कुल, अगर आप योग करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं या अपने दिन को खुशनुमा करने के लिए कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं, तो सुबह के एक से डेढ़ घंटे अपने उस शरीर को दे दीजिए जिस शरीर के साथ आपको पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। शरीर स्वस्थ रहेगा, दिमाग तंदुरुस्त रहेगा और फिर उसके बाद पूरा दिन बहुत ही खुशनुमा रहेगा। नमस्कार जी, सिद्धार्थ और नवीन भाई, आप दोनों की जब प्रस्तुति होती है तो दिन बन जाता है, वाओ
0: क्या बात है। तो देखो नवीन, हमारी तुम्हारी जुगलबंदी स्टूडियो से हो रही है, उधर हमारे श्रोताओं की भी जुगलबंदी चल रही है।
1: चंडीगढ़ सिटी सतीश अनेजा लिखने वाले हैं और कहते हैं कि योग हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है। आगे कहते हैं
0: जी, ये लिखते हैं कि कल मेरा जन्मदिन था, 62 साल का हो गया हूं, तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी सिद्धार्थ और नवीन की ओर से शुभकामनाएं और बधाई। इन्होंने लिखा है कि हमने खुद को ऐसा फिट रखा हुआ है कि देखने वाले मुझे 45-46 का ही समझते हैं। मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूं, लंबी सैर भी करता हूं, शरीर में स्टेमिना इतना है कि 15-20 किलोमीटर आसानी से बिना रुके चल सकता हूं। और चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा जी का ये कहना है, तो बिल्कुल अब तो आप समझ गए होंगे हमारे दूसरे श्रोता भी कि किस तरीके से आप फिट रह सकते हैं योग के माध्यम से। और हर कोई कम उम्र का नवीन दिखना तो चाहता ही है,
1: ये सबसे पहले है। उम्र बढ़ती रहे लेकिन शरीर पे बिल्कुल नजर ना आए, क्योंकि सामने वाले को जब आप मुस्कुराहट देते हैं ना, तो वो भी कहेगा क्या खूबसूरत मुस्कुराहट है, और जो वो कहेगा अच्छा आप तो इतने के दिखते हैं, मज़ा आ जाता है ना। लिखने वाले हैं तुलसी मस्कीन, कहते हैं सिद्धार्थ जी और नवीन जी को बहुत बहुत नमस्कार, हम एक संगीत सम्मेलन में जा रहे हैं, वहाँ गाते हुए योग का अभ्यास करेंगे, नाइस सॉन्ग बड़े मियाँ दीवाने। भाई बहुत बहुत बहुत शुक्रिया तुलसी जी। मस्कीन साहब, आपकी पसंद का प्रोग्राम है, आपकी पसंद के गीत हैं। कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मेघा और चंडीगढ़ से उनके साथ है राहुल खुराना, रुचिता खुराना और केशु, इन्होंने संदेश भेजा है।
0: जी हाँ, और अगला संदेश यह है, आर जे लिखते हैं कि रिस्पेक्टेड आरजे तनु कितना चाहने दिया तो ये हमें भेजा है सुरेश नारंग ने सहारनपुर से, उनके साथ आशा नारंग, सोनाली भी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं,
1: साथ ही है। अगला संदेश हमें मिल चुका है, ये कौशल्या देवांगन का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं कि सिद्धार्थ जी और नवीन जी को नमस्कार, योग दिवस पर हम सब सुबह जल्दी उठकर किसी शांत स्थान पर योगाभ्यास, प्राणायाम और ध्यान करेंगे। देखिए, आप सिर्फ सब लोग लिख रहे हैं या करेंगे भी, क्योंकि अगर संडे को हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो फिर हम आपसे पूछेंगे कि आप किस पार्क में बैठकर ये योगाभ्यास कर रखे हैं।
0: जी हाँ, और उस दिन हम आपसे साझा करेंगे कि आपका अनुभव कैसा रहा। ये लिखते हैं कि अपने आसपास या समुदाय में आयोजित किसी सामूहिक योग शिविर में शामिल होकर लोगों को योग के प्रति जागरूक करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये लिखते हैं कि हम संकल्प लें कि योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएंगे। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल ने हमें ये संदेश भेजा है।
1: आपका संदेश पढ़ के बहुत ही खूबसूरत शेर मुझे याद आ रहा है, कहते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं।
0: बिल्कुल, क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही है नवीन। और यहाँ पर यह भी हम कह सकते हैं कि योग से तन में नई ऊर्जा का संचार हो, मन में शांति, जीवन में सुख का विस्तार हो। तो ये विस्तार ऐसे ही होता रहे। और हमारे अगला जो संदेश आया है वो लिखते हैं नवीन और सिद्धार्थ जी।
1: ये संदेश हमें पंजाब से भी आया है।
0: जी, और ये लिखते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पंजाब में ये है कि लोग यहाँ पर योग के प्रति और ज़्यादा जागरूक हों, तो बहुत अच्छी बात है। और किसी भी तरह का यहाँ पे ये लिखते हैं कि हमको बहुत डिसिप्लिन लाइफ के बारे में इन्होंने हमको लिखा है। इन्होंने लिखा है कि हमें किसी भी तरह के व्यसन में नहीं पड़ना है। और ये बात लिखते हैं संदीप मकर, ज्योति, मन्नत और भारत।
1: बहुत ही खूबसूरत बात कही है। देखिए, किसी भी तरह का व्यसन अच्छा नहीं है, नशा अच्छा नहीं है। व्यसन अगर आपको करना है, नशा आपको करना है, तो अपने शरीर के साथ कीजिए जनाब। खूब स्वस्थ रहिए, खूब योग कीजिए, खूब दौड़िए और हाँ, खूब योगा कीजिए। ऐसा लिखने वाले तमाम संदेश हमारे को आज उसी तरह के मिल रहे हैं। एक और संदेश इस समय हमें मिला है अब्बासी साहब का, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, सुहान, फरदीन, अनजान, अवान और अब्बासी परिवार के तमाम लोग। नवीन जी, सिद्धार्थ जी, नमस्कार। हमने एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें हम रोज़ सुबह 50 मेंबर पार्क में जाकर योग करते हैं। बहुत खूबसूरत अब्बासी साहब, ये दिशा दिखाता है और दर्शाता है कि आप खुद तो स्वस्थ रह ही रहे हैं और साथ में अपने साथ उन 50 लोगों को भी स्वस्थ कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत बात है।
0: और नवीन, यहाँ पर मुझे मजरू सुल्तानपुरी का वो शेर याद आ रहा है कि मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल मगर, और लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये जो कारवां इन्होंने शुरू किया अकेले से, आज इतने सारे लोग इनके साथ जुड़ते गए। और वैसे भी इस बार योग दिवस पर हम एक विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ एक समय में योग करना, वो पूरी दुनिया को अचंभित करने वाला है।
1: और अगला संदेश है, योग करो भाई, योग करो, तन मन को तुम निरोग करो, अंतर मन में ध्यान लगा। आदरणीय आरजे जी, सादर आदाब। लिखने वाले हैं नजफगढ़ जय विहार से शाहरुख, फारूक और शबनम शहनाज। उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम श्रोता जो हमें लिख रहे हैं और वो श्रोता जो हमें सुन रहे हैं, कम से कम इन मैसेज को सुनकर तो आप,
0: जी हाँ, तमाम ऐसी बातें हो रही हैं जिससे कि हम योग के प्रति अपने रुझान को, अपनी प्रेरणा को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब नवीन अपने श्रोताओं को सुनाते हैं एक प्यारा सा नगमा और बातें हम और करते हैं, और साथ में ये भी पूछना आपसे चाहते हैं कि किस तरीके से आप योग कर रहे हैं।

0: जी हाँ, दिल पर कोई जोर नहीं है, मैं क्या करूं, क्योंकि हमें अपने आप को फिट रखना है और इस बार योग दिवस पर हम सभी के साथ जुड़ना है। कहते हैं कि तन को मिले शक्ति, मन को मिले उड़ान, योग और व्यायाम से खिल उठे इंसान। तो बिल्कुल योग आपके जीवन को बदल देता है। और हमारे पास बहुत सारे संदेश आ रहे हैं। लिखते हैं, आदरणीय प्रसारक जी, सिद्धार्थ और नवीन जी को दिल से प्यार भरा नमस्कार। आपको भी बहुत सारा नमस्कार। ये लिखते हैं कि यदि शरीर व मन स्वस्थ नहीं है तो लक्ष्य को पाना असंभव है। योग करने से मन और शरीर दोनों स्वस्थ होते हैं। हैप्पी योग डे। ये संदेश भेजा है किशोर नगर अमरावती के हिरमार शेंडे और सिद्धार्थ कोंडाड़े ने। तो आपका ये संदेश बहुत ही प्यारा संदेश हमें मिला। और इसके बाद हम देखते हैं नवीन अगला संदेश।
1: हमें जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, इसरार और नरगिस खातून का हमें संदेश मिल चुका है। इतने सारे संदेश हमें आ रहे हैं, इतनी सारी बातें हमें बताई जा रही हैं योग की, स्वस्थ रहने की और ये बताने की कि आप किस तरह से अपनी रेस्ट ऑफ द जिंदगी और अपनी वर्तमान जिंदगी को कितने खूबसूरत तरीके से जी सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप योग अभी शुरू कर रहे हैं तो ज़रा धीरे धीरे, ज़रा हौले हौले, एक ही दिन में तो आप यंग नहीं बन पाएंगे ना। लिखने वाले हैं रेडियो के दीवाने ग्रुप दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी, निशा और जालंधर से ये ईमेल हमें मिला है देवशंकर जटौलिया और भरत जटौलिया का। रामेश्वर का संगीत संदेश हमें मिल चुका है।
0: बिल्कुल नवीन, ये लिख रहे हैं कि आपके पसंद कार्यक्रम करते हुए दोनों भाइयों को सादर नमस्कार। तो आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। लिख रहे हैं कि हम आपका प्रोग्राम बराबर सुन रहे हैं। आज की प्रस्तुति क्या लाजवाब प्रस्तुति हो रही है। आपकी इस हौसला अफजाई के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लिखते हैं, अच्छी प्रस्तुति के लिए दोनों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हमें कोई भी गीत में शामिल करें, धन्यवाद।

0: ये लिखते हैं
1: कानपुर देहात
0: जी
1: से रामेश्वर कठौरिया, उमाकांती कठेरिया, कमलेश कठेरिया और उनके साथ है निशा, वेद बाबू कठेरिया और समस्त कठेरिया परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में हम दोनों का नाम भी लिखा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि आपको आज के तमाम गीत भी पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि गीत जो है ना सिद्धार्थ, ये इन्हीं की
0: जी
1: पसंद किए हैं, हमारी पसंद। आ हा हा हा बहुत ही खूबसूरत संदेश। योग शरीर मन और आत्मा को एक सूत्र में पिरोने के लिए एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है। लिखने वाले हैं टैगोर गार्डन दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। और ये आगे लिखते हैं,
0: जी ये लिखते हैं कि आसन, शारीरिक मुद्राएं शरीर को स्वस्थ और लचीला बनाने के लिए, प्राणायाम श्वास नियंत्रण ऊर्जा और मानसिक शांति के लिए, ध्यान मानसिक एकाग्रता और तनाव मुक्ति के लिए। मूल उद्देश्य केवल कसरत नहीं बल्कि मन को शांत करना और आत्मिक चेतना को जगाना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाने वाला है और इसके लिए हम सभी मिलकर तय करें कि इस दिन को हम कैसे खास बना सकते हैं।
1: सिद्धार्थ, कभी कभी
0: जी
1: लगता है कि जो इतना खूबसूरत संदेश लिखते होंगे उनके
0: जी
1: मन कितने खूबसूरत होंगे,
0: बिल्कुल
1: है ना। तभी तो अगर आपका मन स्वस्थ है, आपका शरीर स्वस्थ है, आपका मस्तिष्क स्वस्थ है, तो स्वस्थ विचार जो हैं वो खुद ब खुद आते चले जाते हैं। और जब उनको आप कागज़ पे उकेरते हैं ना, ईमेल पर लिखते हैं, तो वो हम तक पहुंच जाते हैं।
0: बिल्कुल। और नवीन, मुझे लगता है कि दिल की बात सीधे दिल तक पहुंचती है। ये बात हमें इतना प्रेरित करती है कि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेकर आएं, अच्छे अच्छे गीत गीत आपको सुनवाएं और आपके मन की बात हमारे मन की बात बन जाती है। तो हम बात कर रहे हैं योग दिवस की, योग करने की। तो कहते हैं कि सांसों में हो लय, मन में हो विश्वास, योग से ही मिलता है जीवन को उल्लास। तो आपका जीवन उल्लासमय हो जाता है अगर आप करते हैं योग। तो योग हर तरीके से हमको फिट रखता है। और हमारा जो अगला संदेश है ये है संगीत के सितारे रेडियो लिसनर्स क्लब। नवीन, हम देखते हैं कि हमारे श्रोताओं ने, जैसे हम बात कर रहे थे कि बड़े सारे ऐसे क्लब बना रखे हैं, रेडियो क्लब, ये लिखते हैं कि हम भी आपको अलग अलग जगह पर सुन रहे हैं, आपको आदाब अर्ज कर रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत आदाब, इतना उम्दा प्रोग्राम पेश करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। प्रोग्राम और गीत इनको पसंद आ रहे हैं, ये ऐसा लिखना है फारूक अली खान साहब का। तो आपसे भी, हमको भी आपके संदेश बहुत अच्छे लग रहे हैं। और अगला संदेश नवीन किसका है?
1: अगला संदेश हमें मिला है मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा का। कहते हैं कि सर जी, प्रोग्राम लाइव सुन रखे हैं, सुंदर गीतों और सुंदर प्रस्तुति के साथ हमारा नाम भी शामिल कीजिए। लीजिए जी, आपने कहा और हमने नाम शामिल कर लिया। और कहते हैं कि आप कहें और हम ना माने, ऐसे तो हालात नहीं। अगला संदेश,
0: जी हाँ, अगला संदेश ये लिखते हैं कि आप सिद्धार्थ और नवीन जी, सादर अभिवादन, आपको सुन रहा हूँ, गजब प्रस्तुति दे रहे हैं आप। योग हमारी आयु को भी बढ़ाता है। ग्राम पजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार, आदर्श, सार्थक, अलौकिक ने ये संदेश हमें भेजा है। बहुत ही प्यारे संदेश आप हमें भेज रहे हैं और योग के बारे में जो आप हमें नई नई बातें बता रहे हैं या वो सारी जानकारी दे रहे हैं जो हमारे अलग अलग श्रोताओं को, हमारे जो भी लोग हमसे इस समय जुड़ रहे हैं वहाँ तक पहुंच रही है ये बातें।
1: आदरणीय प्रसारक जी, सप्रेम नमस्कार। लिखने वाले हमें धनश्री बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, अनिल बुरांडे और उषा बुरांडे, बुलंदशहर सुरेश। ये हम लोगों को बल्लाशाहपुर सुरेश से हमारे को लिखा है इन्होंने, और संदेश इन्होंने नहीं दिया। संदेश अगर साथ में देंगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। अगला संदेश हमें मिला है किशन वजनानी का। किशन वजनानी के पास सुदर्शन साहब का संदेश हमें मिल चुका है, साथ में है सुदर्शन मुखी, सिमरन मुखी, अनीता मुखी। लिखने वाले हैं शांति नगर सोनीपत से। और देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं योग करो निरोग रहो, योग करो निरोग रहो, योग अपनाओ तन मन से स्वस्थ हो जाओ, रोजाना योग करते रहो और हमेशा युवा बनते रहो। अब हर किसी ने अपने आप को युवा रहने के लिए
0: जी
1: योग कर रहा है।
0: बिल्कुल,
1: देखिए
0: तो बहुत सारे फायदे हैं योग के और हम तो यही कहेंगे कि योग है जीवन का आधार, तन मन का ये सच्चा श्रृंगार, सांसों में भरता नव उल्लास, दूर करे हर चिंता और त्रास। तो बिल्कुल योग आप यूं ही करते रहें। और
1: सिर्फ आज ही के दिन ना करें, क्योंकि जिंदगी

0: की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन हमने, आगे तो अभी पूरा आसमान बाकी है।
1: जी हाँ, पूरा आसमान आपके पास है, और अपनी उड़ान यूं ही जारी रखिए।

0: जी हाँ श्रोताओं, हमने आपसे पूछा कि इस बार योग दिवस पर आप क्या कर रहे हैं, इसे कैसे मनाने वाले हैं। ढेर सारे संदेश हमें मिल रहे हैं क्योंकि योग का दीपक जला, मिट गया अंधकार, तन मन दोनों खिल उठे, जीवन हुआ साकार। जी हाँ, हमारे अगले श्रोता लिखते हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज लिख रहे हैं कि हमारा नाम कार्यक्रम में शामिल करें, तो हमने आपका नाम कार्यक्रम में शामिल कर लिया है। और यहाँ पे एक और नवीन, मुझे लगता है कि इन्होंने हमें बेटा लिखा है, सिद्धार्थ बेटा, नवीन बेटा, आपको हमारी तरफ से राम राम स्वीकार करें। जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। लिखते हैं कि योग दिवस के दिन हम भी योग परिवार सहित करेंगे। वैसे तो हम रोज़ योग करते हैं, योग प्राचीन काल से चला रहा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। इसके नियमित अभ्यास से शरीर में लचीलापन और ताकत बढ़ती है, तनाव व चिंता कम होती है, हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है और गहरी नींद आने में मदद मिलती है। ऐसा कहना है नवीन किसका?
1: ये कहने वाले हैं आनंद पर्वत दिल्ली से लखपत राज, वेद प्रकाश चौहान और सूबेदार अमर सिंह। और इनका संदेश पढ़ के हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम इसमें स्टूडियो में खुद ब खुद योग में तल्लीन हो गए हैं।
0: जी हाँ, और कितने सारे फायदे इन्होंने बताए हैं और मुझे लगता है कि बहुत इंस्पायरिंग मैसेज है। आपके इस संदेश से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलने वाली है।
1: तो योग कीजिए, रोग दूर भगाइए, जिंदगी को खुशहाल बनाइए। और ध्यान रखिए, योग सिर्फ एक कसरत नहीं है बल्कि खुद से मिलने का एक जरिया है। खुद से मिलना चाहते हैं ना, तो सुबह एक घंटा प्राणायाम कीजिए। अगला संदेश, अगला ईमेल, योग से दिन प्रसन्न हो जाता है। ये दिन कैसे प्रसन्न होता है, अब इस पे हमें लिख के
0: तो हमें लगता है कि ये दिल लिखना चाह रहे थे तो हो गया दिन। तो बहुत सुंदर बन जाता है और दिल भी खुश हो जाता है। संघ मित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1
1: पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता जी ने हमें ये संदेश लिख के भेजा है। अगला संदेश हमें मिला है हरजिंदर सिंह भाटिया का। उन्होंने भी गीत में अपना नाम शामिल करने के लिए हमें अपना नाम लिखा भेजा है। अगला खत हमें मिला है, अगला ईमेल मिला है जवाहर नगर दुर्ग से आरजी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े का। लिखते हैं, महोदय जी सादर नमस्कार, हमारे नाम आखिर कब शामिल होंगे? अरे देखिए, आपका नाम शामिल कर लिया ना हम, आप योग कीजिए ना, नाम शामिल हो रहा है ना, आप उसकी चिंता मत कीजिए
0: जी। और एक मुझे दिख रहा है दिल का मेल बॉक्स, नवीन ऊपर कहीं लिखा हुआ है दिल का मेल बॉक्स। ये लिखते हैं कि आदरणीय प्रस्तुतकर्ता जी सादर प्रणाम नमस्कार, किसी भी सदाबहार गीत में शामिल करें। ये लिखना है राम शरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी का। और आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि योग है संयम का पथ, योग है जीवन ज्ञान, इसकी छाया में मिले सुख, शांति और सम्मान।
1: अगला संदेश हमें है शिषपाल वरदान का। दोनों आरजी को प्रणाम, योग दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं, प्रोग्राम इज़ द बेस्ट। गाज़ियाबाद से इन्होंने हमें अपना संदेश हमें भेजा हुआ है। स्टार रेडियो संघ का हमें संदेश मिल रहा है डुमराव बिहार से आसमा दुखनर अदफ, वली भाई अंसारी, फिल्म सिटी मुंबई से इकबाल मोका और अफसरी मोगा, इन्होंने हमें संदेश भेजा है आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सुनील पटनायक का हमें संदेश मिला है अनारकली बाजार जगराओं से। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा और उनके साथी हमें संदेश मिल रहे हैं। चरण दास का हमें संदेश मिला हुआ है।
0: बिल्कुल, ये लिखते हैं कि रोजाना ईमेल भेजता हूँ, शामिल करना आपकी मर्जी होता है, आप देख लीजिए। तो मांगे राम अग्रवाल और माया देवी चौधरी वास जी, आपका संदेश शामिल ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? हम आपके संदेशों को शामिल करने के लिए ही इस कार्यक्रम को करते हैं। और हमारा अगला जो संदेश है ये मेरठ कैंट से आया है दिग्दर्शन और कविता गौड़ जी का। और रानी बाजार बीकानेर से रानी और बिट्टू भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, लिख रहे हैं कोई भी नगमा सुनवा दीजिए। और किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
1: लगातार संदेशों का सिलसिला हमारे पास आ रहा है, अगर कोई संदेश मिस हो जाता है तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे संदेश हमारे पास लगातार आते हैं। सरफुद्दीन अंसारी का संदेश हमें मिल चुका है, अगर सभी मन का योग करें तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे।
0: और नवीन, मन के योग की इन्होंने बात की है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सांसों के सरगम पर जब मन गाने लगता है, सांसों के सरगम पर जब मन गाने लगता है योग का साधक तब खुद को पाने लगता है। तो खुद से भी मिलने का एक तरीका है योग।
1: और हाँ, और अगर आप दवाइयों को अलविदा कहना चाहते हैं ना, तो ये भी सुन लीजिए, दवाइयों को कहें अलविदा, योग से जोड़े नाता, जो रोज प्राणायाम करता है उसका जीवन संवर जाता।
0: बिल्कुल, तो ऐसा ही एक मैसेज हमारे पास आया है, योग बीमारी दूर करता है, आपका प्रोग्राम तनाव दूर करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजू अग्रवाल, केशव, प्रियांशी चौधरी और इनके परिवार के सभी सदस्य इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और नवीन, अब हमारा जो अगला गीत है ना, वो एक ऐसा मोटिवेशनल सॉन्ग है, जब आप थोड़ा सा लगे कि आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा कम हो रही हो ना, तो आप इस गीत को सुन लीजिए, आप एकदम चार

0: अनजान ऐप से बचें।
1: RBI कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
3: और हमारा जो अगला संदेश है ये आया है डोल राणा जी का। ये लिखते हैं कि नमस्कार, आप दोनों प्रस्तुतकर्ताओं को आज दो आवाज़ों में प्रस्तुति और गाने बेहद पसंद आ रहे हैं। जी हाँ डीबी राणा जी, नेहरू विहार दिल्ली से हमें लिख रहे हैं, हमें भी आपके संदेश अच्छे लग रहे हैं। और बिल्कुल सही बात है, एक से भले दो, और जब दो लोग मिल जाते हैं तो वो दो ही नहीं रहते, वो 22 हो जाते हैं। और अब यहाँ पर हमारा अगला संदेश है गाँव चौधरी वास हरियाणा से, लिखते हैं नमस्कार नवीन जी, सिद्धार्थ जी, आप कितना योग करते हैं आप ये तो बताते हैं हमारे से, लेकिन आपको भी बताना चाहिए कि आप कितनी देर करते हैं, कितने मिनट करते हैं। हम कम से कम एक घंटा योग रोज़ाना करते हैं, एक घंटा आपकी पसंद सुनते हैं, इससे हमारा ईमेल शामिल नहीं होता। और बिल्कुल, तो आपका ईमेल शामिल हो गया। आपने पूछा कि हम योग करते हैं कि नहीं, बिल्कुल योग हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। और आपको बता दें कि हम लोग भी योग करते हैं और इसके लिए समय निकालते हैं, क्योंकि जब हम आप से जुड़ते हैं इससे तन तो स्वस्थ रहता है, मन भी प्रसन्न रहता है। और आपको बता दें कि इस बार रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो मुख्य कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है, और जहां पर कई सारे जो सबसे भव्य कार्यक्रम है, सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे, भाग लेंगे इस कार्यक्रम में। और इसके साथ ही पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर एक देश में योग दिवस मनाया जाएगा। और इस बार जितनी बड़ी संख्या में हम योग करने वाले हैं वो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। और हमारे अगले जो लिसनर हैं वो लिखते हैं सिद्धार्थ जी, नवीन जी, प्यार भरा नमस्कार। योग तो सुबह शाम करते हैं लोग योग, लेकिन हमारा योग तो दिन भर होता है, क्योंकि हमारा काम है हथकरघे का, जिसमें हम दिन पे कम से कम 5000 बार हाथ और पैर चलाना पड़ता है, तब जाकर एक साड़ी तैयार होती है।
4: ब्यूटीफुल
3: नवीन, अगर हम इस तरह से हस्तकला या हम जो बुनकर लोग होते हैं, तो अगर हम देखें तो उनकी इस कलाकारी होती है किसी भी इस तरह की चीज़ को बनाने के लिए, तो बेहद अपने आप में उनका काम ही ऐसा होता है कि अपने आप वो उनकी जो एक्सरसाइज है, उनकी फिटनेस है, वो होती रहती है।
4: और सिद्धार्थ, काम आपकी पसंद का है तो वो एक साधना की तरह होता है, और ये साधना ही जो है अपने आप में एक योग होता है। अगर आप अपने काम से खुश हैं ना, तो आपका मन खुश है, और आपका मन खुश है तो फिर स्वस्थ तो आप वैसे ही हैं। और जिस तरह का काम आप बुनाई का करते हैं, उसमें हाथ और पैर आपके दोनों चलते रहते हैं, इसके अलावा भी थोड़ा सा वक्त निकालिए, थोड़ा सा शांत बैठ के अपने आप को एकाग्रचित कीजिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव लोहारगढ़ से, ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप गुरनूर गुरनाल और अविराज सिंह ने हमें संदेश भेजा है। अगला संदेश हमें हीरामणि वर्मा का है, इन्होंने हमें लिखा है दत्रेंगी भाटापारा से, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र नोखेलाल वर्मा और

0: के बहुत सारे साथियों का वक्त अब धीरे धीरे बहुत तेजी से खिसकता जा रहा है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं उन संदेशों को हम पढ़ें,
1: ज्यादा से ज्यादा संदेश
0: शामिल करें। नीतू मल्होत्रा का संदेश है, शुक्रिया कहना तो भूल गए, आपका शुक्रिया, शुक्रिया जी ईमेल में नाम शामिल करने के लिए आपका भी बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीतू मल्होत्रा और लक्ष्य लाडो और पापा जी नानक चंद मल्होत्रा और उनके बहुत सारे साथी जो हैं इन्होंने हमें संदेश भेजा है। अगला संदेश हमें रेडियो लव सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र दीपक सैनी, प्रमिला और अनुश्री सैनी ने हमें संदेश भेजा है और मैं देख रहा हूँ कि सिद्धार्थ कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ नवीन और अपने श्रोताओं से भी कि योग से जब जुड़ गई सांसों की हर डोर, योग से जब जुड़ गई सांसों की हर डोर, तन में जागे चेतना, मन हुआ चिचोर। तो जब योग के साथ आप जुड़ जाते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन आता है और आप बहुत स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं। और नवीन, हमेशा एक खुश इंसान ही दूसरे इंसान को खुश रख सकता है। जिस तरह से जब आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाला भी मुस्कुराता है।
0: तो अब चलते चलते मैं और सिद्धार्थ बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ अब आपको छोड़े जाते हैं और उम्मीद है कि आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। ज़रूर लिख भेजिएगा, ईमेल आईडी आपके पास है ही। फिर मिलेंगे,
1: तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 11 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का स्पष्ट संदेश था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
3: पारिस मैं इसे साथ वे दौरे के लिए स्वागत करते फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 में शुरू हुए इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं। इसके बाद राष्ट्रपति आज से ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। वे रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार का दौरा कर रहे हैं। वे पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन से छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस और दोहरी घाट ऑनरीहार के वाराणसी तक विस्तारित रेल सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों के बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। मणिपुर में खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों का व्यापक तलाश अभियान जारी है। इन अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों ने विभिन्न भूमिगत संगठनों के 10 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया और एक अपहृत व्यक्ति को सफलतापूर्वक रिहा किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। भारत ने इस समझौते को मौजूदा हालात के विपरीत बताते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है वो सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकता। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई नौसैनिक नाकाबंदी हटा ली है। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमेरिकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने भी श्री राहुल गांधी को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी

अभी आप सुन रहे थे सबरस कार्यक्रम। हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्रीय प्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर आज दिन में 1:10 पर आप सुन सकेंगे एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत फिल्म लव इन टोक्यो के कुछ गीत। 11:30 हुए जाते हैं, आइए अब सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग शुद्ध सारंग में ख्याल। कलाकार हैं रितेश और रजनीश मिश्रा।

संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। हम अपने सुनने वालों को बता दें, आज दिन में 1:10 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे फिल्म लव इन टोक्यो के कुछ गीत, और दिन में 2:30 का समय रहेगा एक ही कलाकार कार्यक्रम का। इसमें आज आप सुन सकेंगे दाताराम के विषय में। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 12 बजने को हैं, थोड़ी देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।

0: करेंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है

फसल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद राष्ट्रपति आज से उड़ीसा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में भी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार का दौरा कर रहे हैं। वे पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन में छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस अधोरी घाट ऑनरिहार की वाराणसी तक विस्तारित रेल सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु गुजरात उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों के बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। मिजोरम में 8,75,000 मतदाताओं का 95% से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है। राज्य की संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी एंथेल रोथांगपुई ने बताया कि राज्य में कल तक 8,35,000 से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के 11 जिलों में 100% डिजिटलीकरण हो गया है। इस बीच राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुरोध पर आयोग ने मिजोरम के लिए मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि को पहले की 5 जुलाई से संशोधित करके 4 जुलाई कर दिया है। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि भी 4 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन करते हुए गलत तरीके से दिखाया गया है। वीडियो में दावा किया गया है कि 22,000 रुपये की एकमुश्त जमा राशि से प्रतिदिन 80,000 रुपये तक का रिटर्न मिल सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा बनाया गया है। भारत का LNG टैंकर दिशा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर

घर आंगन। घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। शुक्रवार का दिन यानी खास प्रस्तुति एक कदम बुजुर्गों की ओर। कहते हैं धैर्य केवल इंतजार का नाम नहीं है बल्कि उस सफर पर विश्वास

अभी हम सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में ये गीत फिल्म थी वक्त। और अब बातें कुछ स्वास्थ्य की, कुछ योग की। तो चलिए सुनते हैं ये बातचीत। विषय है बुजुर्गों का स्वास्थ्य। योग गुरु देविका श्रीवास्तव से बात कर रही हैं रश्मि कुकरेती।

0: आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज इस चैनल के सभी सुनने वालों को रश्मि कुकरेती का नमस्कार। कार्यक्रम है आपका अपना घर आंगन। आज हम लेकर आए हैं वो है वृद्धावस्था में करने वाले योगासन और किस प्रकार से आप योग से जुड़े। जब हम योग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक योग प्रशिक्षक की भी आवश्यकता होती है, तो हमने इसके लिए स्टूडियो में आमंत्रित किया है देविका श्रीवास्तव को। देविका, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में।
1: हरिओम सभी को, मेरा नाम देविका श्रीवास्तव है और मैं योगा शिक्षक और योगा विद्यार्थी हूँ।
0: देविका, बात पिछली बार बच्चों के की थी तो बच्चों का शरीर तो बहुत लचीला होता है,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो शरीर में एक जो सबसे बड़ी

0: वो जुड़ाव हो तो अच्छा ही है। उसके लिए क्या कहेंगी, जैसे प्राणायाम वगैरह जो ध्यान करना किस तरह से कर सकते हैं?
1: वैसे तो देखिए, ध्यान करने के लिए और उस शक्ति से जुड़ने के लिए कोई एज नहीं है।
0: उम्र नहीं है। जी जी
1: वृद्धावस्था में उसको
0: कहते
1: इसलिए
0: हैं ना
1: ज्यादा,
0: उम्र की सीमा हो
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल, उस
0: जी
1: अवस्था में इसलिए ज्यादा कहते हैं क्योंकि सबको लगता है कि वो स्ट्रेसलेस हैं। उनके
0: अच्छा
1: पास अब किस चीज का स्ट्रेस,
0: हाँ
1: पर उनके पास अब जो स्ट्रेस है वो बहुत बड़ा स्ट्रेस है कि
0: जी
1: अब टाइम शायद कम हो रहा है,
0: हाँ
1: उन्हें ये
0: मुझे लगता
1: टेंशन
0: है
1: काटती है।
0: स्ट्रेस लेके नहीं चलना चाहिए इसको,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: हमें तो जिंदगी को आगे ही लेकर जाना है, इस
1: बिल्कुल,
0: तनाव को नहीं लेना।
1: उनको अपनी
0: हाँ हाँ
1: परेशानियों से वे परेशान होते हैं कि यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, दवाइयाँ
0: हाँ
1: हैं,
0: थोड़ा सा
1: तो
0: ये जरूर है कि
1: बिल्कुल
0: हमारी जो ये मशीनरी ज्यादा देखभाल मांगने लग जाती है
1: बिल्कुल,
0: ना।
1: तो वो
0: हाँ
1: निर्भर होने का डर उन्हें बहुत होता है कि अब वो
0: हाँ
1: बच्चों पे निर्भर हैं, तो वो
0: हाँ
1: कोशिश करें कि वो खुद पे ही निर्भर
0: खुद
1: रहें,
0: पर ही निर्भर
1: उस
0: होना
1: स्टेज में वो
0: जरूरी है।
1: जाएं ही
0: जी
1: नहीं, उसके लिए अभी से उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। सेकेंड चीज, परम शक्ति से जुड़ने के लिए वो प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शक्ति आपके अंदर ही है।
0: जी
1: तो आप जब खुद को महसूस करना शुरू कर देंगे, खुद की आत्मा परमात्मा कहते तो जरूर हैं, पर वो आत्मा और परमात्मा दोनों आपके अपने ही अंदर हैं।
0: जी
1: तो
0: ये
1: आप
0: बहुत
1: जब,
0: सुंदर बात कही है
1: बिल्कुल
0: देविका आपने, कि वो परम शक्ति जो है आपके खुद
1: राइट,
0: में ही मौजूद है, आपके
1: बिल्कुल
0: अंदर ही मौजूद है। अहम ब्रह्मास्मि का जो हमारे यहाँ
1: बिल्कुल
0: कॉन्सेप्ट है कि आपके अंदर ही ईश्वर का वास है, और हर हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का
1: बिल्कुल
0: वास, वो अच्छा जो है तत्व है हम सब
1: राइट,
0: लोगों के अंदर, भलाई करने का है, किसी की अच्छा हो रहा है उसको देख के खुश होने का जो तत्व
1: बिल्कुल।
0: है,
1: तो जैसे
0: किसी
1: आपने
0: की
1: अभी,
0: मदद करने का तत्व
1: बिल्कुल,
0: है, वो ही ईश्वर का रूप है ना, तो वो हमारे अंदर ही है। हाँ जी
1: तो
0: बहुत अच्छी बात कही आपने।
1: जैसे आपने बताया कि वो आपका ही रूप है, तो फिर उसके लिए सिर्फ वृद्धावस्था ही क्यों?
0: वो तो कभी भी कर सकते हैं। जी
1: बिल्कुल, हर एज में कर सकते
0: जी
1: हैं। तो हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके पास थोड़ा समय जरूर होता है, तो उसके लिए
0: जी
1: वह प्राणायाम अपने लाइफस्टाइल में जरूर जोड़ें। दोनों टाइम कर सकें तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, एक टाइम भी कर सकें तो बहुत अच्छा है। सुबह वो योगा करें 1 घंटा, आधा घंटा, जैसे भी उनकी क्षमता है। उसके बाद छोटी छोटी आदतें जरूर अपने आप में अपना लें, बैठने का तरीका, उठने का तरीका, लेटने का तरीका बहुत मैटर करता है। आप लेफ्ट साइड करवट लेके लेटते हैं तो आपका हार्ट बेटर वर्क करता है, जिससे
0: हमें कहते
1: आपका,
0: हैं ना कि बाईं तरफ करवट लेके सोना
1: बिल्कुल,
0: चाहिए।
1: तो
0: जी
1: उससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है,
0: जी
1: ब्रेन को बहुत अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, तो ब्रेन आपका शांत रहता है,
0: जी
1: एक्टिव रहता है। इवन शाम के टाइम वह प्राणायाम करें और थोड़ा सा ध्यान कर लें।
0: कई बार ऐसा होता है कि कुछ हालात घर में ऐसे हो जाते हैं कि गुस्सा बहुत आने लग जाता है ना, और पता चला बच्चे आके कुछ कह रहे हैं तो आपके अंदर धैर्य एकदम कम हो गया। इसके लिए भी क्या कोई योग के पास कुछ समाधान है?
1: योग के पास हर चीज का समाधान है,
0: जी
1: क्योंकि योगा तो आपके पैदा होने से लेके आखिरी दिन तक का आपको वो कि योगा वो करें ही करें।
0: अच्छा
1: 1 घंटा
0: जी
1: नहीं तो 45 मिनट, 45 मिनट नहीं तो आधा घंटा। कुछ वृद्ध हमारे ऐसे होते हैं जो ऑन बेड होते हैं,
0: जी जी
1: जिनकी इस लेवल की भी क्षमता नहीं होती कि वो उठ के कर पाएं, खड़े हो पाएं, तो वो बैठ तो एटलीस्ट सकते हैं। अपने
0: हाँ
1: आप को पुश कीजिए, अपना ब्रेन एक्टिव रखिए और अपने आप को मोटिवेट करते रहिए।
0: जी
1: तो उठने की कोशिश करें, बैठ के करने वाले बहुत से ऐसे प्रैक्टिसेस हैं, हैंड स्ट्रेचिंग्स कीजिए, शोल्डर रोटेशंस हो गई आपकी, शोल्डर ट्विस्टिंग हो गई, नेक ट्विस्टिंग हो गई, ये सारे आप करें,
0: जी
1: ध्यान करें, मंत्र उच्चारण करें, उससे बहुत शक्ति मिलती है।
0: बहुत अच्छी बातें देविका बता रही हैं, क्योंकि अगर हम इसको दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं तो हमारा शरीर वैसे ही स्वस्थ रहेगा। तो अभी जाते जाते जो हमारी योग गुरु योग प्रशिक्षिका हमारे साथ आई हैं देविका श्रीवास्तव, इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद कर, देविका आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई योग के बारे में।

0: जाते जाते जो हमारी योग गुरु योग प्रशिक्षिका हमारे साथ आई हैं देविका श्रीवास्तव, इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद कर। देविका, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई योग के बारे में, परम सत्ता के बारे में, अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें उसके बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एफएम गोल्ड के स्टूडियो से जुड़ने के लिए।
1: धन्यवाद। हरिओम।
0: नमस्कार।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार,

0: और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11
1: हंसी और यादों से भरा एक संसार बन जाता है। अपनों का हाथ थामे रखिए, रिश्तों को समय दीजिए और दिल से जुड़िए।

के कारण उन्हें दुनिया भर में फॉरेस्ट इंसाइक्लोपीडिया के नाम से भी जाना गया। अपने जीवन के लगभग 70 वर्षों में उन्होंने 30,000 से अधिक पेड़ों के रोपण और संरक्षण में योगदान दिया। वर्ष 2024 में 86 ईयर्स की आयु में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनके लगाए हुए पेड़ आज भी उनकी सोच, उनकी मेहनत और उनके प्रकृति प्रेम की कहानी सुना रहे हैं। तुलसी गौड़ा हमें ये सिखाती हैं कि प्रकृति की रक्षा के लिए बड़े पद या बड़ी डिग्री नहीं, बल्कि बड़ा दिल और सच्ची नीयत चाहिए। आइए हम भी अपने हिस्से का योगदान दें, एक पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें और अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ बनाकर रखें, क्योंकि जब हम प्रकृति का ख्याल रखते हैं तब प्रकृति भी हमारा ख्याल रखती है और हम आपका भी ख्याल रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिससे कि आप सब हमारे प्रोग्राम का, शो का हिस्सा बन सके। हम आपसे एक सवाल करेंगे जो कुछ भी हो सकता है, आपकी फैमिली से रिलेटेड, डेली लाइफ से रिलेटेड। आपको ईमेल के जरिए इसका जवाब देना होगा। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो आज से ही शुरू करते हैं। हमारा आज का सवाल है कि कौन है आपके घर का 6 AM हीरो, यानी कौन है जो 5 या 6 बजे उठकर अपने काम में लग जाते हैं या फिर उठ जाते हैं भले ही वो कुछ भी करें। ज्यादा से ज्यादा श्रोता भाग लीजिए इस इंटरेस्टिंग सेगमेंट में। सुदर्शन मुखी जी, गौरी शंकर वर्मा जी, नवीन भाटिया जी, चरण दास जी, आप सब हमारे रेगुलर श्रोता हैं। मुझे लगता है कि आप सब इसे मिस नहीं करेंगे। उत्तर दीजिए, आपके संदेश का इंतजार रहेगा। आपके मेल्स को हम अपने इस प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे।

अभी हम सुन रहे थे ये खूबसूरत सा गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म थी हरियाली और रास्ता। सास बहू का रिश्ता सुनते ही अक्सर हमारे मन में तस्वीरें उभर कर आती हैं, तकरार, शिकायतें और गलत फहमियाँ। लेकिन असल जिंदगी की कहानी अब बदल रही है। आज की सास और आज की बहू दोनों ही एक ऐसे रिश्ते की तलाश में हैं जहाँ सम्मान हो, समझ हो, स्नेह हो। सबसे पहले एक बात स्वीकार करनी होगी, सास माँ नहीं बन सकती, क्योंकि हर रिश्ते की अपनी एक खूबसूरती और अपनी एक सीमा होती है। लेकिन हर बहू की चाहत ज़रूर होती है कि उसकी सास समझने वाली हो, स्नेह देने वाली हो और साथ खड़ी रहने वाली हो। और हर सास भी यही चाहती है कि बहू उसे केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में सम्मान दे। जब बहू घर में आए तो सास के मन में यह डर नहीं होना चाहिए कि अब मेरे बेटे पर मेरा हक कम हो जाएगा, बल्कि ये सोच होनी चाहिए कि जिस बेटे को अब तक एक माँ का प्यार मिला उसे अब जीवन साथी का

बड़ा हिस्सा पीछे छोड़कर आती है। ऐसे में परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि घर का माहौल ऐसा हो कि उसे बार बार यह महसूस न हो कि वो पराई है, उसे ये एहसास न हो कि यह घर भी उतना ही उसका है, उसे ये एहसास होना चाहिए। ऐसा वातावरण बनाइए कि उसकी माँ को कभी ये टेंशन ना हो कि मेरी बेटी कैसी है। आज के दौर में सास बहू का रिश्ता आदेश और अपेक्षाओं का नहीं बल्कि टीम वर्क का रिश्ता बन सकता है। कभी सास बहू से नई तकनीक सीख सकती है तो कभी

बेटी साबित करने की ज़रूरत नहीं है और सास को माँ बनने की परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि दोनों एक दूसरे के लिए सम्मान, धैर्य और संवेदनशीलता बनाए रखें। तो आइए एक छोटा सा संकल्प लें, शिकायतों से पहले संवाद करेंगे, निर्णय से पहले परिस्थितियों को समझेंगे, अधिकार से पहले अपनापन चुनेंगे और रिश्ते को अहंकार से नहीं विश्वास से सींचेंगे। रिश्ते परफेक्ट नहीं होते हैं लेकिन उन्हें खूबसूरत जरूर बनाया जा सकता है। थोड़ा सम्मान, थोड़ी समझ, थोड़ा सा प्यार और कभी कभी यही छोटी छोटी बातें घर को स्वर्ग बना देती है।

अभी हम सुन रहे थे जगजीत कौर को फिल्म शगुन से, और अब जो बात मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ वो मैंने किसी किताब से नहीं बल्कि अपनी नानी दादी की रसोई से सीखी है। उन्होंने हमें सिखाया था कि खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि प्रकृति के सम्मान का भी है। उनके यहाँ जीरो वेस्ट कुकिंग कोई नया ट्रेंड नहीं था बल्कि जीवन जीने का तरीका था। आज हम अक्सर सब्जियों के सबसे पौष्टिक हिस्से को फेंक देते हैं जबकि वही हिस्से हमारे स्वास्थ्य के लिए खजाना साबित हो सकते हैं। जैसे धनिया के डंठल, इन्हें फेंकने की बजाय चटनी, सूप और करी में इस्तेमाल कीजिए। इनमें भरपूर फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। मूली के पत्ते स्वादिष्ट पराठे, चटनी और सब्जी बनाने के काम में आते हैं। फूल गोभी के पत्तों से स्वादिष्ट सब्जी, दाल या पराठों की स्टफिंग तैयार की जा सकती है। इसमें विटामिन सी और फाइबर बहुत ज्यादा होते हैं। और ब्रोकली के डंठल, इन्हें सूप या स्टर फ्राई में डालिए, ये भी उतने ही पौष्टिक है जितने इनके फूल। तो अगली बार जब आप सब्जियां काटें जरा रुककर सोचिए कि क्या जो हिस्सा फेंकने जा रहे हैं वो वास्तव में बेकार है, शायद नहीं। आइए समझदारी से खाएं, भोजन की बर्बादी कम करें, अपनी थाली में पोषण बढ़ाएं, क्योंकि छोटी छोटी आदतें ही बड़े बदलाव लाती है।

अभी हम सुन रहे हैं जसपाल सिंह को, फिल्म है नदिया के पार। इसी के साथ हमारी आज की इस खुशनुमा यात्रा को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दीजिए मंजुला को इजाजत। नमस्कार।

0: उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
2: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9,000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
1: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। अपने दौरे के अगले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर जाएंगी, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेकाडातु परियोजना मौजूदा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करती है और कावेरी जल पर तमिलनाडु के अधिकारों का हनन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक NEET UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की पहली सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान पर घरेलू चुनौतियों और आतंकवाद को निरंतर समर्थन देने से ध्यान भटकाने के लिए दुष्प्रचार का आरोप लगाया। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि यात्रा के दौरान राष्ट्रीय पठन दिवस और पठन माह से जुड़े कार्यक्रमों का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

पहुंच गई थी। आप सभी का स्वागत है हम सभी के मनपसंद कार्यक्रम एक ही फिल्म से। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1966 की सुपरहिट फिल्म लव इन टोक्यो की।

इसके अलावा दमदार कलाकार थे प्राण, ललिता पवार और मदनपुरी। लीजिए सुनते हैं इसी फिल्म का एक और मधुर गीत।

दोस्तों, लव इन टोक्यो एक ऐसी फिल्म जिसने भारतीय सिनेमा को जापान की खूबसूरती से रूबरू कराया, शानदार संगीत दिया और एक ऐसा नाम दिया जो आज भी लोगों की जुबान पर है। साथियों, अगर आपको यह फिल्म आपने अगर नहीं देखी है तो इसे जरूर देखिएगा।

दोस्तों घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही है आपसे अनुमति लेने के लिए, लेकिन फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।

0: मंत्री राजनाथ सिंह नूं एक निवेश प्लेटफार्म दा समर्थन करदिआं दिखाया गया है। डिजिटल तौर ते हेर फेर नाल बनाए गए इस वीडियो विच दावा किया गया कि 22,000 रुपए की एक मुश्त जमा रकम नाल रोजाना 80,000 रुपए तक का रिटर्न मिल सकता है। पीआईबी की तत्थ जांच इकाई ने स्पष्ट किया कि वीडियो फर्जी है ते आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस राही बनाया गया है। भारत और अफगानिस्तान विचकार 3 मैचों की एक रोजा क्रिकेट लड़ी के आखिरी मैच की तेज गेंदबाज हर्षित राणा को भारतीय टीम में चुना गया है। यह मैच कल चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेडा जाएगा। 24 साल हर्षित राणा को आयरलैंड ते इंग्लैंड विच होने वाली 2020 लड़ी लई भी टीम विच शामिल किया गया है। अंत विच चोणवीआं खबरां एक बार फिर सुन लो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास प्रगट किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय टीचे तो बहुत पहला सिकल सैल बीमारी खत्म कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली विच पीएम विकसित भारत रोजगार योजना तहत 2,400 करोड़ रुपए की राशि वंडन गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 जून होने वाली नीट यूजी की मुड़ प्रीख्या तो पहले टेलीग्राम मैसेजिंग प्लेटफार्म से अस्थायी तौर पर रोक लाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा है। भारत का एलएनजी टैंकर दिशा होरमुस जलमार्ग पार करने तो बाद गुजरात की दहेज बंदरगाह से पहुंच गया है। इस खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। साडा अगला प्रदेशिक खबरों का बुलेटिन शामी 6:20 से होगा। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस और स्लोवाकिया का अपना 5 रोजा तारीखी दौरा मुकम्मल कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम करेंगे।

दिल्ली हाईकोर्ट ने दोबारा कराए जाने वाले नीट यूजी 2026 इम्तिहान से पहले टेलीग्राम पर मरकज की तरफ से लगाई गई आरजी बंदिश को बरकरार रखा है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक काउंसिल में वादी सिंध मुआहदे को फरसूदा बताया है। उसने दहशतगर्दी को पनाह देने पर पाकिस्तान की मजम्मत भी की है। और मेक्सिको जनूबी कोरिया को 1-0 से हरा कर फीफा आलमी कप का 32वां राउंड क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस और स्लोवाकिया का अपना 5 रोज़ा दौरा मुकम्मल कर लिया है। फ्रांस के अपने दौरे में उन्होंने इवियाओ में G7 समिट में शिरकत की। उन्होंने G7 समिट से अलग अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और दीगर शख्सियतों से मुलाकात की। इससे पहले जनाब मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के शहर नीस में भारत

0: आला तरीन सरकारी एजाज से नवाजा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,1400 करोड़ रुपए मालियत की तरकीबात तकसीम करेंगे। इस तरगीब से मुल्क में रोजगार के 15 लाख मौके पैदा करने में मदद मिली है। मेहनत और रोजगार महकमे के वजीर डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पिछले साल अगस्त से अब तक 63 लाख से ज्यादा मुलाजिमीन को बाजाब्ता अफरादी कुव्वत में शामिल किया गया है, जिनमें तकरीबन 30% खवातीन हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इत्मीनान जाहिर किया है कि भारत से सिकल सेल की बीमारी 2047 के कौमी निशाने से पहले ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने खून की इस जीनियाती बीमारी के बारे में खास तौर पर कबाइली बिरादरियों में बेदारी लाने की मरबूत कोशिशों के लिए कहा। सदर जमहूरिया आज सिकल सेल के बारे में बेदारी लाने के दिन के मौके पर मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर में एक रियासती सतह के प्रोग्राम से खिताब कर रही थी। इस मौके पर गवर्नर मंगूभाई पटेल और वजीर आला मोहन यादव भी मौजूद थे। सदर जमहूरिया ने सभी रियासती सरकारों और अफसरान से अपील की कि वो इस बीमारी को मामूली न समझें, क्योंकि ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो जाती है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की कोशिशें की जानी चाहिए, क्योंकि इसका इलाज मुमकिन है।
1: एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9,000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: सदर जमहूरिया ने रियासती सरकार की तारीफ की कि उसने सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म करने के कौमी मिशन के तहत कामयाबियां हासिल की। सदर मुर्मू ने प्रोग्राम के दौरान एक खसूसी नुमाइश भी देखी जो 2047 के इस मिशन के तहत कायम की गई है। नुमाइश में सिकल सेल की बीमारी की रोकथाम, तशखीस और इलाज से मुतालिक मुख्तलिफ इकदामात को नुमाया किया गया है। इस नुमाइश में कबाइली इलाकों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के काम को भी उजागर किया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रहेंगी। वो मयूरभंज ज़िले में दांडी बोस एयर स्ट्रिप पहुंचेंगी और इस खित्ते में हिफ्जान सेहत, बुनियादी ढांचे और अवामी खिदमात को मुस्तहकम बनाने के मकसद से मुनाकिद किए जाने वाले कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया एम्स भुवनेश्वर के ज़ेर एहतमाम एक बड़े तिब्बी कैंप का इफ्तिताह करेंगी और एम्स सेटेलाइट सेंटर को अवाम के नाम वक्फ करेंगी, जिससे इलाके में हिफ्जान सेहत से मुतालिक खुसूसी खिदमात की तौसी होगी। सदर जमहूरिया देही इलाके में पाइप के जरिए पानी की सप्लाई का एक बड़ा मरबूत प्रोजेक्ट भी अवाम को वक्फ करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत कानकनी से मुतासर 113 गाँवों में पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकेगा। सदर जमहूरिया हाथ बड़ला में ब्रह्मा कुमारीज के मातृशक्ति शक्ति भवन, एक खसूसी सर्किट हाउस और नए बनाए गए राय रंगपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट का इफ्तिताह भी करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा है कि वक्त आ गया है जब फौजदारी निज़ाम इंसाफ को मुल्क के हर शहरी के लिए आईन में दिए गए हकूक को हासिल करने का एक वसीला बनाया जाए। नई दिल्ली में 2026 की फिंगरप्रिंट से मुतालिक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क का ये निज़ाम यकसर तब्दीली के अमल से गुजर रहा है और इसे मुनज्जम तौर पर ताज़ा तरीन शक्ल दी गई है, ताकि ये मौजूदा दौर की ज़रूरतों को पूरा कर सके। उंगलियों की के निशानात की खुद ब खुद शनाख्त करने वाले इस कौमी निज़ाम नेफिस के बारे में जनाब शाह ने कहा कि इस तरह के बहुत से केसेस हैं जिनमें इस निज़ाम से इंतहाई पेचीदा केसेस को आसानी से समझने में बड़ी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि नेफिस को फिलहाल इसकी गुंजाइश के महज 10% हिस्से को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसका इस्तेमाल महज मुजरिमों का पता लगाने से भी ज़्यादा किया जाना चाहिए। वजीर दाखिला ने जोर देकर कहा कि नेफिस की कामयाबी का इनसार उन आदाद व शुमार को इकट्ठा किए जाने पर है जो हर एक मौके वारदात से हासिल किए जाते हैं।
2: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी

0: सफलता मिलती।
1: दिल्ली हाई कोर्ट ने नीट यूजी 2026 के 21 जून को कराए जाने वाले दोबारा इम्तिहान से पहले टेलीग्राम मैसेज प्लेटफॉर्म तक रसाई पर आर्जी तौर पर बंदिश लगाने के मरकज के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा है कि यह कदम नामुनासिब नहीं है और कानून के मुताबिक है। जस्टिस तेजस कारिया ने कहा कि हुकूमत ने इत्तलाती टेक्नोलॉजी कानून की दफा 69A पर अमल करते हुए यह कदम उठाया है और बंदिश के इस हुक्म की भरपूर वजूहात मौजूद हैं। टेलीग्राम ने इस हुक्म को चैलेंज किया था और तफरीक बरते जाने का इल्ज़ाम आयद किया था। उसने दलील दी थी कि उसने नीट से मुतालिक गैर कानूनी मफाद के सैकड़ों लिंक्स हटा दिए हैं और हुकाम के साथ तआवुन किया है। इम्तिहानात मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने कौमी अहलियत व दाखिला अंडर ग्रेजुएट नीट UG के दोबारा इम्तिहान में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक सरकारी व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। ये इम्तिहान इतवार को होना है। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कौंसिल के 62वें इजलास में जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान के इल्ज़ाम को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। इस जलसे में इजहार ख्याल करते हुए अक़वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मिशन में फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने जोर देकर कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट और अलग न होने वाला हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अपने अंदरून मुल्क चैलेंजों और दहशतगर्दी के तई अपनी लगातार हिमायत से तवज्जो हटाने के अपने प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जिक्र करते हुए भारत ने इल्ज़ाम आयद किया कि खित्ते में बढ़ते हुए मुजाहिरों और बेचैनी से वसी पैमाने पर फैलती हुई बेचैनी जाहिर होती है, जिसमें बुनियादी हकूक को लगातार दबाया जा रहा है और उनसे इनकार किया जा रहा है। फीफा वर्ल्ड कप में आज सुबह मैक्सिको ने जनूबी कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इस तरह मैक्सिको की टीम नॉकआउट

0: जा रहा है और उनसे इनकार किया जा रहा है। फीफा वर्ल्ड कप में आज सुबह मेक्सिको ने जनूबी कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इस तरह मेक्सिको की टीम नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस और स्लोवाकिया का अपना 5 रोज़ा तारीखी दौरा मुकम्मल कर लिया है। वज़ीर आज़म मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपये मालियत की तरगीबात तकसीम करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत सिकल सेल की बीमारी को 2047 के मुकर्रर निशाने से पहले ही ख़त्म करने की राह पर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दोबारा कराए जाने वाले नीट 2026 यूजी इम्तिहान से पहले टेलीग्राम पर मरकज की तरफ से लगाई गई आरजी बंदिश को बरकरार रखा है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम

0: And the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन के सफल यात्रा संपन्न। श्री

0: दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाए और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसिलिंग करना है। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलों को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गांव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इस

0: यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती, जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता, जिस पर कोई जवाबदेही ना हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूता रहा हो।
1: भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है।

सफल तो नहीं बोलूंगी, लेकिन बेहद अच्छे संगीतकार रहे हैं और उनकी संगीत रचना ने बहुत अलग अलग तरह की धुनों को हमारे बीच में लेकर आए हैं उनकी वो सारी धुनें। और कहते हैं कि उनकी उतनी शोहरत उन्हें नहीं मिल पाई, लेकिन जो भी उन्होंने धुनें बनाई वो अपने आप में एक बहुत ही मील का पत्थर साबित हुई। तो देखिए आज हम जिनकी बात कर रहे हैं उनकी बस इतना कहूंगी कि हिंदी फिल्म

जी हाँ, आप सुन रहे थे फिल्म नशीली हवा का ये गाना, और हम बात कर रहे हैं संगीतकार दत्ताराम की। और देखिए, हमारे साथ हमारे कौन कौन से मित्र जुड़ चुके हैं, तो आइए जरा इधर भी एक नज़र मारते हैं। ये है, हाँ देखिए, ये है दत्ताराम वाडकर जी के बारे में जानकारी, और ये चमन हमारा अपना है। ये गीत बहुत लोकप्रिय है, हम लोगों को बहुत पसंद आया ये गाना, शुक्रिया। ये कौन लिख रहे हैं? लिख रहे हैं चिरमिरी कुलारिया कुरासिया कालरी से, इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश। आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, और गाने और जानकारी इन्हें रोचक लग रही है, शुक्रिया आपका इस बात के लिए। और ये है हमारे साथ वड़िंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। ये हैं हर गांव नथाना पंजाब से, हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, और शुक्रिया आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। एक ही कलाकार में हमारे साथ जुड़े हैं जी सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया, ग्राम पंजौनिया, ज़िला जालौन, उत्तर प्रदेश से। और देखिए हमारे साथ हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह गिल, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, और गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से हैं ये लोग हमारे साथ जुड़े। धर्मेंद्र छिपा जी, आपकी चिरपरिचित मेल हमारे पास पहुंच चुकी है, और आप लिख रहे हैं कि आज आप मशहूर संगीतकार दत्ताराम के बारे में बेहतरीन बातें बता रहे हैं, और दोस्ती श्रीमान सत्यवादी, अब दिल्ली दूर नहीं, बालक जैसी कई फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया। हाँ, जिस गाने का आपने जिक्र किया है वो गाना मैं इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल कर रही हूँ। तो ये है हमारे साथ में भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार, शुक्रिया। और देखिए अब हमारे साथ ये हैं, ये हम दिग्दर्शन जी आपकी मेल शुमार कर चुके हैं, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, पहाड़गंज, मुल्तानी ढांडा से हमारे साथ जुड़े हैं, और इन्हें कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, शुक्रिया अनिल जी। फिर हमारे साथ है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, और आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं कार्यक्रम में, उसके लिए आपका धन्यवाद। सुदर्शन मुखी जी हमारे साथ हैं, उनके साथ अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से, और इन्हें भी कार्यक्रम ही सुन रहे हैं और हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद। पीएस नवाकर, निर्मला नावकर, विशाल नावकर, ये हमारे साथ नलेश्वर नरवेल महाराष्ट्र से हैं, और मलकापुर से हैं नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष मुरहेकर। देखिए आप सभी की बहुत मेल्स हमारे पास लगातार आ रही हैं, वो हम लेंगे अभी, और पर आइए आपको एक ऐसा गीत मैं दत्ताराम जी का सुनाती जाती हूँ, जो हम लोग अगर आपने महसूस किया बचपने में, अक्सर हमें ना एक सीख दी जाती थी कि कभी भी ना लोगों की मीठी मीठी बातों में ना आना, तो एक ऐसी ही ना मीठी मीठी बातों को लेकर के एक गाना है जो काफ़ी मशहूर हुआ है, और इस गाने को गाया है किन्होंने, जी हाँ, लता मंगेशकर, और उनके साथ एक ना बच्चा का स्वर है, बालक स्वर है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि वो बाल स्वर किसका है और ये गाना कौन सी फिल्म का है, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

गिल, दलजीत सिंह गिल, राजदीप सिंह। हाँ, आप लोगों की मेल में शुमार कर चुकी हूँ साहब। तो बस हमारे बाकी श्रोता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको हम बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और अब हम बात करते हैं दत्ताराम जी की एक ऐसी सिग्नेचर अदा की जिसको कहा जाता था दत्ता ठेका। जी हाँ, दत्ता ठेका, मतलब उनके संगीत में ना कुछ ऐसी ताल होती थी, कुछ इस तरह की बात होती थी कि उसके लिए उनका नाम ही मशहूर हो गया था कि ये ठेका जो लग रहा है इस गाने में, जी जो हमें लय ताल नज़र आ रही है, मतलब ये दत्ताराम जी का ही संगीत है। जी हाँ, इतना मशहूर हुआ था। तो लय और ताल पर उनकी अद्भुत पकड़ थी। संगीत प्रेमियों के बीच उनका मशहूर दत्ता ठेका आज भी याद किया जाता है। तबले की ये विशिष्ट शैली उनकी पहचान बन गई थी। बाद में स्वतंत्र संगीतकार के रूप में जब उन्होंने अपनी पहचान बनाई तो इस दत्ता ठेका ने उनको एक अलग ही विशिष्ट पहचान दिलाई, जिनमें सादगी भी थी, मिठास भी था और भारतीय मिट्टी की महक भी। तो आइए, एक ऐसी फिल्म का मैं गाना आपके लिए लेकर आई हूँ जिसमें आपको दत्ता ठेका बकायदा नजर आएगा। फिल्म है परवरिश और गाना कौन सा है, आइए सुनते हैं।

तो ये आपको दत्ता ठीका नजर आया आया होगा, क्योंकि ये अलग ही इसका ना एक देखिए जो एक कहते हैं कि अलग ही धुन थी, अलग ही लय थी, अलग ही ताल थी, और एक ऐसी ताल थी जिसमें इंसान अपने आप को झूमने से रोक नहीं पाता। तो ये था उनका सिग्नेचर दत्ता ठेका, और हमने बात की है दत्ता राम जी की, और आज हम हमारे कार्यक्रम में बात उन्हीं की कर रहे हैं। तो हमारे दोस्तों की बात ही ना हो ऐसे कैसे होगा। संजय ढींगिया जी हमारे साथ हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, और इनके साथ हैं नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, और इन्हें अच्छा लग रहा है कार्यक्रम। धर्मेंद्र चीपा जी ने वो सही जवाब मुझे दे दिया। जी हाँ, जो मैंने आपसे पूछा था ना मीठी मीठी बातों से बचना जरा, उसमें बाल स्वर किसका है, वह है डेजी ईरानी का, और इसका उत्तर भी हमने आपको दे दिया था। शुक्रिया धर्मेंद्र जी। फिर हैं फारूक अली खान, आदाब, हम भी आपको सुन रहे हैं, प्रोग्राम गीत पसंद आ रहे हैं। ये हमें लिख रहे हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, एम एस अब्बासी और मुजफ्फर अली खान, शुक्रिया। और हमारे साथ हमारे और भी दूसरे दोस्त जुड़े हैं, तो आप लोगों को जी बिल्कुल बिल्कुल जॉन

अब्बासी और मुजफ्फर अली खान, शुक्रिया। और हमारे साथ हमारे और भी दूसरे दोस्त जुड़े हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल, जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो की तरफ से भी सही जवाब आया है, डेजी ईरानी का। और ये हमारे साथ हमारे दोस्त बहुत सारे जुड़े हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए आदरणीय घोष जी, गुड आफ्टरनून, एक ही कलाकार में आज गीत और पेशकश एकदम सुपर, बधाई हो। अच्छा, ये हमें तुलसी मस्किन जी लिख रहे हैं, धन्यवाद आपका। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दत्ताराम जी की, और ये लिख रहे हैं संतोष कुमार सोनार, रथ चौक बहादुरपुर खानदेश से, और इन्हें कार्यक्रम बहुत ही पसंद आ रहा है। शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ बने रहते हैं, इससे हमारा हौसला बढ़ता है, और हौसला बढ़ता है तो हमारी और इच्छा होती है आपके साथ और खूब सारी बातें करने की, लेकिन बातें अपनी जगह, गाने अपनी जगह, गानों के बिना बातें भी अच्छी नहीं लगती। तो आइए अब हम सुनाते हैं आपको एक ऐसी फिल्म का गाना जिसमें आपको लगेगा, अरे इसमें तो दत्ताराम जी का संगीत नहीं है, इसमें तो सलील चौधरी है, फिर ये गाना हमें क्यों सुना रहे हैं। अरे दोस्तों, आपको पहले भी तो बताया था कि दत्ताराम जी ने बहुत सारे गीतकारों को बतौर सहायक उनके साथ काम किया है, उसमें से एक थे सलील चौधरी जी। तो आइए सुनते हैं फिल्म मधुमती का ये गाना।

तो दोस्तों आप सुन रहे हैं फिल्म मधुमति का ये गीत, जिसे गाया लता मंगेशकर ने, संगीत सलील चौधरी का जरूर है लेकिन इसमें सहायक के बतौर थे दत्ता राम जी। और इन्होंने बतौर संगीतकार तो काफ़ी फिल्मों में काम किया, लेकिन इन्होंने संगीतकार रोशन के साथ भी बतौर सहायक काम किया है। तो आइए आपको एक झलक हम उस गीत की भी सुनाते हैं जिसमें इन्होंने रोशन के साथ काम किया, और वो गाना है फिर स्वर है लता मंगेशकर के। आइए सुनते हैं ये गाना।

जी हाँ, ये फिल्म है अजी बस शुक्रिया, और इस फिल्म में संगीतकार रोशन का संगीत था और इनके असिस्टेंट थे हमारे आज के कलाकार, जी हाँ कौन, तत्ताराम। और ये था हमारा आज का कार्यक्रम जो हमने पूरी तरह समर्पित किया था हमारे आज के कलाकार तत्ताराम जी को। और आपने ये सफ़र तय किया आप मेरे साथ यानी आपकी रेडियो हम सफ़र सोनाली के साथ। और बस आपको इतना बता दें कि पुराने गीतों के प्रेमियों के लिए दत्ताराम वाडकर का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। 6 जून 2007 को वे इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनकी धुनें आज भी हमारे बीच है। सच तो यह है कि कलाकार चले जाते हैं लेकिन उनके सुर कभी विदा नहीं होते। तो बस कार्यक्रम के अंत में एक बार फिर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। और बस इस कार्यक्रम से अब मुझे दीजिए अनुमति, आपके साथ इसके बाद हम लेकर आ रहे हैं मैटनी मेलोडी। तो बस बने रहिए

नमस्कार दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त समय हो रहा है 3:00 बज गए हैं और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा कार्यक्रम जो हमें उस सुनहरे दौर में ले जाता है जहां पर संगीत आज भी हमारे दिल को छूता है और हमारे जीवन में रस खोलता है। हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम मैथनी मेलोडी की और आज आपके साथ इस मैथनी मेलोडी में मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी रेडियो हमसफर सोनाली। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे चीज़ के बारे में, एक ऐसे हमारे भाव के बारे में, एक ऐसी इमोशन के बारे में जिसने हमें हमेशा झकझोरा है। मैं बात कर रही हूँ किसकी, पहले ये गाना सुनिए फिर मुझे बताइए।

जीवन में मिलने का सुख जितना मधुर होता है उससे कहीं अधिक गहरा होता है इंतजार। किसी की आहट का, किसी की आवाज का, किसी खत का, किसी मौसम का, या फिर किसी ऐसे पल का जिसके आने की उम्मीद मन ने संजो रखी हो। तो बस इस महफिल को हम इंतजार के उन रंगों से रोशन करने वाले हैं जो कभी मुस्कान बन जाते हैं और कभी ऐसे गीत बनकर मन में उतर जाते हैं जो हमेशा हमारे दिल में बने रहते हैं। इंतजार की बिना दोस्तों अपनी एक खूबसूरती होती है। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहती हैं मगर मन अक्सर वहीं ठहर जाता है जहां से उम्मीद की शुरुआत हुई थी। शायद इसी वजह से कुछ रास्ते मंजिल से ज्यादा याद रह जाते हैं। देखिए ना, शायर ने क्या खूब कहा है, वो आए न आए ये मुकद्दर की बात है, वो आए न आए ये मुकद्दर की बात है, हम राह तकते रहें ये हमारी मोहब्बत है।

कहाँ रह गए दोस्तों? तो आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं ipradiodelhi@gmail.com पर। तो हमें आपकी मेल्स का इंतज़ार है, आपके साथ का इंतज़ार है, क्योंकि आपका जो साथ होता है ना, ये एक अलग ही खुशी, एक अलग ही हौसला हमें देता है। तो बस बने रहिए हमारे साथ। आज हम बात कर रहे हैं इंतज़ार पर, और इंतज़ार के ना बहुत रूप होते हैं। ये इंतज़ार सिर्फ किसी इंसान का ही तो नहीं होता, कभी हम किसी चिट्ठी का इंतज़ार करते हैं, कभी किसी खबर का, और कभी किसी ऐसे लम्हे का जो जीवन को फिर से मुस्कुराना सिखा दे, है ना। इंतज़ार की ना एक अलग ही कैफियत होती है, एक अलग ही तबीयत होती है, और इंतज़ार की अलग ही एक फिज़ा होती है। तो हम इंतज़ार करते हैं, और कभी कभी उसका भी जो हमारे जीवन में आना तो चाहता है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों नहीं आता।

फिर कब मिलोगी। इस फिल्म में आप सुन रहे थे मुकेश के साथ लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। दोस्तों, दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं हुई बरसों से, मगर अजीब है कि कान आज भी चौकन्ने रहते हैं। शायद उम्मीद का दूसरा नाम ही इंतज़ार है, और अब जब उम्मीद दिल में बसी हो तो रास्ते कभी सूने नहीं लगते, और बस जब उनकी याद आती है तो एक तड़प उठती है और दिल से बेसाख्ता एक ही आवाज़ निकलती है कि आजा तेरी याद आएगी।

जब कोई दस्तक नहीं होती, फिर भी कान हर आहट पर ठहर जाते हैं। अजीब बात है, इंतजार का रिश्ता समय से कम और दिल से ज्यादा होता है। और हर बार ना जो चीज मिल जाती है उसमें आनंद नहीं आता, कुछ चीजों की मिठास उनके इंतजार में ही छिपी होती है। शायद इसीलिए पहली बारिश, त्योहारों की सुबह, बच्चों के घर लौटने की आहट और अपने प्रिय लोगों से मिलने का सुख भी उतना ही अनमोल होता है ना। तो बस इंतजार का एक और रंग आपके साथ बांटते हैं, आइए सुनते हैं ये एक और गीत।

रहती है। आपकी ईमेल्स का इंतजार भी हमें लगातार रहता है। देखिए हमारे साथ अलबक जुड़ गए हैं ना, हमारे साथ जुड़े हैं चित्रनगर सहारनपुर से कौशल्या जोशी, सुरेश जोशी और प्रभा जोशी, अम्बाला से हैं आशु खान और सोनाली खान, फिर हमारे साथ हैं सुदर्शन मुखी जी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से। आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगता है, शुक्रिया। और आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि आज का हमारा कार्यक्रम है बेस्ड वेट पर, जी हाँ इंतजार पर। फिर हमारे साथ हैं आपको प्रेम पूर्वक आदाब गांव कुमारखेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, और आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आ चुके हैं अपने कार्यक्रम के एक ऐसे पड़ाव पर जिसे हम अंतिम बोलते हैं तो मन अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ हर चीज़ का एक मियाद होती है, हर चीज़ अपने वक्त पर ख़त्म होती है, तभी तो इंतज़ार ख़त्म होता है। तो इस कार्यक्रम का इंतज़ार भी अब हमारे यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि अब मैं आपके लिए एक ऐसा गाना लेने आई हूँ, जब लेकर आई हूँ, जिसको अगर आप सुनेंगे तो आपको यही लगेगा कि हाँ दिल को चैन तभी मिलता है जब वो हमारे साथ होता है, कौन, जिसका हमें हमेशा इंतज़ार होता है। तो बस दिल को दीजिए चैन और मुझे यानी आपकी रेडियो हमसफ़र सोनाली को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

फिल्म इज्जत में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। दोस्तों, बात कर रहे हैं इंतज़ार की। इंतज़ार की अलग ही एक फितरत होती है, एक अलग ही कशिश होती है।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैटनी मेलोडी। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आपको बता दें, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा उर्दू कार्यक्रम उर्दू मजलिस, और उसके बाद का वक्त होगा युवाओं के कार्यक्रम युववाणी का। तो बस इंतज़ार आपके लिए लगातार रहेगा यहाँ पर अच्छे अच्छे कार्यक्रमों का, और आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। और बस आइए, अब हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

सारा इन गजल एक छोटा सा लफ्ज लेकिन अपने अंदर हजारों रंगीनियां समेटे हुए। गजल वो सिंफ सुखन है जो रूह तक को मसरूर कर देती है और हमें अपने इर्द गिर्द कौसे कजा के रंग बिखरे हुए महसूस होते हैं। और रूह को सकून देने वाली सिंफ है ये, जहाँ जहन और दिल को शादमानी अता करती है वहीं एहसासात का खूबसूरत इजहार भी है। मैंने सीखा है लफ्ज़ों को बरतने का हुनर, मैंने सीखा है लफ्ज़ों को बरतने का हुनर, खुशबू अल्फाज में कब है मेरे इजहार में है।

0: सामईन, अभी आप बेगम अख्तर की आवाज़ में ये गज़ल सुन रहे थे। कलाम था मोमिन खां मोमिन का। सामईन, गज़ल गो शायर की नज़र से वो ताल्लुक़ कभी ओझल नहीं होते जो हुस्न व इश्क के दुनिया में पाए जाते हैं और जिनकी तह में जज्बे की कार फरमाई किसी न किसी सूरत में मौजूद रहती है। शायर के तजर्बे में जज्बा अपने आप को तख़य्युल के रंग में रंग लेता है और शायर कह उठता है,
1: तस्लीम इश्क था सब उसके साथ होने तक, तस्लीम इश्क था सब उसके साथ होने तक, ख्याल दर्द न आया निजात होने तक, मिला था हिजर के रस्ते में सुबह की मानिंद, मिला था हिजर के रस्ते में सुबह की मानिंद, बिछड़ गया था मुसाफिर से रात होने तक।

अभी आप पंकज उदास की आवाज में यह गजल सुन रहे थे। कलाम था निदा फाजली का। सामईन, शायर ने दुनिया में हर जगह लोगों के बदलते हुए शऊर व एहसास का साथ दिया है, ताकि वो जहनी जिंदगी से बेताल्लुक ना हो जाएं। जिंदगी की तरह शेर हरकत और नमो में रचा बसा हो। मेरी आंखों में बसा है यूं तसव्वुर तेरा, मेरी आंखों में बसा है यूं तसव्वुर तेरा, बर्फ कश्मीर की वादी में जमी हो जाए।

सामिन, अभी आप जगजीत सिंह की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। कलाम था मिर्ज़ा गालिब का। सामिन, गज़ल वो सिंफ़े सुखन है जो रूह तक को मसरूर कर देती है। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि गज़ल राहत बख्श और रूह को सकून देने वाली सिंफ है। ये जहाँ जहन और दिल को शादमानी अता करती है, वहीं एहसासात का खूबसूरत इजहार भी है। आइए सामिन सुनते हैं हरी हरन की आवाज़ में ये खूबसूरत गज़ल।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस यात्रा के दौरान उन्होंने एवियाओं में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नव प्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया यात्रा के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवंशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
2: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना है। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
3: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो, वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। अश्मिता चालिया मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज क्वार्टर फाइनल में कोरिया की किम मिनसिन को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण

0: stations across the country. International Day of Yoga is celebrated on the 21st of June across the globe. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर। और श्रोताओं, अब वक्त है कुछ खोए व्यक्तियों के संबंध में सूचना देने का। खोए व्यक्तियों में सबसे पहले नाम है नेहा कुमारी। इनके पिता का नाम है तेज नारायण मेहता, निवासी 124 गांव बरियापुर, थाना जिला बेगूसराय, बिहार। हाल का पता है किराएदार सचिन यादव की बिल्डिंग नंबर 776, गली नंबर 11, कापसहेड़ा, दिल्ली। अंतिम बार इन्हें दिनांक 30/4/2026 को प्लॉट नंबर 446, फेस 4, उद्योग बिहार, जिला गुरुग्राम में देखा गया है। आयु 19 वर्ष है, कद 5 फुट 2 इंच है। शरीर की बनावट लंबा शरीर है, चेहरा गोल है और रंग गोरा है। ये अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना बिहार, जिला गुरुग्राम में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है निशा कुंड्री। इनके पति का नाम है लक्ष्मी, निवासी गांव जहार, तहसील बहा, जिला आगरा। हाल का पता है किराएदार, नज़दीक हॉली चौक, गांव गुरुग्राम। अंतिम बार इन्हें दिनांक 5/4/2026 को नज़दीक हॉली चौक, गांव गुरुग्राम, दिनांक 15/4/2026 तक देखा गया है। इनकी आयु 24 वर्ष है, कद 5 फुट 5 इंच है। शरीर की बनावट लंबा शरीर है और रंग गेहुआ है। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप उद्योग बिहार, जिला गुरुग्राम में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम ज्ञात नहीं है। अंतिम बार इन्हें 31/25 रेड लाइट पिलर नंबर 39 नोएडा में देखा गया है। आयु लगभग 40 वर्ष है, शरीर की बनावट सामान्य शरीर है, कद 5 फुट 7 इंच है। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना सेक्टर 20 नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम ज्ञात नहीं है। अंतिम बार इन्हें सेक्टर 49 नोएडा में देखा गया है। आयु करीब 35 वर्ष है, शरीर की बनावट सामान्य शरीर है, कद 5 फुट 6 इंच है। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त हो तो आप थाना सेक्टर 49 नोएडा, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में सूचना दे सकते हैं। मृतक व्यक्ति का नाम ज्ञात नहीं है। अंतिम बार इन्हें दिनांक 22/5/2026 समय शाम के 6 बजे देखा गया है। आयु करीब 48 वर्ष है, शरीर की बनावट आंख नाक कान औसत हैं, कद 5 फुट 5 इंच है। विशेष पहचान दाहिने हाथ में काला धागा बंधा हुआ है। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना कामना, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है जगन्नाथ। इनके पिता का नाम ज्ञात नहीं है। अंतिम बार इन्हें अस्पताल सेक्टर 39 में देखा गया है। आयु 80 वर्ष है, शरीर की बनावट पतला दुबला शरीर है, कद 5 फुट 5 इंच है। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना सेक्टर 113 नोएडा, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में सूचना दे सकते हैं। श्रोताओं, ये तो थे कुछ खोए व्यक्तियों के बारे में जानकारी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और अब वक्त है कार्यक्रम युववाणी का।

0: सपनों की राहों में मुश्किलें तो आएंगी, कभी धूप तो कभी छाव भी नजर आएगी। जो हौसलों का हाथ थामे आगे बढ़ते हैं, मंजिलें भी एक दिन उन्हें गले लगाती है। उम्मीदों की रोशनी यूं ही बनाए रखिए, हर नया दिन कुछ नया सिखाए रखिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली से आप सुन रहे हैं आपका कार्यक्रम युववाणी, और मैं हूँ आपके साथ अमोल।
0: और मैं हूँ जिनेली। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन अच्छा बीत रहा होगा। अगले कुछ समय तक हम आपके साथ रहेंगे कुछ दिलचस्प चर्चाओं, प्रेरणादायक बातों और शानदार गीतों के साथ।
1: बिल्कुल जुनेली, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, मनोरंजन की, दुनिया की, एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी की और कुछ ऐसे विषयों की जो आज के युवाओं के बीच चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं।
0: और मुझे लगता है मोल कि आज का युवा पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त है। पढ़ाई, करियर, नई स्किल्स, सोशल मीडिया और भविष्य की योजनाओं के बीच समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता।
1: सही कहा जुनेली, और इसी भाग दौड़ में हम कई बार एक बहुत जरूरी चीज को पीछे छोड़ देते हैं, अपनी सेहत। इसलिए आज की पहली चर्चा भी इसी विषय से जुड़ी हुई है।
0: वर्ल्ड लिवर डे। अमोल, स्वास्थ्य को लेकर एक बात हमेशा सुनने को मिलती है, हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन अक्सर हम इस बात की अहमियत तब समझते हैं जब शरीर हमें कोई संकेत देना शुरू कर देता है।
1: सही कहा, और आज विश्व लिवर दिवस के अवसर पर यही याद दिलाना चाहते हैं कि शरीर के हर अंग की अपनी अहमियत है। हम दिल और दिमाग की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन लिवर की चर्चा उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए।
0: सही कहा अमोल, हमारी रोजमर्रा की आदतों का असर सीधे हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। समय पर भोजन ना करना, लगातार बाहर का खाना, व्यायाम ना करना, कम नींद और दिन भर स्क्रीन के सामने रहना अब तो आम बात सी हो गई है।
1: और जुनेली, मजेदार बात यह है कि हम फिटनेस की वीडियोस देखने में तो काफी समय लगा देते हैं, लेकिन कई बार उतना समय टहलने या थोड़ा व्यायाम करने में नहीं लगा पाते।
0: ये बात शायद बहुत से श्रोताओं को रिलेटेबल लगेगी, लेकिन सच यही है कि अच्छी सेहत किसी एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतों से बनती है।
1: बिल्कुल जुनेली, समय पर खाना, पर्याप्त पानी पीना, अच्छी नींद लेना और थोड़ा सक्रिय रहना, ये सुनने में साधारण बातें लगती हैं, लेकिन लंबे समय में यही सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है।
0: और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य को सिर्फ शरीर से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। जब हम स्वस्थ महसूस करते हैं तो पढ़ाई में भी मन लगता है, काम में भी मन लगता है और जीवन का आनंद भी बेहतर तरीके से जी पाते हैं। अमोल,
1: तो आज विश्व लिवर दिवस पर एक छोटा सा संकल्प लेते हैं कि अपने सपनों के साथ साथ अपनी मेहनत का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही हर लक्ष्य तक पहुँचने की असली ताकत देता है।
0: और इसी सकारात्मक सोच के साथ अब समय है कार्यक्रम के पहले गीत का।
1: जुनेली, ये गीत युवाओं के बीच आज भी उतना ही लोकप्रिय है जितना अपने रिलीज के समय था। इसकी धुन और इसके बोल हर बार चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं।
0: फिल्म जाने तो या जाने ना का एक खूबसूरत गीत गाया है राशिद अली ने, संगीत है AR रहमान का और बोल लिखे है अब्बास टायर वाला ने।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं युव वाणी और अब समय है हमारे खास सेगमेंट मन से माइक्रोफोन तक का। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कहानियां हमें प्रेरित करती है और आज हम बात करने वाले हैं सिविल सर्वेंट असिस्टेंट स्वीटी उपाध्याय जी से।
1: नमस्कार साथियों, हमारे साथ में उपस्थित हैं एक यूथ सक्सेस स्टोरी स्वीटी उपाध्याय जी जो इस समय असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
2: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए शैलजा यहाँ पे।
1: जी थैंक यू सो मच मैम। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लेकर के सिविल सर्विसेज तक का सफर, एक लंबा सफर तय किया है, और जब अपने आप जर्नी को देखती हैं तो ऐसा कौन सा फैसला था जो आपकी लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ?
2: मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी। तो जब मैं पढ़ती थी तो वहाँ पे हमारे पास एक हाउस हेल्प थी एंड एक दिन उसके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार हुआ उसके पति के द्वारा। जब वो मेरे पास आई मैं उसका केस पुलिस के पास ले गई, और ये व्यवहार हर जगह हम देखते हैं, कहीं ना कहीं हमें दूसरे दूसरे रूपों में देखने को मिलती है। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ ऐसे पद पर जाना पड़ेगा जहाँ पे मैं सोशल चेंज भी ला पाऊँ और अपने लिए भी कुछ ऐसा कर पाऊँ, जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में एक मुहावरा है, व्हेन योर रेपुटेशन प्रीसीड्स यू। तो ये मेरे लिए अब पॉसिबल हो पाया है इस ओहदे पे आकर, तो वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट मैं मान सकती हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे मन में था यूपीएससी पीसीएस के लिए कि कहीं ना कहीं मैं ये चीज प्रिपेयर करूं और मैं सिर्फ इकोनॉमिक मोटिव के लिए ही नहीं, मैं लोगों के लिए भी काम करूं। तो ये एक कहूंगी मैं कि एक फाइनल पॉइंट था एंड देन आई सीरियसली स्टार्टेड स्टडिंग एंड उसके बाद मैंने 2019 यूपीपीसीएस में 55 रैंक को हासिल किया।
1: वाओ मैम, काफी इंस्पायरिंग था। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज कई युवा करियर को लेकर डाउट में रहते हैं क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो आपके अनुभव में सफल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मेहनत है, धैर्य या फिर सही दिशा?
2: आई थिंक इन सब का सही मिश्रण बहुत जरूरी है, मेहनत भी जरूरी है और उसके साथ साथ सही दिशा भी जरूरी है। जैसे मैं अपने ही आपको एक कहानी बताती हूँ, मेरे को 2017 में मैंने स्टार्ट किया और मेरा जो पहले मन था वो IFS ऑफिसर बनने का था, फॉरेन सर्विसेज में जाने

0: करने का, बट क्योंकि मैंने इतना लेट स्टार्ट किया तो मैं अनफॉर्चुनेटली उसमें नहीं जा पाई। बट अगर मेरे को सही डायरेक्शन मिलता, सही मेंटरशिप मिलती, तो शायद मैं उसमें चली जाती। आज के दौर में जैसे आपने बोला, मेरे को सबसे जो मैं कहती हूँ सोशली प्रोडक्टिव चीज लगती है वो है एंटरप्रेन्योर बनना, टू सीक एंटरप्रेन्योरशिप। बिकॉज सी, उसमें आप सबसे ज्यादा लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हो, आप रोजगार बढ़ा पा रहे हो। अगर आपके पास 100 लोग हैं तो आप सोचिए कि हर परिवार में भी अगर 5 लोग हैं तो आप 500 लोगों के खान पान का ध्यान रख रहे हो, तो उससे ज्यादा पुण्य आप मुझे नहीं लगता किसी और तरीके से कमा सकते हो। तो आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यम बनना सबसे जरूरी है आजकल।
1: मैम, आप इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं अभी, तो रोज नए उद्यमियों और कारोबारियों से आपका मिलना होता है, तो आपको क्या लगता है कि आज के युवाओं में बिजनेस शुरू करने को लेकर सोच कितनी बदली है?
0: मेरे को ये लगता है कि आजकल देखिए, आते तो मेरे पास काफी लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, ऐसे भी लोग आते हैं जो 25-30 साल से इंडस्ट्री कर रहे हैं। बट हाँ, काफी मैं कहूंगी डिफरेंस ऐसे आया है कि अब प्रोसीजर्स को फुलफिल करने की जो एक ललक है, एक इच्छा है, वो अब ज्यादा तीव्र है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर आपको मान लीजिए यूरोप या यूएसए में एक्सपोर्ट करना है कोई अपना माल, तो आपको उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बी इट एनवायरमेंटल रूल्स, बी इट जेंडर नॉर्म्स, आपको वो चीज फुलफिल करना है। आपको अपनी फैक्ट्री में क्रश फैसिलिटी लानी है, आपको उनको ईपीएफ देना है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स को फुलफिल करने के लिए आज हमारी उत्तर प्रदेश सरकार बहुत सारे बेनिफिट्स दे रही है, बहुत सारे लाभ दे रही है। जैसे अगर आप महिला उद्यमी हो तो आपको 100% स्टैम्प ड्यूटी रिइंबर्समेंट मिलता है। तो क्योंकि ऐसे लाभ लेने के लिए लोग इच्छुक अब ज्यादा हैं, तो वो उन रूल्स को फॉलो और ज्यादा अच्छी तरह से कर पा रहे हैं, जो पहले रूल्स तो थे बट इतना फॉलो नहीं होते थे। तो ये है चेंज विच आई कैन सी नाउडेज मोर।
1: मैम, अक्सर कहा जाता है कि बड़े सपने देखने के लिए बड़े शहरों में होना जरूरी है, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं, या छोटे शहरों के युवाओं के लिए भी आज उतने ही अवसर हैं?
0: बिल्कुल है। देखिए, जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज हैं, आई थिंक उनमें अब ज्यादा एवेन्यूज बढ़ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं टीयर 1 सिटीज, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे सिटीज अब थोड़ा सैचुरेटेड हो गए हैं। सो फॉर एग्जांपल, जैसे जो गिग इकोनॉमी है, आपका उबर है, ओला है, जोमैटो है, आई थिंक ये इनका पोटेंशियल अब टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ज्यादा हो रहा है। जो डिमांड ऑलरेडी फुलफिल हो गई है टीयर 1 सिटी में, अब अगर टीयर 2 टीयर 3 में हम फोकस करेंगे तो वहां से उद्यमी ज्यादा निकल कर आ रहे हैं। जितना रजिस्ट्रेशन अब एक छोटे जिले में जैसे हमीरपुर है या गोंडा है, जहां जितना वहां हो रहा है उतना अब यहां भी नहीं हो रहा। तो हाँ, वो डिफरेंस है, और इस बात की मुझे खुशी है कहीं ना कहीं कि ज्यादा जहां जहां रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, वो एक तरह से वो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ला रहा है। वो सारे डेवलप करें वो जरूरी, इसीलिए टियर 2 और टियर 3 सिटीज में हम लोग अब ज्यादा फोकस कर रहे हैं।
1: हमारे साथ बहुत सारे युवा श्रोता जुड़े हुए हैं, और काफी ऐसे लोग हैं जो अपना स्टार्टअप भी शुरू करना चाहते हैं। आपकी नजर में उसे सबसे पहले किस बात पर ध्यान देना चाहिए अगर कोई अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है आज के टाइम पे?
0: देखिए, सारी चीजें हो जाती हैं, बट एक चीज जिस पे लोग फोकस नहीं करते वो है मार्केट रिसर्च। सबसे जरूरी है मार्केट रिसर्च। आपको कुछ भी करने से पहले आपको देखना है कि आपका जो यूनिक प्रोपोजिशन है, आपका जो यूनिक आइडिया है प्रोडक्ट का, उसके लिए मार्केट में डिमांड कैसी है। उसके लिए देखिए, हमारे पास बहुत सारे ऐसे तो मार्केट रिसर्च टूल्स भी होते हैं, बट एक छोटा सर्वे भी करवा के ये देख सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कहाँ पे वो ज्यादा सेलिंग हो सकती है, कहाँ पे मार्केटिंग हो सकती है। तो आई थिंक मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट आइडिया जो है वो कहाँ ज्यादा एप्लीकेबल है, ये दो चीज अगर आप कर लेंगे फिगर आउट, उसके बाद बाकी चीजें आती हैं कि आप कैपिटल कैसे लेंगे, और इन सब चीजों के लिए तो आजकल सरकार भी बहुत ज्यादा मदद कर रही है।
1: एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, चूंकि इतनी जिम्मेदारियों के बीच में जब आपको कभी लगता है बहुत ज्यादा निराशा या थकान हो रही है, तो उस समय आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, और दूसरा, आप हमारे श्रोताओं को अपने अनुभव से एक ऐसी क्या बात कहना चाहेंगे जो उन्हें इंस्पायर करें?
0: प्रेरणा मैं कहूंगी मुझे अपने आप से मिलती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे डाउन्स देखे हैं लाइफ में, और उन डाउन से मैं अपने आप, हाँ मेरे बहुत ऐसे फ्रेंड्स भी रहे हैं, 2-3 ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मेरा सहायता की है, बट बहुत से डाउन देखने के बाद और उस पर वापस यू नो रिसरेक्ट होने के बाद ही ऐसा लगता है कि हाँ, वो जब उस मैं उस वक्त को याद करती हूँ जब मैं एक्चुअली स्ट्रगल कर रही थी और मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत चैलेंजेस थे, और उस वक्त को जब देखती हूँ और आज जब मेरे पास कुछ ऐसा चैलेंज आता है, मुझे लगता है नहीं, ये तो बहुत ही छोटा चैलेंज है उसके कंपैरेटिवली, तो मैं इससे तो उभर ही सकती हूँ। तो वहां से मेरे को स्ट्रेंथ मिलती है एंड उसी तरह से मैं आगे बढ़ती हूँ।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और शायद यही वजह है कि धैर्य इतनी महत्वपूर्ण चीज बन जाता है, क्योंकि कई बार मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत बेकार जा रही है। तो इसी के साथ अब सुनते हैं अगला गीत, ओ हमदम सुनियो रे साथिया मूवी का।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं युव वाणी और अब समय है हमारे साप्ताहिक विशेष सेगमेंट का। हर हफ्ते की तरह आज भी हम बात करेंगे मनोरंजन की दुनिया की, क्योंकि फिल्मों, संगीत और वेब सीरीज का युवाओं की जिंदगी में एक खास स्थान है।
1: बिल्कुल अमोल, और पिछले कुछ वर्षों में मनोरंजन देखने का तरीका भी काफी बदल गया है। पहले किसी फिल्म या कार्यक्रम का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आजकल एक क्लिक पर पूरी दुनिया का कंटेंट हमारे सामने मौजूद होता है।
0: और जुनेली, शायद इसी वजह से आजकल एक नई समस्या पैदा हो गई है।
1: कौन सी अमोल?
0: देखने के लिए इतना कुछ है कि समझ ही नहीं आता कि देखे क्या।
1: यह बात बिल्कुल सही है। कभी कभी लोग आधा घंटा सिर्फ स्क्रॉलिंग में निकाल देते हैं और फिर सोचते हैं कि आज कुछ देखने का मन ही नहीं है।
0: लेकिन जुनेली, कुछ ऐसे शोज हैं जिन्होंने लगातार दर्शकों का ध्यान खींचा है, और उनमें सबसे पहला नाम जो मेरे दिमाग में आता है वो है पंचायत।
1: पंचायत की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि वह बहुत साधारण होकर भी बेहद खास लगती है। छोटे शहर की जिंदगी, रिश्तों की गर्माहट और हल्का फुल्का हास्य, ये सब मिलकर उसे दर्शकों के करीब ले आते हैं।
0: और मुझे लगता है कि लोग उससे इसलिए भी जुड़ते हैं क्योंकि उसके किरदार किसी फिल्मी दुनिया के नहीं लगते, बल्कि अपने आस पास के लोगों जैसे लगते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा अमोल। और अगर युवाओं की बात करें तो कोटा फैक्ट्री भी काफी लोकप्रिय रही है। इस सीरीज ने पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं और छात्रों के मानसिक दबाव को बहुत ईमानदारी से दिखाया है।
0: सही कहा जुनेली, कई छात्रों ने खुद को उसके किरदारों में देखा और शायद यही किसी अच्छी कहानी की सबसे बड़ी सफलता।

0: तो होती है।
1: और परिवार के साथ देखने के लिए गुल्लक जैसी सीरीज भी लोगों की पसंद बनी हुई है। उसके किस्से बहुत बड़े नहीं होते लेकिन दिल को छू जाते हैं।
0: यानी कुल मिलाकर आज की ऑडियंस सिर्फ बड़े नाम नहीं बल्कि अच्छी कहानी भी तलाश रही है।
1: वैसे अमोल, तुम्हें क्या लगता है आज फिल्मों की सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, सितारों का या कहानी का?
0: जुनेली, मुझे लगता है कि आज का दर्शक पहले से ज्यादा समझदार हो गया है। बड़े कलाकार अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर कहानी अच्छी हो तो दर्शक नए कलाकारों को भी उतना ही प्यार देते हैं।
1: और यही वजह है कि अलग अलग विषयों पर बनी फिल्में और नई कहानियां लगातार सामने आ रही है। दर्शक अब सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि एक अच्छा अनुभव भी चाहते हैं।
0: और मुझे लगता है कि यही भारतीय सिनेमा का सबसे अच्छा दौर है क्योंकि अब हर तरह की कहानियों को जगह मिल रही है।
1: अमोल, एक और दिलचस्प बदलाव जो देखने को मिलता है वो ये है कि ऑडियंस का टेस्ट भी काफी बदल गया है।
0: बिल्कुल जुनेली, पहले लोग अक्सर एक ही तरह का कंटेंट पसंद करते थे, लेकिन आज की कॉमेडी ऑडियंस भी है, थ्रिलर, डॉक्यूमेंट्री और स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरीज भी देखती है।
1: और OTT प्लेटफॉर्म्स ने नए राइटर्स और डायरेक्टर्स को भी काफी मौके दिए हैं। अब ऐसी कहानियां भी दर्शकों तक पहुंच रही है जो शायद पहले पर्दे तक ना पहुंच पाती।
0: सही कहा, और इसका फायदा दर्शकों को भी हुआ है। अब उनके पास चुनने के लिए पहले से कई ज्यादा विकल्प है।
1: और एक बात मैंने नोटिस की है अमोल, कि आजकल लोग सिर्फ कंटेंट नहीं देखते बल्कि उसके बारे में चर्चा भी करते हैं, चाहे कॉलेज हो, ऑफिस हो या सोशल मीडिया, हर जगह किसी नई सीरीज या फिल्म की बात होती ही रहती है।
0: जुनेली, पहले लोग पूछते थे कौन सी फिल्म देखी,
1: और अमोल अब पूछते हैं कौन सी सीरीज बिंज की।
0: और बिंज वॉचिंग भी अपने आप में एक दिलचस्प आदत बन गई है।
1: हाँ बिल्कुल सही बात है, एक एपिसोड देखने बैठे और देखते देखते 3 एपिसोड खत्म हो जाते हैं।
0: फिर इंसान खुद से वादा करता है बस एक आखिरी एपिसोड,
1: और वही आखिरी एपिसोड रात के 12 बजे को 2 बजे बना देता है।
0: इसलिए एंटरटेनमेंट जरूरी है लेकिन बैलेंस भी उतना ही जरूरी है,
1: क्योंकि अच्छा कंटेंट हमें हंसाता भी है, भावुक भी करता है, सोचने पर मजबूर भी करता है और कई बार प्रेरित भी करता है।
0: और अब समय है अगले गीत का, जिसने अपनी सादगी और भावनात्मक गहराई की वजह से श्रोताओं के दिलों में काफी जगह बनाई है।
1: फिल्म लापता लेडीज का यह गीत अपनी खूबसूरत धुन और भावनात्मक प्रस्तुति के लिए काफी पसंद किया गया।
0: इसे अपनी आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, संगीत है राम संपत का, और इसके बोल कहानी की भावनाओं को बहुत खूबसूरती से सामने लाते हैं।
1: तो आइए सुनते हैं गीत सजनी।

0: दोस्तों, अब समय है हमारे कार्यक्रम के उस सेगमेंट का जिसका इंतजार युवाओं को हमेशा रहता है, क्योंकि हाँ, हम बातें करते हैं उन विषयों की जो आजकल चर्चा में हैं, जो युवाओं की जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं और जिनकी गूंज हमें सोशल मीडिया से लेकर कॉलेज कैंपस तक सुनाई देती है।
1: बिल्कुल अमोल, और इस सेगमेंट का नाम है क्विक बज, यानी कम समय में ज्यादा बातें, लेकिन ऐसी बातें जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हो।
0: जुनेली, मुझे लगता है कि आजकल एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है।
1: कौन सा अमोल?
0: कुछ साल पहले लोग ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन रहना चाहते थे, लेकिन अब कई लोग खुद ही कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
1: बिल्कुल अमोल, सही कहा। आजकल डिजिटल डिटॉक्स शब्द काफी सुनने को मिलता है। लोग वीकेंड पर नोटिफिकेशंस ऑफ कर देते हैं, सोशल मीडिया से ब्रेक लेते हैं, या फिर कुछ घंटे बिना फोन के स्पेंड करने की कोशिश करते हैं।
0: और इसकी वजह भी समझ में आती है। दिन भर पढ़ाई, काम, मैसेजेस और अपडेट्स के बीच कभी कभी दिमाग को भी थोड़ा आराम चाहिए होता है।
1: सही कहा अमोल, टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन उसके साथ बैलेंस बनाना भी उतना ही जरूरी है,
0: क्योंकि कुछ यादें कैमरा से नहीं बल्कि दिल से बनाई जाती है।
1: वैसे अमोल, वीकेंड की बात चले तो मैंने एक और ट्रेंड नोटिस किया है।
0: क्या?
1: आजकल काफी यूथ अपने वीकेंड्स को सिर्फ रेस्ट के लिए नहीं बल्कि कुछ नया सीखने के लिए भी यूज कर रहे हैं।
0: बिल्कुल जुनेली, कोई फोटोग्राफी सीख रहा है, कोई गिटार, कोई वीडियो एडिटिंग, और कोई पॉडकास्ट या कंटेंट क्रिएशन में अपना हाथ आजमा रहा है।
1: और सबसे अच्छी बात ये है कि हॉबीज अब सिर्फ टाइम पास नहीं रही, कई बार वही हॉबी आगे चलकर करियर अपॉर्चुनिटीज भी बन जाती है।
0: सही कहा जुनेली, आज इंटरनेट ने लर्निंग को काफी एक्सेसिबल बना दिया है। अगर किसी में सीखने की इच्छा हो तो रिसोर्सेज की कमी नहीं है।
1: और मुझे लगता है कि अमोल, नई चीजें सीखने से सिर्फ स्किल्स ही नहीं बढ़ती, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है।
0: जुनेली, सोशल मीडिया ने हमारी दुनिया को काफी बदल दिया है।
1: सही बात है अमोल, लेकिन मुझे लगता है कि आज के यूथ सोशल मीडिया को पहले से ज्यादा समझदारी से यूज कर रहे हैं।
0: मैं भी यही मानता हूँ। पहले फोकस ज्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स पर होता था, अब काफी लोग मीनिंगफुल कॉन्टेंट और लर्निंग को भी इम्पोर्टेंस देने लगे हैं।
1: सही कहा, आज सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं रहा, यहाँ लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव कर रहे हैं और नए आइडियाज भी एक्सप्लोर कर रहे हैं।
0: लेकिन जुनेली, एक बात याद रखना जरूरी है।
1: कौन सी अमोल?
0: कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज रियलिटी नहीं होती।
1: बिल्कुल सही बात, हर इंसान की लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, इसलिए कंपैरिजन से ज्यादा इंस्पिरेशन लेना जरूरी है,
0: और शायद यही हेल्दी अप्रोच भी है।
1: अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया की।
0: और पिछले कुछ समय में थिएटर्स ने जिस तरह से ऑडियंस का अटेंशन खींचा है वो काफी इंटरेस्टिंग है।
1: बिल्कुल सही कहा, आज ऑडियंस सिर्फ बड़े स्टार्स नहीं बल्कि अच्छी मूवीज भी ढूंढ रही है।
0: इसी वजह से धुरंधर, छावा, स्त्री 2 जैसी फिल्म्स लगातार ऑडियंस के बीच पॉपुलर बनी हुई है।
1: इन मूवीज की सबसे बड़ी खासियत ही ये है कि सिंपल स्टोरीज को बहुत ऑनेस्टली प्रेजेंट करती है,
0: और शायद इसी वजह से लोग इनमें खो से जाते हैं। पर हमें आज की रियलिटी पे भी ध्यान देना चाहिए।
1: वैसे अमोल, तुम्हारी वॉच लिस्ट कितनी बड़ी है?
0: जुनेली, इतनी कि अगर मैं आज से देखना शुरू कर दूं तो शायद अगला क्विक बस भी उस पर करना पड़े।
1: ये प्रॉब्लम शायद बहुत से लिसनर्स को भी रिलेट करेगी।
0: एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड है जुनेली।
1: क्या अमोल?
0: आजकल लोग फिल्म देखने से पहले ट्रेलर के साथ साथ ऑडियंस रिव्यूज भी देखते हैं।
1: सही बोल रहे हो अमोल, कई बार पब्लिक रिएक्शन ही डिसाइड कर देता है कि वीकेंड पर कौन सी फिल्म देखी जाएगी।
0: और जुनेली, मुझे लगता है कि ये सिनेमा के लिए अच्छी बात है, इससे कंटेंट की इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है।
1: सही कहा, आज ऑडियंस अच्छी कहानियों को सपोर्ट कर रही है और नए फिल्म मेकर्स को भी मौका मिल रहा है।
0: तो आइए चलते हैं म्यूजिक की ओर।
1: और अब बात म्यूजिक की। म्यूजिक शायद एक ऐसी चीज है जो हर जनरेशन को जोड़ देती है।
0: बिल्कुल, कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं रहते बल्कि यादों का हिस्सा बन जाते हैं।
1: कभी स्कूल की याद, कभी कॉलेज की याद, और कभी किसी खास दोस्त की याद।
0: और इसी वजह से जुनेली, अच्छा म्यूजिक कभी पुराना नहीं होता।
1: तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनाती हूँ आपको एक छोटा सा

0: प्लेटफॉर्म्स बदल जाते हैं, प्लेलिस्ट बदल जाती है, लेकिन म्यूजिक के साथ हमारा रिश्ता वही रहता है।
1: वाह क्या गाना था, और अब समय है एक ऐसे गीत का जिसने अपनी धुन, अपने बोल और अपने रोमांटिक अंदाज से लाखों श्रोताओं का दिल जीता।
0: फिल्म जवान का ये लोकप्रिय गीत अपनी खूबसूरत प्रस्तुति और संगीत की वजह से काफी पसंद किया गया।
1: इसे अपनी आवाज दी है अरिजीत सिंह और शिल्पा राव ने, संगीत है अनिरुद्ध रविचंद्र का और गीत के बोल लिखे हैं कुमार ने।
0: तो आइए सुनते हैं चले आ।

0: दोस्तों, आप सुन रहे हैं युववाणी और अब समय है हमारे कार्यक्रम के अंतिम विशेष सेगमेंट टुडे इन हिस्ट्री का। इस सेगमेंट में हम ऐसे व्यक्ति को याद करते हैं जिसने अपने कार्य और विचारों से समाज पर गहरी छाप छोड़ी।
1: और आज 19 जून के अवसर पर हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी की, जिनका जन्म 19 जून 1947 को मुंबई में हुआ था।
0: जुनेली, सलमान रुश्दी का बचपन किताबों और कहानियों के बीच बीता। उन्हें शुरू से ही पढ़ने का शौक था। शायद यही वजह थी कि आगे चलकर उन्होंने लेखन को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया।
1: बिल्कुल सही बात है अमोल। बाद में उन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक विज्ञापन जगत में भी काम किया, लेकिन उनके मन में कहानियां लिखने का सपना हमेशा जीवित रहा।
0: और जुनेली, यही बात दिलचस्प है। कई बार हम अपने सपनों की दिशा में सीधे नहीं पहुंचते, रास्ते में कई मोड़ आते हैं, लेकिन अगर लक्ष्य स्पष्ट हो तो मंजिल तक पहुंचना संभव हो जाता है।
1: सही कहा अमोल। शुरुआत में उन्हें भी वैसी पहचान नहीं मिली जैसी वे चाहते थे, लेकिन उन्होंने लिखना जारी रखा। लगातार मेहनत और धैर्य के बाद वर्ष 1981 में उनका उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन प्रकाशित हुआ।
0: ये उपन्यास भारत की स्वतंत्रता और विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित था। इस पुस्तक को दुनिया भर में सहारा गया और इसके लिए उन्हें प्रतिष्ठित बुकर प्राइज भी मिला।
1: किसी लेखक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन सफलता के साथ चुनौतियां भी आई। उनके कुछ लेखन को लेकर विवाद हुए और उन्हें कठिन परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा।
0: जुनेली, ऐसे समय में बहुत से लोग हार मान लेते हैं, लेकिन सलमान रुश्दी ने लिखना नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने काम और अपने विचारों पर विश्वास बनाए रखा।
1: और शायद यही उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख है अमोल। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर आपके अंदर अपने काम के प्रति ईमानदारी और समर्पण है तो आप आगे बढ़ सकते हैं।
0: और जुनेली, मुझे लगता है कि युवाओं के लिए भी ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम अक्सर तुरंत रिजल्ट्स चाहते हैं, लेकिन हर बारी सफलता के पीछे समय, धैर्य और लगातार प्रयास एकदम से नहीं मिलता।
1: बिल्कुल सही कहा अमोल। चाहे कोई छात्र हो, कलाकार हो, खिलाड़ी हो या लेखक, हर किसी को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है।
0: और इसी वजह से किताबें और साहित्य आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। वे हमें सिर्फ जानकारी नहीं देते, बल्कि सोचने का नया नजरिया भी देते हैं।
1: तो आज सलमान रुश्दी के जन्म दिवस पर हम यही सीख लेते हैं कि सपने देखना जरूरी है, लेकिन उनसे भी ज्यादा जरूरी है उन सपनों के लिए लगातार मेहनत करना।
0: क्योंकि जुनेली, सफलता केवल प्रतिभा का परिणाम नहीं होती, बल्कि धैर्य, समर्पण और निरंतर प्रयास का भी परिणाम होती है।
1: और इसी प्रेरणादायक विचार के साथ अब समय है आज के अगले गीत का। तुम ही हो बंधु, फ्रॉम द फिल्म कॉकटेल।

0: दोस्तों इसी के साथ आज का युवाणी कार्यक्रम समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए जोश और नए टॉपिक के साथ।
1: उम्मीद है कि आज की चर्चाएं, प्रेरणादायक बातें और गीत आपको पसंद आए होंगे।
0: प्लीज स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी।
1: मैं हूं जिनेली
0: और मैं हूं अमोल।
1: तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं।
0: नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस यात्रा के दौरान उन्होंने एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नव प्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया यात्रा के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि युवाओं को असंख्य अवसर प्रदान करना विकसित भारत की मूल परिकल्पना है। युवा कार्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा लिखित एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवंशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में ना लें, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
2: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अधिक प्रभावी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में देश का रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए का था। पिछले वित्त वर्ष में ये बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। श्री सिंह आज नागपुर के अंबाझरी स्थित यंत्र इंडिया लिमिटेड के आयुध निर्माणी परिसर में 10,000 टन क्षमता वाले आधुनिक एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज विधानसभा में राज्य का संशोधित बजट 2026-27 पेश किया। अपने बजट भाषण में उन्होंने समावेशी विकास तथा सतत अवसंरचना के नए केरल का संकल्प लिया। श्री सतीशन ने संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार के पहले बजट में स्वास्थ्य सेवा और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार

0: 803, while the Nifty fell 155 points to settle at 24,013. In badminton, India's Ashmita Chali has stormed into the women's singles semi-finals of the Macau Open in China today. Ashmita secured her place in the last four with a straight game win over South Korea's Kim Min-sun, 21-16, 21-18 in the quarterfinals. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको नई दिल्ली के विज्ञान भवन लिए चलते हैं, जहां से आप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं प्रीति मोहन और डी एंड्रियो। आइए विज्ञान भवन चले।
2: नमस्कार, विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल से मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरे साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू मेरे साथ हैं और आकाशवाणी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज विज्ञान भवन में भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन देश के युवाओं को सशक्त बनाने, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। यहां हम अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहेंगे कि विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और वो लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
3: Yeah, the Prime Minister has arrived already, is in Vigyan Bhavan and is in a separate hall where is having a talk, a discussion with the beneficiaries who are going to be benefited today from this this Yojana, that is the Vikshit Bharat Rozgar Yojana by the Prime Minister. And then after that, he'll be coming over here in, say, in a short while, he'll be entering the plenary hall, wherein the program will begin. And to say, tell you something about the atmosphere over here, it's really brightly lit atmosphere, and a lot of flowers are there in front of the dais, and you're having yellow, white and pink roses. And of course, they are flanked by yellow and pink lilies and the anthurium. So you can see that all the people, the beneficiaries, they are numbering about, about 600 people. We are all seated over here and they'll be getting the appointment letter for the jobs. And it's going to be a wonderful atmosphere over here. And it'll be a lifetime experience for them because they're getting these letters from the hand of the Prime Minister.
2: बिल्कुल एंड्रयू, और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे डिजिटली, रिमोट का बटन प्रेस करके, और सबके खातों में चली जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना।
3: And we got appointment letters, Preeti, when we got a job. And now you see, everything is digital. So India's also gone ahead with the world because everything is digitized now. And today, in fact, around 15 lakh beneficiaries will be getting their job, their letters today, employment letters. And that is going to cost about 2,400 crores only for today. And then, of course, and the final aim, the final total, that is going to be about 3.5 plus crore jobs. And the total budget is for this is about 99,446 crores.
2: बिल्कुल, और मंच की बात करें तो मंच पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होंगे श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, और साथ में होंगी श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, और साथ उनको जो स्कॉट करके लाएंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुरनानी, और साथ में दो युवा लाभार्थी भी साथ में होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब वो मंच पर आएंगे।
3: Yeah, these two beneficiaries are going to bring the Prime Minister to the dais. What a privilege for them. I think it's going to be a lifetime experience for them. And I just want to tell you, the motto for this is Rozgar ya Karobar, Saath hai Bharat Sarkar. What an encouragement to the people who are going to start the business. And then the transformation journey is from auto settlement of advance claims up to rupees 5 lakhs. So people who have got debts and all that will be waived off. Then centralized pension payment scheme, which is CPPS. And then digital life certificate through Umang app. And face authentication technology, FAT, through forgetting the number. And 99.68% of UANs have been generated, which is the universal account number.
2: आज के कार्यक्रम पर अगर एक नज़र डालें तो फिलहाल युवा लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत हो रही है और उसके बाद डायस पर आने के बाद हम ये जो विधिवत एक स्वागत होता है वो श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया जाएगा. तत्पश्चात एक लघु फिल्म प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर दिखाई जाएगी और उसके बाद जो आज का बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यक्रम है रिमोट का बटन प्रेस करके राशि हस्तांतरित की जाएगी लाभार्थियों के खाते में. और हाँ बोलो. इस योजना के अगर प्रमुख आंकड़ों की बात करें उस पर एक नजर डालें तो योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुई और अब तक देश भर में 15 लाख नए रोजगार अवसर सृजित हो चुके हैं, पहले ही हो चुके. और योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए है और आगामी 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का लक्ष्य है. तो देखिए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कितने युवा उससे लाभान्वित हों. और शुरुआत से अब तक का सफ़र देखें तो करीब 15 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है और योजना का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना. और आज के विशेष दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योजना के लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे. ये एक एनकरेजमेंट होता है और कुछ बेहतर करने की एक जो ललक होती है वो
3: उसमें आती है. People will feel secure. Okay, the government is there to help us out. So we should not feel that okay, I'm not going to achieve anything. But let this Prime Minister is given them an assurance that the government is there with you. That is what he says in this motto, no? रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार.
2: जी. और चंद मुख्य बातों पर नज़र डालें तो यहाँ ज़रूर बताना चाहेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री आज विकसित भारत योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे और पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा. और सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए तक के प्रोत्साहन के पात्र होंगे. और इसके अलावा ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सृजन रोजगार के औपचारीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है, आसानी से सब पहुंच सके. और इस प्रोत्साहन ने देश भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार सुलभ करवा दिया है. जी.
3: Yeah, and you know, this program operates under a dual incentive structure split into two distinctive parts. The first part is support for the first-time employees, jinko pehli bar naukri mili
2: hai.
3: This component focuses directly on the young individuals entering the formal workforce for the first time. And the eligibility is new employees joining an EPFO, that is the Employees Provident Fund Organization, registered establishment, with a monthly gross salary of up to rupees 1 lakh. And the worker must not have any prior EPFO history before August 1st, 2025. So these are the conditions. And then the financial benefit is a direct incentive equivalent to 1 month of EPF wage, capped to a maximum of rupees 15,000. Right? And then the disbursement will be in two stages. That is through the direct benefit transfer, DBT, through the Aadhaar verification in two equal installments using Aadhaar verification. First installment after 6 months of continuous duty of 7,500 rupees. And the second one after another 6 months. So after the completion of 12 months, they'll be getting a total of 15,000 rupees. And the employer also, of course, he also gains something. Every time he brings in a new worker, he also gets a benefit of 3,000 rupees per worker that he brings in. So obviously, when these benefits are there, even the employers, they'll try to bring in as many people as possible, and even the so that more and more people get employment, and they also, the employer also earns, the employees also earn.
2: बिल्कुल सभी को फायदा है. बिल्कुल फायदा है। और आर्थिक विकास में विनिर्माण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र में नियोक्ताओं को 4 वर्ष तक प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा, और वही सभी क्षेत्रों के नियोक्ता 2 वर्षों तक इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं। और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी। और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
3: The Minister of Employment and Labour organizes and promotes Rozgar Melas, that is Job Fairs, which is being held today across India through the National Career Service portal, that is the National Career Service India, to bridge the gap between the job seekers and the employers. And the National Career Service, NCS, is the official platform where you can search for local job fairs. It is, you go to the portal and you'll get, and then register as a job seeker and connect with the employers. So if they find that you are reasonable, you are well qualified for their jobs, you'll be picked up.
2: और जैसे कि एंड्रयू ने जिक्र ही किया था, आज का कैप्शन है रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, और कुछ एक पलों में लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा, बिल्कुल डिजिटली पहुंच जाएगा। कहते हैं ना कि अच्छा आएगा देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस रिमोट का बटन प्रेस करेंगे और सभी के खातों में मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि हाँ आपके पास पहुँच गए हैं। तो ये बहुत भावुक क्षण भी होते हैं, नहीं आपको टच भी करते हैं दिल में कहीं, और प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है कुछ करने का, कुछ बेहतर करने का। इसके अलावा नारी शक्ति पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। 4 श्रम संहिताएं लागू, महिला कर्मचारियों के लिए लाभ, नारी शक्ति समान कार्य के लिए समान वेतन, सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति, वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान, और भूमिगत खनन एवं भारी मशीनरी सहित सभी प्रकार के कार्यों में रोजगार की अनुमति। विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना?
3: Yeah, that's true. And that's what we say, you know, dreams are being fulfilled under the prime ministership of Mr. Narendra Modi. And in fact, this applicable period for this one, the one which is taking place right now, is from the 1st of August 2025, it started last year, till the 31st of July 2027. So this is for a period of 2 years. But in manufacturing sectors, the heavy industries, where it is extendable up to a period of 4 years. Its benefits are applicable up to a period of 4 years.
2: 4 saal.
3: Yeah. And then we have this growing with India's workforce, the EPFO, that is the Employers Provident Fund Organization, which is a strength of 7.99 crore members. And then 84 lakh pensioners who are being benefited by this EPFO.
2: बहुत ही ध्यान से मैं देख पा रही हूँ कि विज्ञान भवन में सभी युवा और अतिथिगण जितने भी हैं अपना स्थान ग्रहण करके और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और मंच बहुत खूबसूरत फूलों से सुसज्जित है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, रंग बिरंगे पुष्प खुशबू भी बिखेर रहे हैं, और साथ में इस खुशबू के साथ एक अलग सी हवा है ये।
3: एटमॉस्फेयर इज रियली फैंटास्टिक, इज रियली इलेक्ट्रिक, यू नो, बिकॉज़ सी एवरीवन इज लुकिंग टुवर्ड्स द एंट्रेंस to the plenary hall, because very soon I'm sure the Prime Minister will be coming in, walking in with the other dignitaries, and he'll take his seat over here on the dais.
2: और आकाशवाणी के माध्यम से आंखों देखा हाल आप तक पहुंच रहा है। और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूं तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उसके युवाओं के लिए गुणवत्ता पूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो।
3: यस, एंड आवर प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलवेज पुट लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द यूथ, यू नो, द यूथ ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज दे आर द फ्यूचर पिलर्स, दे आर द वंस हु आर गोइंग टू होल्ड दिस नेशन, सो ही इज पुटिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन देम, एंड ही सीज दैट ऑल आर एम्प्लॉयड, ऑल गेट एम्प्लॉयमेंट, नन ऑफ देम आर लेफ्ट विदाउट अ जॉब, बिकॉज यू नो हाउ मच फ्रस्ट्रेशन इट लीड्स टू व्हेन अ पर्सन डजंट हैव अ जॉब, सो दैट्स व्हाई द प्राइम मिनिस्टर इज वर्किंग ऑन दिस एंड इज ब्रिंगिंग आउट दीज स्कीम्स, एंड देन I think the Prime Minister is about to arrive in the plenary hall. People are anxiously waiting. silence is being maintained, and the announcement is going on that, well, the Prime Minister is about to arrive, he's on his way. And I want to tell you one more thing. ESIC's growing network of protection and care. This is Social Security for All, which is 3.24 crore plus insured persons enrolled, 14.91 crore plus beneficiaries, which is covering 728 districts. So this is Social Security for All.
2: और अभी सभी जुड़े भी हुए हैं, नहीं? लाइव जुड़े हुए हैं सभी यहाँ. ये महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा भारत हमारे साथ.
3: Yes. Because this is applicable to 728 districts right now. Right now, and already 15 lakh people have already got the employment letter, the job letters, and that total incentive which is going to go to them is 2400 crores.
2: और थोड़ा सा सार देखें एंड्रयू तो जरूर बताना चाहेंगे. योजना के अनुसार 1500 रुपए की राशि दो किस्तों में मिलेगी और ये पैसा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका पहली बार प्रोविडेंट फंड नंबर जनरेट हुआ है. ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है. और सैलरी 1 लाख रुपए महीने से ज़्यादा ना हो, कम होनी चाहिए, तब ये मिलता है. और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 तक है तो कंपनी को 1,000 रुपये प्रति कर्मचारी मिलेगा, और अगर कर्मचारी की सैलरी 10 से 20,000 तक है तो कंपनी को 2,000 रुपये हर महीने मिलेंगे, और 20,000 से 1,00,000 तक है तो सैलरी तो कंपनी को 3,000 रुपये प्रति कर्मचारी मिलेंगे. इसका आपने जिक्र भी किया था.
3: Has been to generate more than 3.5 crore jobs across India, promote formal employment and social security coverage, support first-time job seekers. That is what it says, no? The scheme aims to make it easier for young people to enter formal employment while encouraging businesses to hire more workers and expand India's organized workforce. And then support first-time job seekers, and then incentivize employers, especially in the manufacturing sector, to create new jobs. See, only when the employees also get an incentive, when they are paid something for every time they give a, they take in a new person, a new job seeker, they also given an incentive which accounts to 3,000 rupees. So why not? They'll definitely try to employ more and more people so that their work also expands, the workforce also expands, and of course it is always on the for the development of the country.
2: Okay. ESIC का बढ़ता सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नेटवर्क 3.24 करोड़ प्लस बीमित व्यक्ति पंजीकृत और 14.91 करोड़ प्लस लाभार्थियों तक पहुंच और 728 जिलों में सेवाएं उपलब्ध. और सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक सुरक्षा. ये बहुत जरूरी है. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बहुत ही ऐसी योजना जिससे सभी को
3: Our Prime Minister is a man with dreams. He wants to take India to great heights, and he has achieved it almost. He's taken India to great heights, and right now, and of course, internationally, the world, India has got recognition as a mediator among warring countries, because people have so much of confidence on our Prime Minister that they contact him for problems to be solved.
2: 4 श्रम संहिताएं लागू. मजदूरी संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता 2020. 29 श्रम कानूनों का एकीकरण, सरल प्रक्रियाएं एवं एक समान परिभाषाएं और अनुपालन का दबाव कम, पारदर्शी, कुशल और डिजिटल प्रणाली. और फिर कुल मिला के कहें तो प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना जी.
3: एंड आई एम रियली ईगर टू सी आवर प्राइम मिनिस्टर कम एंड प्रेस दैट बटन, यू नो, द मनी विल गो टू 15 लाख पीपल इनटू देयर अकाउंट्स एंड दे विल बी गेटिंग द लेटर्स एंड इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. प्रीति, इन फैक्ट आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस, यू नो, जस्ट एट द प्रेस ऑफ अ बटन 15 लाख people, beneficiaries, get the employment letter. India has also gone ahead with the world. When we have advanced, they have gone digital and we have gone digital. So, we are going digital in every field. So, we should be proud of our country, and the people are anxiously waiting over here. There are about 700 people, I think, or almost 700 people are seated over here, right up to the top
2: जितनी कैपेसिटी है पूरी भरी हुई है,
3: इट्स फुल, नॉट अ सिंगल सीट इज एम्प्टी. पीपल आर दे आर ऑल जॉब सीकर्स एंड मोस्ट ऑफ दिस पीपल दे विल बी गेटिंग द जॉब्स. They are all keeping their phones ready on the table. So as soon as the Prime Minister presses the button, it will come to their phone that they have got their letter.
2: An amount will be transferred.
3: Yeah.
2: और कैमरामैन बिल्कुल तैयार इन ऐतिहासिक क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए. और आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन कह सकते हो, नहीं? आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है और माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित होगी और रिमोट बटन प्रेस करके. और देश में रोजगार के नए मौके बढ़ाने और युवाओं को अच्छी नौकरियों से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है, ये कह सकते हैं.
3: एंड सी द सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयर्स, यू नो दिस इज द एलिजिबिलिटी इज एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड विद द ईपीएफओ दैट सक्सेसफुली जनरेट नेट न्यू एम्प्लॉयमेंट टू क्वालिफाई स्मॉलर फर्म्स फ्यूअर देन 50 बेसलाइन वर्कर्स मस्ट hire at least 2 new employees, while larger firms, 50 or more baseline workers, must add at least 5 new employees. And the financial benefit is that the government pays companies up to rupees 3,000 per month for each additional new hire whose salary is within the 1 lakh rupees threshold, provided they are retained for at least 6 months. And the duration of the incentives are covered for 2 years across all sectors. However, to heavily support the manufacturing sector, businesses operating in manufacturing receive extended incentives lasting up to 4 years. And then the payout channel is, the payouts are routed straight into the employer's verified PAN-linked company bank account. That is very important. See, every account has to be linked with a PAN number. Yeah. And then registration processes, eligible entities can participate through designated digital channels. For employers, companies must visit the official Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana portal to finish a quick one-time institutional registration. And then for the employees, the first-time workers need to register and generate a universal account number, UAN, utilizing the face authentication technology built directly into the Umang app.
2: ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ और उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए. और ये बहुत महत्वपूर्ण है जी. इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार. जी. और फिलहाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ एक पलों में मंच पर होंगे. और उनके साथ आएंगे श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे. और उनके साथ उनको स्कॉट करेंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुना और साथ में दो युवा लाभार्थी भी होंगे.
3: And see, the beauty is that the person who'll be giving the bouquet is one of the young beneficiaries, and he'll be so happy in his heart that I'm getting a job and our Prime Minister has given this job to me. So and I'm telling you, it's really going to change the lives of these people, all these beneficiaries who are sitting over here in the plenary hall of Vigyan Bhavan, and they'll be dreaming, you know. I'm sure I'm going to come up. And I think they are all looking towards the door. I'm sure the Prime Minister is about to arrive. And once he arrives, then the other deliberations will take place. The Union Minister, he'll give the welcome address. And then the Prime Minister will be... There'll be a filming of the... short film that will be filmed on the screen. And then after that, he'll be clicking on the button. The magic button. the magic button, which will give jobs to about 15 lakh people across the country. And then, of course, the Prime Minister will give his speech. And I'm sure people are waiting for him to give his speech because his speech has always been very inspiring. The young people, you know, it has been a real inspiration for them. You know, he's been an inspiration to the country. And so many followers of Prime Minister, they all know that really whatever he does is something, you know, means... He wants to build India into one of the superpowers in the world, bring the rank of our country to the top, and his dreams, you know, of making India a strong economic power, and is on the way, is on that route right now.
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है और

0: ये इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा और जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और ये बहुत ज़रूरी भी होता है। अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलता है और इससे सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाता है और प्रोत्साहन भी मिलता है और आर्थिक विकास को गति देने में विनिर्माण के कार्यनीतिक महत्व को देखते हुए विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताएँ 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं, जबकि अन्य सभी सेक्टरों के नियोक्ता 2 वर्ष के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं।
1: And see the dais, how many bouquets are there? The Prime Minister will be sitting right in the middle. On the right, he'll be flanked by the Union Minister, and on the left, by the Minister of State. And the board behind, you know, it's a beautiful one. There's a screen on the board. On the plenary hall and the dais, just behind the dais, there's a beautiful board. And on that, the Prime Minister, the Rozgar Yojana, everything is given, all the details are given on that.
0: आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए।
1: Yes, and this, you know, I want to tell you, in fact, I've seen over the years, I think this is the 12th year, he's completed 12 years of his rule as the Prime Minister of our country. And all these years, you know, his intention has always been to generate more and more employment, right? Just to remove this unemployment, reduce it to the max, minimum, reduce the unemployment to the minimum so that more and more people are employed. And they are able to overcome all the financial problems that they go through. And because through all these schemes, you know, our Prime Minister is helping out the people to see that they are self-sufficient, they are independently, they're financially independent. And very soon our Prime Minister will be coming in and people are getting ready. All are viewing towards the gate, towards the entrance to the plenary hall.
0: जो माननीय प्रधानमंत्री जी की युवा लाभार्थियों से बातचीत हो रही है जब वो लौट करके यहाँ आते हैं तो उनके अंदर जो उत्साह होगा उसे हम सब महसूस कर सकते हैं क्योंकि वो तो कभी कम नहीं होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 बात करना ये एक प्राउड मोमेंट होता है नहीं?
1: That's true. And you know, I attended one of these days, you know, when the Prime Minister spoke to the students all over the country. Through the live telecast, you know, and you won't believe the way he encouraged the students. He said that don't worry, if you get low marks, it's not that everything is closed for you. Still, you've got a job, you've got something, you've got a future. Every person has a plan, a talent. God has given a talent in you, and he will see that it you come up in your life. So he said that if low marks will not, it's not an end to anything. So you know, here, that's how he encourages. And students, I'm sure, you know, they go and write the exam with confidence. And here also, these young people, these beneficiaries, they have come here with confidence, with the hope that our Prime Minister is helping us to get a job.
0: आपने जिक्र किया बच्चों का तो मुझे याद आ गई परीक्षा पे चर्चा तालकटोरा स्टेडियम कैसे भरा रहता था और बच्चे कितने उत्साह के साथ प्रश्न पूछते थे और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बात कर लेते हैं तो उनमें ऐसी कोई बात होती ही नहीं कि हमारे लिए पढ़ना कहीं मुश्किल हो सकता है क्योंकि उनकी एक किताब आती है जो जिसको पढ़ने के बाद बहुत उत्साह भर जाता था बच्चों में और बच्चों को लगता था परीक्षा आ रही इसे देना तो बहुत ही आसान है कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं है ना तो ये शब्द हमारे अंदर रच बस जाते हैं और युवा उससे जुड़ जाते हैं और आज भी युवा साथ में बातचीत कर रहे हैं. तो मैं सोच ही रही हूँ कि बाद में

0: डॉक्टर मनसुख मांडवीय जी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदला जी का।
1: आप सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान ग्रहण करें।
0: मैं मन्नत भाटिया
1: और मैं जयवर्धन गोयल,
0: माय भारत वॉलंटियर्स, आप सभी का।
2: The Prime Minister has arrived. He has taken his seat on the desk.
0: प्रधानमंत्री जी, हम आपको सविनय सूचित करना चाहते हैं कि आज
2: flanked by the Union Minister on his right and by the Minister of State to his left.
3: और सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और अब सब ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया।
1: अनुरोध करेंगे हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बेनिफिशियरी सुश्री सिखामोनी डेका जी से कि वे पुष्प देकर मंच पर विराजमान हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां।
3: पुष्प से स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री जी का एक युवा लाभार्थी ने।
1: यह सम्मान का माध्यम है, यह आत्मविश्वास का आधार है और यह विकसित भारत के निर्माण की सबसे मजबूत नींवों में से एक है। यही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का विजन है, यही रोजगार राष्ट्रीय समागम का संदेश है।
0: अब हम अनुरोध करते हैं माननीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडवीय जी से कि वो अपना स्वागत संबोधन दे।
2: And now the welcome remarks.
1: एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।
2: By Shri Mansukh Mandavia, the Minister for Labour and Employment. He walks to the podium to give a speech.
4: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि वितरण करने के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरी सहयोगी मंत्री आदरणीय शोभा करंदला जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न राज्यों से जुड़े आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के श्रम मंत्रीगण और सभी लाभार्थी भाइयों एवं बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत के निर्माण में आपकी विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है। और इसलिए एक समय था जो लेबर की बात करते थे, प्रो लेबर थे, उसको इंडस्ट्रीज के खिलाफ माना जाता था और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था। लेकिन आपकी सोच ने ये चरित्र को बदल दिया है। आज एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में आपने परिभाषित करा है और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से वेल्थ क्रिएटर को सम्मान करने की बात कही थी, उनके साथ आपने श्रमिक कल्याण के लिए और वर्कर के हितों को सुरक्षित करने के लिए 4 महत्वपूर्ण लेबर कोड भी लागू करा। पिछले ही वीक में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, दुनिया के 40 देशों ने भारत के लेबर कोड के प्रेजेंटेशन को देखा और उसको सराहा। वो बताते हैं कि आपने जो लेबर कोड बनाया है वो हमारे देश के श्रमिक के हित में है और देश के श्रमिक के कल्याण को पूरा करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लेबर कोड आपके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा लागू करे गए लेबर कोड महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देता है। देश में 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी की आपने गारंटी दी है। महिला वर्कर्स के हित के लिए एस्टेब्लिशमेंट में क्रेज की भी आपने गारंटी दी है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयर को 1 साल बाद ही ग्रेजुएटी मिले उसकी भी आपने गारंटी दी है। जो पहले कोई वर्कर्स काम करते थे और 5

साल वो कंटिन्यूस काम करते थे तो ही ग्रेजुएटी का प्रावधान था। 40 साल से के अधिक उम्र वाले सभी हमारे एम्प्लॉइज को वर्ष में एक बार हेल्थ चेकअप करने की भी आपने गारंटी दी है। 12 साल में आपने डेवलपमेंट तो किया, उसके साथ भी आपने रोजगार निर्माण करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। सामान्यतः रोबस्ट इकोनॉमी का ये नियम है, कोई भी देश की इकोनॉमी 1% ग्रो करती है तो उनके साथ 1% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना वो आदर्श शासन व्यवस्था मानी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सामने 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11 यानी कि 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। केवल ये फिगर नहीं है, उसके साथ जो एलाइन करते हैं हमारे देश की रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक आज़ादी के पहले बनी है, और 1980 से रिजर्व बैंक देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबर फोर्स की डिमांड, एनर्जी कंजप्शन, मटेरियल और सर्विस सेक्टर में जो गतिविधि हो रही है उसके डेटा को एनालिसिस करती है और उनके आधार पर क्लेम डेटा डिक्लेयर करती है। ये क्लेम डेटा एनालिसिस होता है 1980 से, और यही डेटा का जब हम विश्लेषण करें तो 2004 से 2014 एक दशक में केवल देश में 2.9 करोड़ 9 लाख जॉब क्रिएट हुए थे, और रिजर्व बैंक ने कहा कि 2014 से 2024 एक दशक में, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के युवाओं के लिए 17 करोड़ जॉब निर्माण करके देश के युवाओं को हाथ में काम दिया है, और उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में 6% था, लेकिन यही आपका प्रयासों से आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% है, जो ग्लोबल एवरेज 4.8% है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जॉब भी निर्माण करा, आपने इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाया, और उनके साथ आपने सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भारत में 2014 के पहले 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, यानी कि 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में थे। आज आपके प्रयासों से 12 साल के बाद देश में 64.3% यानी कि 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ऑलरेडी आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरंदेशी दृष्टि से आपने देश के युवाओं के हाथ में रोजगार आए। मेरे देश के कोई युवा प्रतिवर्ष 1 से 1.5 करोड़ युवा वर्कफोर्स में आते हैं जिसको जॉब चाहिए, और आप तो पहले से उसकी तैयारी करते हैं। आपने जब तीसरी बार भारत में सरकार बनाई और 2025 के बजट में, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के युवाओं के रोजगार के लिए भी सुनिश्चितता करी, और बजट में ही आपने प्रधानमंत्री पैकेज फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करा। ये पैकेज क्या था? 2 लाख करोड़ का ये पैकेज 5 साल में 4 करोड़ जॉब निर्माण के लिए आपने निश्चय करा। उसका ही नतीजा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया का आउटलेट है, जो 2014 के पहले की 20 साल की सरकार का लेबर मिनिस्ट्री का बजट का हिसाब करें तो भी 1 लाख करोड़ नहीं हो रहा है। मेरे देश के युवाओं के लिए, उसकी रोजगार की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जी आपने 1 लाख करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट करके 3.5 करोड़ जॉब यही योजना से आपने सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई है। उसका फलस्वरूप आज देश के 15 लाख एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप 2,400 करोड़ रुपया सभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के अकाउंट में आज

0: का विधिवत स्वागत किया आपने। और अब एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर कुछ एक पलों में, है ना?
1: स्क्रीनिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना।
2: देवियों और सज्जनों, अब हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर आधारित एक विशेष फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जो शब्दों को चेहरों में, जिंदगियों में और सच में बयां करती है।
3: भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो, या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे सामूहिक प्रयास भारत को ग्लोबल स्टेज पर नित नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए औपचारिक कार्यबल को कौशल विकास के साथ मजबूत करना और उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की।
4: आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है।
3: इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3,50,00,000 से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के बराबर 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। इसके लिए कम से कम 6 महीने लगातार रोजगार में बने रहना होगा। 1,00,000 रुपए तक वेतन वाले कर्मचारी ही इस योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता को भी प्रोत्साहित कर रही है। अब यदि कोई नियोक्ता नया रोजगार सृजित करता है तो उसे 1,00,000 तक की मासिक सैलरी वाले हर नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को ये राशि 4 साल तक मिलेगी और इसका लाभ लेने हेतु नियोक्ता को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना तथा कर्मचारियों को भी ईपीएफ सदस्य बनाना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
5: हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया, जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर भी बढ़े।
6: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मिले लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया। आज मैं अपने करियर को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ।
3: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ इंसेंटिव देने की योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने की, युवाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समझ बढ़ाने की। आज ये योजना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना।

0: विकसित भारत रोजगार
1: मीडिया
0: योजना
1: कागज पर लिखी जाती
0: एंड
1: है तब जीती हैं
0: दैट वाज
1: जब वो
0: अ शॉर्ट
1: शॉप
0: फिल्म
1: किसी के घर
0: एंड
1: से
0: नाउ वेरी शॉर्टली द प्राइम मिनिस्टर विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना बेनिफिट्स टू द बेनिफिशियरीज एंड पीपल आर वेटिंग एंक्शियसली एंड द बटन इज कमिंग राइट इन फ्रंट दैट इज अ रिमोट कंट्रोल बटन एंड द प्राइम मिनिस्टर विल बी प्रेसिंग द बटन एज सून एज ही प्रेसेस इट Well, about 15 lakh people all over the country will be getting their appointment letters and they'll be getting the money and the Prime Minister presses the button and you can see the people cheering.
2: तालियों से स्वागत किया सबने इस बेहतरीन क्षण का और भारत के माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित हो गई।
1: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डिस्पर्स करने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की इंसेंटिव की इस इकाई से 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार मिला है एक बार जोरदार तालियां हो जाए
0: व्हाट अ टाइम व्हाट अ मोमेंट The Prime Minister just pressed the button and all the beneficiaries, they've got the benefits.
1: कृपया अपने अमूल्य विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें।
2: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का
1: तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
2: डाइस पर
3: मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी बहन शोभा जी देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़े टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव और जैसा अभी मंच संचालक बता रहे थे कि 200 स्थान पे करीब 2 लाख लोग अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं उन सब का भी दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूँ उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़े युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है भारत के टैलेंट स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर

पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आमतौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती है, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है। और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है, यार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता था छोटा ही रहना अच्छा है, और कभी बड़े होने की संभावना उसको लगता है ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है, हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए और ये उद्योग को भी जरूरत होती है। और इस योजना से वो द्वार भी खुला है और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था। उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहां कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है, करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है, करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। यह उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है।

साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे नौजवानों को अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना, और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है, और अभी मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे, मैं आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी, कितना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है, एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है, भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे, युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है।

साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी हैं। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था, उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उमंग से बता रहे थे वो। मैं भी आपको ड्रोन सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। वो नौजवान तो आईटीआई करके निकला है, लेकिन वो कह रहा था कि वीडियो ड्रोन का मत देखो, खुद ड्रोन बनाना शुरू करो, बना लोगे, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया, उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो, कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी, वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप, और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। साथियों, आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है, हर कोई भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को लेकर के बहुत आश्वस्त है। आपने भी देखा होगा, फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे

क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं, वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी यूरोप के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ये समझौते भी देश में लाखों की संख्या में नए रोजगार का बनाने का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है, हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है, पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है, लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना हो, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधाएं सुनिश्चित करना हो या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। साथियों, हमारी नारी शक्ति भी आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है, इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक अवसरों वाला वातावरण तैयार किया जा रहा है। नाइट शिफ्ट से जुड़े पुराने प्रतिबंधों में बदलाव हो, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो या सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था, हम महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरे उद्योग जगत के साथी भी उपस्थित हैं। आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है, 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के पास जाएंगे जिनके पास स्किल टैलेंट होगा, जिनके पास इनोवेशन होगा, जिनके पास क्वालिटी होगी।

और आज भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता है। और इसलिए मैं भारत के उद्योग जगत से भी कहना चाहता हूं, आज जो अवसर हमारे सामने हैं उन्हें हमें पूरी शक्ति से अपनाना होगा, हमें नए बाजारों तक पहुंचना होगा, हमें नए उत्पाद बनाने होंगे, हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि आज दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है। पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं। भारत ने करीब 40 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, हमें इसका भी पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये एग्रीमेंट्स नए बाजार बना रहे हैं, नए मार्केट्स को उपलब्ध करा रहे हैं, दुनिया में मेक इन इंडिया ब्रांड्स के लिए नए अवसर पैदा हो ही रहे हैं, और इसलिए हमें इन अवसरों को गंवाना नहीं है दोस्तों। साथियों, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं, जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी, सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं। और इसलिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप अब वैकल्पिक नहीं है, वो ये 21वीं सदी की आवश्यकता है। भारत के उद्योग जगत को अपने लिए स्किल्ड वर्कफोर्स को भी तैयार करना ही करना है, और भविष्य के लिए नए अवसर भी तैयार करने हैं, क्योंकि विकसित भारत का रास्ता केवल निवेश से नहीं बनेगा, वह टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनने वाला है। और इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कसौटी एक ही है, और मैं उद्योग जगत के साथियों को बार बार कह रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों का फायदा लेने की एक सबसे बड़ी सफल जड़ी बूटी एक ही है, और वो जड़ी बूटी है क्वालिटी। शिक्षा की क्वालिटी, स्किल की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इवन पैकेजिंग की क्वालिटी, दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। आज दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा, बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही विकसित भारत की शक्ति है, और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है, यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं जहां वो साकार होते हैं। एक सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खोलता है, और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं, और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही

0: मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम ये मेरी भी प्रेरणा है। और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता नहीं है। एक जीतता है तो दूसरा सीखता है, हारता कोई नहीं है। युवा मन की एक ही कसौटी है, जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदी हो, जो सपनों को सिद्ध करे और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विकसित भारत 2047, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होकर रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है। और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: What a fantastic speech by our Prime Minister.
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री।
1: Full stress on the youth of the country. And he says that they are the future pillars of our country and the country rests on their shoulders. That's why he has been putting so much of stress on the youth. And he said that their dreams is what my oath is. My oath is the fulfillment of your dreams.
3: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति एवं प्रेरक उद्बोधन ने देश के युवाओं में नए उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया है। और ये जो राशि आज हस्तांतरित हुई है, ये राशि युवाओं के परिश्रम का सम्मान है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि आप सपने देखिए, उन्हें साकार करने का संकल्प हम लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना एंड्रू? और माननीय प्रधानमंत्री अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ विज्ञान भवन से प्रस्थान कर रहे हैं। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी टीम इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वीके तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्र, बाबूलाल मीना और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
4: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे हिंदी में प्रीति मोहन और अंग्रेजी में डी एंड्रयू।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: राम राम।
0: सरकार का निरंतर प्रयास रहता है कि गांव की तरक्की हो, क्योंकि हमारे जो देश है गांव का देश है, किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है। और सरकार ने लगातार अपने कार्यों से, अपनी योजनाओं से

0: इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की है, इसलिए हम आपके लिए खास बातचीत लेकर आए हैं जिसका विषय है वर्तमान सरकार के 12 साल बेमिसाल पक्के मकान और संपूर्ण स्वच्छता। इसमें बातचीत कर रहे हैं एसपी सिंह से तुषार पराशर। तो सुनते हैं ये बातचीत।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, किसी भी राष्ट्र की प्रगति का असली रास्ता उसके गांवों की गलियों से होकर गुजरता है। वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल के गौरवमयी 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। बीते एक दशक से अधिक का यह समय ग्रामीण भारत के बुनियादी ढांचे में एक बड़े संरचनात्मक बदलाव का रहा है, जहां गांव के आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति को मजबूत बुनियादी ढांचा और आत्मनिर्भरता दी जा रही है। इसी महापरिवर्तन के अलग अलग पहलुओं पर विचार करने के लिए या इन पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री एसपी सिंह जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: चर्चा की शुरुआत हम सबसे पहले बुनियादी जरूरत से करते हैं, जो है सिर पर एक पक्की छत। तो पिछले 12 वर्षों में ग्रामीण आवास के क्षेत्र में एक बहुत ही लंबा सफर तय हुआ है। आपके नजरिए से इस यात्रा में बड़ा और दूरगामी बदलाव क्या रहा है?
2: देखिए, इस देश में सबसे बड़ी वजह थी गरीबी। गरीबी की वजह क्या थी यह कोई नहीं समझ पाता था। गरीबी की जो ढेर सारी परिभाषा दी जाती थी वो आम आदमी की समझ से परे थी। ये सरकार जब सत्ता में आई तो सबसे पहले काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उन्होंने देखा कि गरीबी की बड़ी वजह क्या है। मूलभूत जरूरतें जिसकी न पूरी होती हो वो गरीब है, सबसे पहली बात। और इसका बेस ऑलरेडी पहले से तैयार था, लेकिन उस पर किसी की नजर नहीं जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री की नजर वहां गई। वो थी 2013 में इस देश में एक कराया गया था, आर्थिक सामाजिक जनगणना कराई गई थी पूरे देश की। उससे ये पता चल गया था कि किसके पास घर है, किसके पास मकान है, किसके पास गाड़ी है, किसके पास घोड़ा है, किसको खाने को मिलता है, किसको खाने को नहीं मिलता, किसके पास जमीन है, किसके पास जमीन नहीं है। तो ये सब कंप्लीट ऑलरेडी डेटा सरकार के पास था, लेकिन इस डेटा का जिस तरह से उपयोग इस सरकार ने किया उसी का नतीजा है कि उन्होंने देखा कि गरीबी की बड़ी वजह क्या है। जिसके पास छत न हो, जिसके पास घर ही न हो, खाने को रोटी न हो, पहनने को कपड़ा न हो, यानी रोटी कपड़ा मकान बेसिक चीज होती है, तो कपड़ा तो ऑलरेडी सबके पास उपलब्धता हमारे देश में बहुत पहले हो गई थी। लेकिन दो चीजें महत्वपूर्ण थी। यह देश हंगर इंडेक्स में बहुत पीछे जा रहा था, लगा रहा भुखमरी है, ढेर सारी खबरें आया करती थी। जब से यह सरकार आई है देश में कहीं आपने नहीं सुना होगा कि किसी कोई भूख से पीड़ित है। तो उसके लिए हर घर को नहीं, हर व्यक्ति को अनाज मिलता है। दूसरा, हर व्यक्ति को, चाहे वो न्यूनतम आय वर्ग का हो, चाहे वो मध्यम आय वर्ग का हो, जिसके पास पक्की छत न हो, घर का मतलब था प्रधानमंत्री के झोपड़पट्टी या स्लम से नहीं था, उनका था कि मकान हो लेकिन छत पक्की हो, जो गरीबों के लिए एक सपना के अलावा और कुछ नहीं था। प्रधानमंत्री ने इस बात को बड़े ही बारीकी से धारा और इसके लिए उन्होंने एक योजना चलाई, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके पहले भी योजनाएं चलती थी आवासीय योजना गरीबों के लिए, लेकिन उसका कोई मकसद नहीं था। उसको यह समझ में नहीं आ रहा था कि मकान मिलना किसको, देना किसको है। इस सरकार ने यह तय किया कि मकान देना क्या, एक मानक तैयार किया, जो गणना हमारे पास ऑलरेडी डेटा था उसी डेटा को उठाया और कहा कि जिनके पास पक्की छत नहीं है, और हर छत को हमारे प्रधानमंत्री ने कहा सबको घर देना है और पक्का घर देना है। तो ऐसे लोगों को कहा कि हर ग्राम सभा क्षेत्र पर, मतलब हर गांव के लेवल से मुखिया ही बता दे कि कितने लोगों के पास घर नहीं है, और उस डेटा से जब मिलाया गया तो वह 100% सही निकलता था। इसमें कोई गड़बड़ी थी ही नहीं। जिसके पास मकान नहीं, गांव के लोग कहेंगे इनके पास पक्का मकान नहीं।
1: डेटा ड्रिवन एक चेंज लाए
2: जी, इसलिए इसमें घपले की भी गुंजाइश बहुत ही न्यूनतम होगी। प्रधानमंत्री ने इसको बहुत बेहतर तरीके से हर स्टेट में लागू किया और कहा कि इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। और सबसे पहला इसका काम इन्होंने किया कि 2014-15 में जब इस योजना को ले आए तो इन्होंने कहा कि गांव के साथ साथ शहर के लोगों को भी पक्का मकान मिलना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में जो स्लम में रहते हैं, जो झोपड़पट्टियां हैं, आपने सुना होगा शहरी क्षेत्र के बाहरी हिस्सों में झोपड़पट्टियों का पूरा जाल स्लम सा बिछा रहता है। प्रधानमंत्री की पूरी इच्छा थी कि एक भी स्लम नहीं होना चाहिए, हर एक को पक्का मकान हो, चाहे गांव का हो चाहे शहर का व्यक्ति हो। इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री आवासीय योजना का शुभारंभ किया।
1: शहरी
2: और ग्रामीण दोनों एक साथ किया, क्योंकि शहरी आवासीय जो आवास योजना है, जो रूरल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है ये काम करती है, और जो ग्रामीण विकास का काम करती है वो दे दिया उन्होंने रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को। दोनों मंत्रालय अपने लेवल पे काम कर रहे थे और उसका नतीजा यह हुआ कि सरकार की ओर से ऐसे परिवारों को पक्का मकान देने की बात तो थी। प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, पहले क्या था कि पैसा देकर के एक मकान बना दिया जाता था, तो उसमें गड़बड़ी पाने की, मान लीजिए 1.5 लाख का मकान है या 1,20,000 रुपया सरकार की ओर से जा रहा है मकान बनाना है, तो जो जैसी उसकी जरूरत थी वैसा मकान उसको नहीं मिल पाता था। ऐसे में उसकी

0: तकलीफ होती थी कि ये मकान हमारे सरकारी मकान किसी काम करें, हम तो नहीं लेते इसमें, वो बेकार होता था। प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, ऐसे जितने भी लाभार्थी होंगे उनके लिए ऐसे को चिन्हित करो और उससे पूछो कि हम सरकार की ओर से जो आपको 1,20,000 रुपए की सहायता मिलनी है हम आपके खाते में डाल देंगे, आप अपनी जरूरत के हिसाब से आप और भी अपना पैसा डाल के और भी बेहतर मकान बना सकते हैं
1: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से।
0: एक तो पहले उसके सीधे उसके खाते में पैसा गया, नंबर एक पैसा वो निकालेगा जो लाभार्थी है जिसका मकान बनना है, और उसकी अपनी मकान की जरूरतें कैसी हैं, उसे कितने कमरे बनाने हैं, मकान उसके कमरे की साइज क्या होगी। मान लीजिए उतने पैसे में उतनी बड़ी छत या उतना बड़ा मकान नहीं बनता, तो वो अपने पैसा, क्योंकि हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ अपनी बचत होती है अपने मकान के लिए, आदमी जुटा के रखता है, तो वो सोचा कि क्यों ना मैं कुछ पैसे लगा दूं, कुछ उधार लेके लगा दूं, तो वो अपने जरूरत के हिसाब से उसके अनुरूप वो मकान बनाने की छूट दी गई। इसका फायदा लोगों को बहुत बेहतर तरीके से मिला। दूसरा काम किया कि जैसे 1,20,000 मैदानी क्षेत्र के लोगों को मदद दी जाती थी, इसी तरह से दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले या पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को, जो माउंटेनरी के पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, ऐसे लोगों को कि भाई इनका महंगा पड़ता है कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट कास्ट बढ़ जाती है, तो उनका मदद बढ़ा के 1,30,000 रुपए कर दी गई। इसके साथ इन लोगों को यह भी दिया गया कि अगर मान लीजिए आपके घर में शौचालय बनाना है, तो जो शौचालय स्वच्छता का जो पार्ट एक होता है ना, शौचालय बनाने की एक योजना भी उसी के साथ साथ चल रही थी, तो वो वहां पे 10-12,000 रुपए की जो एक्स्ट्रा मिलता था कि आप उसके लिए शौचालय बना लीजिए। भला बताइए, जिसके घर में मकान नहीं होगा वो शौचालय लेके क्या करेगा? तो पहले मकान बनाइए और उसके साथ शौचालय आपको उसी में इनबिल्ट मिल जाएगा, या घर के बाहर आप बना सकते हैं, पैसा उसका मिल जाता था। और अगर मनरेगा के थ्रू जो जी राम जी एक योजना बन गई है, उसके तहत अगर वह व्यक्ति चाहता है कि हम अपनी मजदूरी भी अपने ही काम में कर लें, तो उसके घर के 2-3 लोग अगर मजदूरी कर लेते हैं, तो पैसा भी उनके अकाउंट में इस बात के लिए डाल दिया जाता था कि कहीं से लेबर नहीं ली जाएगी, वो अपना काम भी अपने ही कर लेंगे, तो उनका मकान बन जाया करता था।
1: तो इसमें हम ये मान सकते हैं कि जो बिचौलिए हैं उनका रोल बिल्कुल खत्म कर दिया गया, और इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि अब सरकार सिर्फ चार दीवारें ही नहीं दे रही है, बल्कि एक पूरा लाइफस्टाइल जिसमें बिजली पानी शौचालय सब कुछ इंक्लूड होगा, वो सारी सुविधाएं सरकार दे रही है। तो सर इस कन्वर्जेंस के पीछे की क्या सोच आपको दिखाई दे रही है?
0: यही था ना, प्रधानमंत्री ने कहा ना कि भाई सिर्फ मकान से बात नहीं बनेगी, मकान के साथ शौचालय भी होना चाहिए, पीने का पानी भी होना चाहिए, अगर मान लीजिए नल काफी सप्लाई नहीं है तो हैंडपंप होना चाहिए। लेकिन अब हैंडपंप की जरूरत नहीं है क्योंकि गांव गांव और हर घर तक पेयजल योजना, जो जल जीवन मिशन चल रहा है, उसके चलते पानी का नल घर तक पहुंचने लगा है अब लोगों तक। और ये एक सोच ये थी उनके घर में बिजली का बल्ब जलना चाहिए, यानी कनेक्शन भी मिलना चाहिए, उनके लिए उज्ज्वला योजना के तहत उनको गैस भी मिलनी चाहिए ताकि उनका खाना भी वहीं बन सके। अब देखिए शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें, एक छोटी सी बात बताएं, तो यहां पर जो आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस वाले थे, उन लोगों को 9,00,000 रुपए तक वार्षिक जो आय जिनकी होती थी, उन्हें इसके श्रेणी में रखा कि अगर आप शहर में मकान बनाना, या क्योंकि वहां पर शहर में जमीन बहुत महंगी होती है, तो वहां पर अगर मान लीजिए छोटे मकान बनाना है और किसी सोसाइटी में छोटा मकान बनाने में आप कर्जा लेते हो, लोन लेते हो बैंक से, तो 9,00,000 रुपए तक अगर आपकी वह है तो उसमें आपको अलग तरह का ब्याज सब्सिडी दी जाती थी, यानी बहुत मामूली रूप से ब्याज लगता था, यानी सरकार उसका वहन करती थी। और जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में वही योजना जो मानक मैंने बताया ना आपको, सामाजिक आर्थिक जनगणना जो हुई,
1: सोशियो एंड इकोनॉमिक
0: का सेंसस, जी, तो इसका बहुत फायदा लोगों को यह मिला कि लोग अपने हिसाब से अपने तरीके का मकान बना के आज रह रहे हैं। यही वजह है कि आज पूरे देश में प्रधानमंत्री के इस 12 साल के अगर उपलब्धियों के रूप में कहें तो इस देश के 4 करोड़ से अधिक लोग पक्के मकान में अपने घर में रहने लगे हैं, जो सोचा भी नहीं होगा सपने में, क्योंकि तमाम तरीके के आप जब गांव में जाइए, मैं तो जर्नलिस्ट होने के नाते तमाम गांव के में लोगों के बीच जाता हूं, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि पक्का मकान में रह लेंगे, वो उनको पक्का मकान इतना सुंदर बनाकर सरकार ने दिया कि आज उनको लगता है कि हम भी उनके भी जीवन, उनका भी सपना सही साबित हुआ है।
1: ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को दर्शाता है। लेकिन पहले योजनाओं में असली हकदार तक घर पहुंचना एक बड़ी चुनौती थी, आज तकनीक के आने से इस व्यवस्था में आपको क्या लगता है कि क्या सुधार आया है 2014 के बाद?
0: देखिए सबसे बड़ी बात तो थी कि पहले पैसा आता था, पहले सेंटर से पैसा जाता था, स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से जाता था, एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्ट्रिक्ट से फिर जाता था ब्लॉक लेवल पे। अब ब्लॉक के बाद फिर ब्लॉक के कर्मचारी उनके यहाँ संपर्क करते थे, फिर उनके यहाँ पैसा जाता था। तो पैसा क्षरण होता था। एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि 100 पैसे भेजते हैं यानी 1 रुपया भेजते हैं तो उसमें से 15 पैसा या 14 पैसा ही लोगों तक पहुंचता है, बाकी बीच में चोरी यानी लीकेज हो जाता है। इस प्रधानमंत्री ने यह तय किया कि 100 पैसा अगर यहां से जाएगा तो 100 पैसा लाभार्थी के अकाउंट में सीधे खाते में जाएगा, वो चाहे तो किसी को दे न चाहे तो कोई ले नहीं सकता उसका पैसा। इससे क्या हुआ कि बिचौलियों का काम, बेईमानी का काम, बीच में घपला घोटाला करने वाले अधिकारी हों, कर्मचारी हों या दलाल हों, सबका रास्ता प्रधानमंत्री ने रोक दिया। और डिजिटल जो हमारी जो टेक्नोलॉजी आई है, जो डिजिटल क्रांति हुई इस देश में, उसका भी श्रेय जाता है इस सरकार को। और उसका कैसे उपयोग करके आम आदमी को कैसे फायदा पहुंचाया जा सकता है, इससे बड़ा कोई नमूना नहीं हो सकता कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं, प्लान्स हैं, योजनाओं का धेले भर का पैसा भी होगा तो लाभार्थी के खाते में सीधे पहुंचता है।
1: तो सर, एक इसमें एक विशेष बात जो हमने देखी है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में, कि जो घरों का मालिकाना हक है वो ग्रामीण महिलाओं को दिया गया है।
0: हाँ,
1: तो गांव के इस सामाजिक ढांचे और उनके खुद के आत्मविश्वास में आपको क्या लग रहा है कि इससे क्या बदलाव आएगा?
0: मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री जी की नजर उस वर्ग पर रही जो सबसे शोषित या ऐसे घरों में महिलाएं सशक्त नहीं हुआ करती थी। उनके हाथ में क्या क्या दिया उन्होंने, मालिकाना हक दिया, उनके हाथ में पैसा दिया, उन्हें जो धुएं और धूल में खाना बनाने के लिए बाध्य होती थी उन्हें स्वच्छता वाली गैस दिया ताकि वो खाना बना सकें, उनके स्वास्थ्य के लिए ध्यान दिया, बच्चियों को पढ़ने के लिए ध्यान दिया, यानी बच्ची से लेके बुजुर्ग महिला तक। अब आप समझिए कि मनरेगा में काम करने वाली महिला के हाथ में अगर 500 रुपये या 300 रुपये या 800 रुपये पर डे के हिसाब से अगर आता है, इस टू स्टेट वेरी करता है, इसलिए मैंने ये अलग अलग मजदूरी का मेहनताना बताया, तो जो पैसा उसके खाते में आता है तो वो सशक्त और मजबूत होती है और ये घर के किसी भी काम में फैसला लेने या निर्णय लेने में उसकी सहभागिता, उसका कंट्रीब्यूशन होता है। परिवार में सिर्फ पुरुषों की नहीं चलती, उसे अब हाथ पसार कर किसी हाथ आगे बढ़ाकर किसी से पैसे मांगने की नहीं जरूरत पड़ती, चाहे उसका बाप हो, चाहे उसका पति हो, चाहे उसका बेटा हो, किसी भी उम्र में हो। तो ये जो महिलाओं के को हक दिया प्रधानमंत्री ने, उसका घर कहा कि 75% से अधिक ऐसे आवास हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनका मालिकाना हक या तो महिलाओं को मिला हुआ है या संयुक्त रूप से महिला और पुरुष यानी पति और पत्नी दोनों के नाम मालिकाना हक है। तो प्रधानमंत्री का ये काम और इस सरकार का की जो सोच है, ये सिर्फ मकान देना नहीं था, लोगों को सशक्त और मजबूत बनाना था ताकि वो सोचें कि कैसे हम बेहतर जीवन वो कैसे जी सकते हैं।
1: सिंह साहब, आपने बिल्कुल वाजिब बात कही है, लेकिन अब आवास के बाद बात आती है गरिमापूर्ण और स्वस्थ जीवन की, जिससे कि हमारा स्वच्छ भारत मिशन जुड़ा हुआ है। अगर मैं बात करूं तो शौचालय बनाना एक बात है और उसका नियमित इस्तेमाल आदत में लाना दूसरी बात है। पिछले एक दशक में ग्रामीणों की मानसिकता को बदलने में आपको क्या लगता है कौन सी रणनीति सबसे कारगर रही है?
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो काम करके दिखाया जो शायद इतिहास कभी नहीं उन्हें भूलेगा। महात्मा गांधी ने पहला भाषण दिया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, और जब वहां से निकल के आए तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप इस देश में क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आजादी। तो उन्होंने कहा लेकिन आप आजादी के बजाय स्वच्छता पर ज्यादा ध्यान देते हैं, भाषण भी आपका ज्यादा होता है, तीन दोनों में प्राथमिकता किसको देंगे? तो उन्होंने कहा कि अगर सबसे पहले हमें प्राथमिकता देनी होगी तो हम स्वच्छता को देंगे। स्वच्छता के लिए बहुत काम किया गांधी जी ने, लेकिन उन्हें वो सफलता नहीं मिली जिसकी वो चाहत रखते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता संभालने के साथ ही 2 अक्टूबर 2014 को जब अनाउंस करते हैं महात्मा गांधी की 145वीं जयंती होती है, उस समय उन्होंने कहा कि इस देश में स्वच्छता पहली प्राथमिकता होगी, और हर सब लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया कि एक प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात कर रहा, सफाई की बात कर रहा, झाड़ू की बात कर रहा, प्रधानमंत्री को तो बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए। मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी बात की है जो शायद आम आदमी ही नहीं, अब दुनिया के खास आदमी भी इसको महत्वपूर्ण मानने लगा है कि नरेंद्र मोदी ने वो सोचा जो शायद ही दुनिया का कोई और प्रधानमंत्री के स्तर पर पहुंचा हुआ सामाजिक आंदोलन एक छेड़ा इस देश में जो इतना जरूरी था, जिसके मायने बहुत हैं। आप देखो, देश की गरीबी के लिए, देश के आर्थिक उन्नत के लिए, देश के सशक्त होने के लिए, देश के सोचिए महिलाओं की स्थिति क्या होती होगी। महिलाओं को जो गौरव प्रदान किया प्रधानमंत्री ने, आप बात कर रहे थे मालिकाना हक आवास का, मैं कहता हूं उससे बड़ी बात थी शौचालय की। महिलाएं शौच करने कहां जाती रही होगी, जरा सोच के देखिए आप, रूह कांप जाएगी। उन महिलाओं से पूछिए जो बुजुर्ग हो गई हैं, 50-60-70 साल की हैं, उन्होंने कभी देखा नहीं कि अपने घर में भी शौचालय हो सकता है, अपना शौचालय हो सकता है, बंद कमरे में भी शौचालय का उपयोग करेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये करके दिखा दिया कि इस देश में महज 5 साल में 2 अक्टूबर 2019 को उन्होंने कहा कि गांव के 10 करोड़ घरों में शौचालय बनकर तैयार हो गए और ये मान के चला गया कि यह एक अभियान की तरह था। उन्होंने कहा नहीं, इस मिशन मोड में करना है, देश के हर घर तक पहुंचा देना है। जिसके पास पैसे नहीं है, सरकार पैसे देगी और आपको पैसे देगी, आप चाहो तो और भी बेहतर बना सकते हो। बेसिक जितनी जरूरतें होती है सरकार ने अपनी ओर से किया और जिनके पास और पैसे थे उसे और भी अच्छा से। लेकिन उससे बड़ी बात थी जब उसका दूसरा चरण शुरू किया प्रधानमंत्री ने और ये अभियान छेड़ा कि सिर्फ शौचालय बनाने से बात नहीं बनेगी, शौचालय का 100% उपयोग करना जरूरी है।
1: तो ये जो दूसरा चरण है जो आप बता रहे हैं वो कब शुरू हुआ और
0: ये 2019 में शुरू किया, 2020 में कह सकते हैं आप, 2020 से 2025 का यह पूरा फेज था। इस फेज में यह था कि कहा गया ODF प्लस। ODF प्लस का मतलब कि ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब खुले में कोई भी शौच करने जाए ही नहीं। देश का एक भी व्यक्ति अगर खुले में शौच करता है तो यह मेरा अभियान सफल नहीं होता है। प्रधानमंत्री की यह बात लोगों तक पहुंची और लोगों के आदत में जो होती है ना, प्रवृत्ति आदत होती है, मतलब हैबिट में डाल दिया, आदत में डाल दिया। कोई भी आदमी आज गाड़ी में चलते हुए कोई भी कचरा बाहर फेंकने में 5 बार सोचता है कि कोई देख तो नहीं रहा है, और अगर आपके गाड़ी में कोई बच्चा बैठा है तो आपको खुद ही रोक देता है कि नहीं बाहर मत फेंकिए। तो ये जो दिमाग में आ गई बात, और जब यह स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुआ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, तो 2020 से लेकर 2024-25 तक जब इन्होंने कहा कि ODF प्लस किया जाएगा, यानी कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाए, हर आदमी उसका उपयोग करे, इसके अलावा जितना सफाई से कूड़ा और कचरा निकलता है, कचरे कितने तरह के कचरे निकलते हैं, कैसे उसको प्रोसेसिंग कैसे हो, कैसे कचरे को खत्म किया जाए, क्योंकि वेस्टेज को अगर आप सही ठिकाने पर नहीं लगाते हैं तो उसका बड़े गलत इम्पैक्ट होता है।
1: और ODF प्लस में ज्यादा जोर अपशिष्ट प्रबंधन पर भी रहा है, जिसे 3R रिड्यूस रिसाइकल और रीयूज पर, जिसे हम कह सकते हैं।
0: मैं यही कह रहा हूँ, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर पूरा ध्यान दिया गया। प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने की बात थी कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम किया जाए या इसे खत्म किया जाए या रिसाइकलिंग को बढ़ाया दिया जाए, कहीं बाहर प्लास्टिक न दिखाई दे, कहीं ऐसा सूखा कचरा और गीला कचरा का आपने देखा होगा हर जगह, आपने शहर में से लेके गांव देहात तक देखा होगा कि हर जगह डिब्बे लगे होते हैं सूखा कचरा और गीला कचरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर ऐसा कचरा जो तुरंत सड़ सकता है, जो जैविक खाद के रूप में उपयोग हो सकता है, वो हमारे लिए बहुत ऑर्गेनिक खाद बन जाएगी और हमारी फसलों के लिए काम आएगा। लेकिन जो दूसरा वाला है उसका उपयोग भी कहीं हो सकता है, वो हमें ईंट और पत्थर बनाने के काम में आ जाता है, ईंट बनाते हैं ना, ब्रिक बनाकर के मकान बनाते हैं, वो कचरे के रूप में उपयोग होता है। हमारे देखिए ना, दिल्ली के आसपास अगर आप बाहर के क्षेत्रों में जाएं तो कचरे का पहाड़ दिखता है। अब इस कचरे के पहाड़ को एक दिन में तो नहीं बना होगा, एक लंबा समय लगा होगा इस पहाड़ को बनाने में, बनने में, कचरा डालते गए, लेकिन वो खत्म कैसे होगा इस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, किसी ने नहीं सोचा। लेकिन इस सरकार ने स्मार्ट सिटी का जो एक कॉन्सेप्ट लेके आए और कहा कि सफाई के साथ साथ कैसे स्मार्ट सिटी को कैसे कचरा निकाला जाएगा, उसका कैसे निपटान किया जाएगा, कैसे उसका विभाजित किया जाएगा और उसके निपटान के वैज्ञानिक तरीके बताए गए। और हमें लगता है देश के करीब करीब 1 दर्जन ऐसे शहर हैं जहां पे आप कह सकते हो कि वहां पर कचरा मुक्त शहर है, वहां पे कोई कचरा बाहर कहीं दिखाई ही नहीं पड़ता। भला वहां का कचरा कहां चला गया? क्योंकि उसकी वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेसिंग होती है,
1: उसको रीयूज किया गया।
0: जी, वो वेस्टेज जो है आज वो वेस्ट द बेस्ट हो गया है, वो इतनी बढ़िया चीज बनने लगी, उससे पैसे मिलने लगे, रोजगार में होने लगा लोग, और उससे सरकारें वहां की जो स्थानीय निकाय हैं उससे वो पैसा कमा रहे हैं और लोग जो वहां काम करते हैं वो बेहतर तरीके से अच्छी जिंदगी जी रहे हैं जो उसकी सफाई करते हैं। शहर साफ, लोगों को रोजगार, और वो शहर पूरे देश में माना जाता है कि सबसे सुंदर और सबसे साफ शहर है, जिनमें आप 2-4 शहरों के नाम भी ले सकते हैं। हमें लगता है पिछले 5-4 साल से इंदौर का नाम आ रहा है, भुवनेश्वर का नाम आ रहा है, आपका नवी मुंबई का नाम आ रहा है, और नई दिल्ली का एक पार्ट भी आता है उसमें आ रहा है, लेकिन पूरी दिल्ली अभी इसमें शुमार नहीं हो पाई है। जी,
1: वैसे सिंह साहब, स्वच्छता का जो संबंध है सीधा, वो हमारी सेहत से भी है। इस पूरे अभियान ने ग्रामीण परिवारों के स्वास्थ्य और उनके जेब के खर्चों को किस तरह से प्रभावित किया है?
0: देखिए, गंदगी और गंदा पानी
1: जी,
0: दो ऐसी चीजें हैं जो किसी भी देश की इकोनॉमी को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। कुपोषण बीमारी की जड़ है ये, गरीबी की जड़ है ये। अगर कोई घर में बीमार है तो हमें लगता है बीमारी से बड़ी कोई विपत्ति नहीं है, और 80% बीमारियां गंदगी और गंदे पानी से होती है। तो अगर ये दो चीजों पर ध्यान दे दें तो प्रधानमंत्री का ध्यान सबसे ज्यादा इस पर है, पेयजल पर, जो नल से जल पहुंचाना, हर घर तक पहुंचाने की
1: एक जल जीवन मिशन,
0: जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचाना, यानी स्वच्छ और शुद्ध पानी पहुंचाना पहला उद्देश्य है। दूसरा है हर घर हर गांव हर शहर साफ सुथरा होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि अगर जल जनित बीमारियां बढ़ती हैं, खासतौर से इस देश में देखा होगा बारिश का मौसम आता है, तो जो गंदगी बाहर होती है वो बाहर सड़ रही होती है, और आपके हाथ पांव से या जूते के रास्ते या किसी के रास्ते आपके घर तक अगर वो पहुंच गई तो बीमारी घर तक पहुंच जाती है। पहली जो बीमारी के फैलने को रोकने के लिए यही हाल है कि हैजा, टाइफाइड, डायरिया, हेपेटाइटिस, पेचिस, खुले में शौच से कच, इतनी तरह की बीमारियां हैं जल जनित बीमारियां, और ये सब गंदगी से होती हैं, गंदा पानी से कह लीजिए या कचरा से होती है या डेफिकेशन से होती है। जो डेफिकेट जो आप मल त्यागते हैं लोग, अगर बाहर मल रहेगा और बारिश होगी तो वो बह के कहीं ना कहीं किनारे लगेगा, कहीं ना कहीं हाथ पांव से होकर आपके घर तक, आपके रास्ते तक, मतलब लोगों के तक पहुंचेगा, और अगर ये पहुंचेगा तो इतनी तरह के रोग होते हैं। अब भला क्यों नहीं हैजा होता है इस देश में, प्लेग नहीं होता है इस देश में? इसलिए नहीं होता क्योंकि सफाई पर अब ध्यान दिया जा रहा है, स्वच्छता पर ध्यान दिया जा रहा है, और शुद्ध पानी घर तक पहुंचाने के लिए यह सरकार प्रयास कर रही है, और जहां जहां जल भराव होते थे गांवों में, क्षेत्रों में, उनकी सफाई कैसे हो और उसको कैसे भरा जाए, और कैसे उसको जो जल भराव वाले एरिया थे, जोहड़ जिसको कहते हैं, पानी जिसमें सड़ जाया करता था, उसको पुनरुद्धार करके उसको एक तालाब बना दिया जाए ताकि उसमें पानी रुके और उसका व्यावसायिक उपयोग हो सके, उसमें मछली पालन हो सकता है, उसमें बत्तख पालन हो सकता है, कुछ भी किसी भी तरह का उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। इस सरकार ने लोगों की नब्ज को पकड़ा और वहां की जो मुश्किलात थी बेसिक लेवल पे, जमीनी लेवल पे, उसको समझा, उसके अध्ययन को, और ऐसा नहीं, इस देश में ढेर सारे रिसर्च, ढेर सारे अध्ययन

0: वैज्ञानिक प्रबंधन कैसे हो इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, उसके लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति को मालूम है कि गांव का कचरा कैसे प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि गांव में का कचरा जो होता है मैक्सिमम कचरा जैविक होता है, ऑर्गेनिक होता है। उसको सड़ाने का सिर्फ पानी और मिट्टी डाल के उसको ढक दिया जाए तो अपने आप खाद तैयार हो जाता है और जैविक खाद के रूप में बहुत बेहतर उपज देता है। तो किसान इस बात को जानता है, सिर्फ उसे जागरूक करने की जरूरत थी ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में इसकी जो वैज्ञानिक तरीके से सफाई हो रही है या कचरा सफाई हो रही है या कचरे का निपटान हो रहा है, तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो बड़ी समस्या थी इस देश की उससे हम मुक्त होंगे।
1: तो सिंह साहब, सरकार ने वर्ष 2047 तक, यानी जो देश की आज़ादी के शताब्दी वर्ष तक, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। तो अंत में मैं चलते चलते आपसे बस यही पूछूंगा कि पिछले 12 वर्षों में ग्रामीण आवास और ये स्वच्छता के क्षेत्र में जो ये हमारी बुनियादी नींव रखी गई है, वह 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाने जा रही है? आपके विजन में 2047 का हमारा आत्मनिर्भर और सशक्त गांव कैसा दिखाई देता है?
0: 2047 तक आते आते यह देश, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों की, मैं इस बात के लिए कह सकता हूँ कि जो आधार प्रधानमंत्री या इस सरकार ने रखा है, इस आधार पर 2047 का विकसित भारत बुलंद होगा, बेहतर होगा, स्वस्थ होगा। और जो आज की पीढ़ी है, जो 47 तक जाकर जवान होगी, वो पीढ़ी कम से कम इस बात को भूल जाएगी, उसे इतिहास लगेगा कि लोग बाहर भी शौच करने जाया करते थे। क्योंकि दुनिया के विकसित देशों में के जो युवा हैं वो जानता ही नहीं कि बाहर भी लोग शौच करने जाते होंगे। तो हमारे देश का युवा भी इतिहास में कभी पढ़ेगा कि हमारे देश में भी लोग बाहर शौच करने जाया करते थे।
1: तो सिंह साहब, आज आपने बहुत ही सरल, व्यावहारिक और स्पष्ट तरीके से हमारे श्रोताओं को समझाया कि कैसे पिछले 12 वर्षों में देश का ग्रामीण परिदृश्य बदला है। और जब नीतियां सशक्त होती हैं, नीयत साफ होती है, तो गांवों का आत्मविश्वास अपने आप जाग उठता है। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।
2: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण बातचीत। विषय था वर्तमान सरकार के 12 साल बेमिसाल पक्के मकान और संपूर्ण स्वच्छता। जानकारी दे रहे थे वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह और इनसे बातचीत कर रहे थे तुषार पराशर।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
2: तो इस बेहतरीन संदेश के साथ ही आज का कार्यक्रम ग्राम संसार हम यहीं समाप्त करते हैं। सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम, राम।
4: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। यह वितरण योजना के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो

0: कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता के विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देशवासियों के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारियों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में देश का रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए था। पिछले वित्तीय वर्ष में यह बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले रक्षा निर्यात केवल 1,000 करोड़ रुपए का था, अब यह बढ़कर लगभग 40,000 करोड़ रुपए हो गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की सोच में बड़ा बदलाव आया है। देश की सोच विश्वास, विकास और जन कल्याण द्वारा परिभाषित होकर बेहतर शासन मॉडल की ओर अग्रसर हो रही है। गुजरात के गांधीनगर में उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों तक महत्वपूर्ण संसाधनों को सीधे पहुंचाने के कार्यों को पूरा किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के पहले टेलीग्राम को आंशिक रूप से प्रतिबंधित करने के सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के पास रोक लगाने के पर्याप्त कारण थे और कानून की प्रक्रिया का ठीक से पालन किया गया है। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल में हिमाचल के तराई क्षेत्रों, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकार और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में आज बिजली चमकने और ओले पड़ने की संभावना है। अश्मिता चालिया मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में आज अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। सेमीफाइनल में कल उनका सामना कोरिया की पार्क गा यून से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 7:05 हो चुके हैं और ये वक्त है कार्यक्रम कृषि जगत का।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम राम।
0: विनस बहन, देखिए, अगर हम मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या और अपने खान पान में बदलाव नहीं करते हैं तो इसके कुछ दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। और इस गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक की बहुत सारी ऐसी समाचार हम सुनते हैं, जैसे बोलचाल की भाषा में हम लू लगना भी कहते हैं। ये बहुत ही घातक हो सकती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम गर्मी के मौसम में धूप में कम से कम निकलें, और अगर निकलते हैं तो पानी साथ रखें और अपने सिर को सूती कपड़े से कवर करें। इसके साथ साथ कपड़े भी ढीले ढाले पहनें, सूती कपड़े पहनें जिसमें से हवा आर पार जा सके। और खान पान का तो हमें इस मौसम में खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये हीट स्ट्रोक की जो हम बात कर रहे हैं वो उसी दौरान आता है जब हम धूप में अधिक होते हैं या हमारी जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। इसमें चक्कर आना, उल्टी आना, कई बार तो बेहोशी जैसी समस्याएं भी सामने आ जाती हैं।
1: बिल्कुल, हीट स्ट्रोक वैसे तो ये शब्द से बहुत सारे लोग परिचित हैं, पर क्योंकि जो आधुनिक लोग हैं मतलब ज़्यादा अलग इस तरह से बोलते हैं, लेकिन जो हमारे देसी भाषा में बोले तो लू है। तो जैसी गर्मी आती है तो लू, और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उससे शरीर का तापमान हमारे बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पानी की प्यास ज़्यादा लगती है और उसकी वजह से आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो आपका बॉडी का जो लिक्विड है वो निकल जाता है, और इससे क्या होता है कि आपको चक्कर आता है, बुखार, ये कई तरीके की बीमारियों का आपको सामना करना पड़ता है। और ये समस्या ज़्यादातर बुज़ुर्गों और बच्चों में ज़्यादा दिखाई पड़ती है। तो इसलिए ये देखा जाता है कि जितने भी घर के बुज़ुर्ग और बच्चे तो धूप में या मतलब दोपहर की जो बहुत तेज़ 12-1 बजे के बाद होती है उसमें वो कम निकलें, और वो जब निकलते हैं तो कुछ ठंडा पानी पी करके या कुछ अपना लिक्विड फॉर्म लेके अपने पूरी तैयारी के साथ में या कुछ कपड़ा सर पे रख के ढक कर ऐसे जाएं, अगर बहुत ज़रूरी हो। नहीं तो जितना हो सके लू से बचें, घर में रहें और आप सावधानियों का से बरतेंगे तो आप इससे बच सकते हैं।
0: बिल्कुल, और ताज़ी सब्जी और फलों को अपने खान पान में शामिल कीजिए, क्योंकि सब्जियों में और फलों में फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है जो कि हमारे पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है और हमारे शरीर को डिहाइड्रेट भी करता है। तो ये तो बात रही हमारे स्वास्थ्य की, और अब करवाते हैं अपने श्रोताओं का मनोरंजन और सुनवाते हैं ब्रह्मपाल नागर की आवाज़ में ये किसान गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे ब्रह्मपाल नागर की आवाज़ में ये किसान गीत। और सचमुच हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे अन्नदाता हैं, और वो दिन रात मेहनत करते हैं, तभी हम मौसम के अनुसार अच्छे अच्छे फल सब्जियां और अनाज का सेवन कर पाते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी हम अन्न उगा रहे हैं उसका भंडारण भी सही तरीके से हो, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए एक बातचीत हम आपको सुनवाते हैं जिसका विषय है CWC द्वारा स्मार्ट वेयर हाउस सिस्टम। इसमें बातचीत कर रहे हैं AM राव, और इनसे बातचीत कर रही है मंजीत कौर।
1: समय मौजूद हैं AM राव, जो कि ग्रुप जनरल मैनेजर हैं MIS, जो कि आज स्मार्ट वेयर हाउस का जो प्रोग्राम यहाँ पर भारत मंडपम में करवाया गया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
2: एक तो मैं मीडिया पर्सन का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो प्रोग्राम में आए और उन्होंने इसका कवरेज किया है, और ये भारत भर में और विश्व भर में सबसे बड़ा स्मार्ट वेयर हाउसिंग का इम्प्लीमेंटेशन है। और जैसे आपको पता है कि हमारा जो फूड ग्रेन और फूड सिक्योरिटी जो सिस्टम है, ये भी दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, और इस नेटवर्क को और एफिशिएंट बनाने के लिए पहले भी कई कदम लिए गए थे, IT में इंटरवेंशंस हुए थे, और अभी जो लेटेस्ट IT इंटरवेंशन हुआ उसमें डिपो दर्पण, जिसमें पूरी पारदर्शिता डिपो ऑपरेशंस में, स्टोरेज में, हैंडलिंग में आती है, और उसको एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अब स्मार्ट वेयर हाउसिंग का जो हमने प्रोजेक्ट किया है, जिसके अंदर AI और IoT सेंसर्स लगा के हमने इस सिस्टम को और बेहतर करने का प्रयास किया है, और ये भारत भर में 215 जगह CWC ने इम्प्लीमेंट किया है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है।
1: बिल्कुल सर, और ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि CWC और FCI द्वारा ये आयोजन हुआ है, तो जैसे कि अनाज का भंडारण वगैरह होगा, तो उससे कितना फ़ायदा पहुँचेगा इस टेक्नोलॉजी से?
2: जैसे कि आपको पता है कि जो स्टोरेज में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक तो वेयरहाउस का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा आपका, तो उससे जो चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव होती है। दूसरा होता है एफिशिएंसी, ऑपरेशंस की एफिशिएंसी। तो दोनों पैरामीटर्स के लिए CWC और FCI ने अंडर द गाइडेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एक स्टैंडर्डाइज 90 पैरामीटर्स बनाया हुआ है, स्टैंडर्डाइज किया गया है, जिसमें वेयरहाउस मैनेजर उसको असेस करता है और रीजनल ऑफिस उसको वेरीफाई करता है उन 90 पैरामीटर को, प्लस ऑपरेशनल एफिशिएंसी के भी 5 पैरामीटर्स हैं, जिसमें ऑक्यूपेंसी लेवल कितना है, स्टोरेज लॉसेस कितने हो रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो रही है, और आपका जो डेटर्स है, जो अमाउंट आप कस्टमर से जो आना चाहिए वो कितने दिनों में आ रहा है। तो इस प्रकार के 5 क्रिटिकल पैरामीटर से किसी वेयरहाउस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को जज किया जाता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पैरामीटर से उसको जज किया जाता है कि उस वो कितना अच्छा रख रखाव है उसमें। तो ये दोनों का कम्बिनेशन बना के एक स्टार वेयरहाउसिंग हम लोग बनाते हैं। कई वेयरहाउसेस जो है 3, 4, 5 कैटेगरी में है, तो डिपार्टमेंट का ये टारगेट है कि जितने भी वेयरहाउसेस है वो आने वाले सालों में 4 से 5 कैटेगरी में सब आ जाए। तो अगर 4 से 5 कैटेगरी में आ जाएंगे तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी अच्छी होगी, और इसका रिजल्ट्स ये होगा कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है और आपका जो टर्नओवर है वो कई गुना बढ़ जाएगा इससे। और हमने पिछले सालों में देखा भी है कि प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बड़ी है CWC की, 30% से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, टर्नओवर भी 30% के आसपास बढ़ा है, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में और भी कई पैरामीटर है, पारदर्शिता लाना, डिजिटाइजेशन होना, मैन पावर का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता, मतलब प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयज़ की बढ़ना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो सबसे केंद्र बिंदु है इसका, कि कस्टमर को सेटिस्फाई हम लोग कर पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट्स है इन इनिशिएटिव्स का।
1: और कितना फ़ायदा पहुंचेगा इस स्मार्ट वेयर हाउस सिस्टम का?
2: ये अभी हमने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, तो आने वाले सालों में हमें इसका पूरा की पूरा लाभ मिलेगा, किसानों को लाभ मिलेगा, हमारे डिपॉजिटर्स को लाभ मिलेगा, एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट होगा, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी इम्पैक्ट होगा। जैसे मैंने बताया कि पिछले साल के लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल हमारा जो टर्नओवर और प्रॉफिट है वो लगभग 30 8% बढ़ा हुआ है। तो जब स्मार्ट वेयरहाउसिंग फुली ऑपरेशनल में आ जाएगा तो आप देखिए इसका कितना बढ़ेगा। तो ये आने वाले दिनों में हम इसका आकलन करेंगे और आपको डेफिनेटली बताएंगे इसके बारे में।
1: क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
2: संदेश ये है कि क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है, तो हम ये चाहते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जितने वेयरहाउसेस है या पब्लिक वेयरहाउसेस है या प्राइवेट वेयरहाउसेस भी है, वो भी इन तकनीकों को यूज़ करें, डिको दर्पण को यूज़ करें, स्मार्ट वेयरहाउसिंग की टेक्निक को यूज़ करें, और तो ही देश में बट विदेश में भी, जैसे कई विदेश है, अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई और भी कई कंट्रीज़ हैं जहां पर फूड ग्रेन का मैनेजमेंट होता है, वहां पर भी अगर CWC अपना इम्प्लीमेंटेशन करे तो दुनिया भर के लोगों को जो पुअर है, नीडी है, उनको इसका लाभ मिले।
1: आकाशवाणी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
3: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये बातचीत और विषय था CWC द्वारा स्मार्ट वेयर हाउस सिस्टम, और इसकी जानकारी दे रहे थे श्री AM राव, ग्रुप मैनेजर MIS से। मंजीत कौर इनसे बातचीत कर रही थी।
0: और देखिए, वेयर हाउस केंद्रीय भंडारण निगम का ये मुख्य कार्य है कि कृषि उत्पादों को, उर्वरकों को और अन्य वस्तुओं को वैज्ञानिक तरीके से भंडारित करें, जिससे कि जो भंडारित किया गया जो सामान है उसका अच्छी तरह से रख रखाव हो सके और उचित समय पे उसकी बिक्री से हमारे किसान भाई लाभान्वित हो सके। इसलिए वेयर हाउस के कामकाज का उचित ब्यौरा रखा जाता है, जिससे कि वेयर हाउस का उचित लाभ सबको मिल सके। और अब आपका कराते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं पहले ये संदेश।
4: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़

44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से किसानों की आय दुगने करने पर जोर दिया जाता है। और अगर कृषि की बात करें तो सिंचाई का जो काम है उसके बिना कृषि में उचित लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन हम जानते हैं कि जल की जो मात्रा है उसका सही तरीके से उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वो व्यर्थ भी ना हो और अधिक से अधिक खेतों तक पानी पहुँचे, फसलों तक पानी पहुँचे और अच्छा उत्पाद हमारे किसान भाइयों को मिल सके। इसलिए जल संरक्षण के लिए सरकार निरंतर योजनाएं बनाती रहती है। ऐसी एक योजना है अटल भूजल योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य भी यही है कि जल का संरक्षण किया जाए, वर्षा जल का संरक्षण किया जाए और सिंचाई के भी, जैसे कि हम कहते हैं टपक सिंचाई विधि या फव्वारा विधि, इस तरह की विधियों का हम इस्तेमाल करें, जिससे कि पानी कम इस्तेमाल हो और हमारी पैदावार भी अच्छी हो और पानी व्यर्थ में ना बहे। तो जल का सही तरीके संरक्षण और प्रबंधन ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और हमारे अगले कलाकार भी अपने गीत के माध्यम से इसी बात को बता रहे हैं। तो सुनते हैं जल संरक्षण पर आधारित ये रागिनी, और हमारे जो कलाकार हैं वो हैं योगेंद्र निमचाना।

0: तो भाई अभी आप सुन रहे थे रागनी, कलाकार थे योगेंद्र नीपचाना।
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
3: और आपको याद दिला दें कि भाई कल है शनिवार, और शनिवार को आपका पसंदीदार कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार प्रसारित किया जाता है, जो कि फरमाइशी गीतों का फ़ोन इन कार्यक्रम है, जिसमें हमारे श्रोता फ़ोन के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं और हमें अपनी फरमाइशों के बारे में बताते हैं। अधिक से अधिक श्रोता हमसे जुड़ते हैं और हमारे कार्यक्रम में भाग लेते हैं, इससे हमें काफ़ी प्रसन्नता होती है। तो अगर आप भी कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो कल 6:30 पर हेलो ग्राम संसार कार्यक्रम सुनना बिल्कुल न भूलें। कार्यक्रम के दौरान आपको कार्यक्रम से जुड़ने का समय और फ़ोन नंबर सभी जानकारियां आपको विस्तार से दी जाएंगी। इसके साथ ही आज का कृषि जगत कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
0: राम राम, राम। और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिव नंदन लाल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अभी आपने आनंद लिया कार्यक्रम कृषि जगत का। अब कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब वक्त है कार्यक्रम गजल और कव्वाली का। गजल और कव्वाली दोनों ही वो एक सिफ्त है, एक वो तरीका है कि जहाँ आप इंसान के इमोशंस को, उसके एहसासात को बहुत अलग तरीके से बयान करते हैं। गजल के ज़रिए खूबसूरती और इश्क को बयान किया जाता है, वहीं कव्वाली वो सिफ्त है जिसमें आप रूहानियत को पाते हैं। तो शुरुआत करते हैं ऐसी ही एक रूहानी।

इबादत के लिए किसी जगह जाकर इबादत करना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है इंसान की ज़िंदगी में वो मसरूफ़ बहुत होता है, बहुत बिजी शेड्यूल होता है, या किसी ऐसी परेशानी में होता है कि वहाँ वो चीज़ें मौजूद नहीं होती। उस वक्त उसकी नज़रें, उसका दिल, उसके जज्बात, उसके एहसास उस ईश्वर की बारगाह में झुक जाते हैं। वो सबसे बड़ी इबादत है।

बार होकर बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त। मेहरबा होकर बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त, मैं गुजरा वक्त नहीं जो लौट ना सकूं। और अब इस शाम की यह आखिरी गजल आप सभी के पेश नजर।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी आपने कार्यक्रम गजल और कव्वाली सुना। अब से कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल खिलाड़ी और 8:30 पर आप सुनेंगे गीत मालिका। 8:45 पर समय होगा समाचार संध्या का। कृपया प्रादेशिक समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय।

0: मुख्य समाचार। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने उत्तरी जिले में पहले महिला पुलिस थाने का उद्घाटन किया। कहा, यह थाना महिलाओं को बिना किसी भय के शिकायत दर्ज और न्याय दिलाने में मदद करेगा। दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे 42 जनकल्याण शिविरों में पहले दिन कुल 15,000 लोगों ने हिस्सा लिया। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रोएक्टिव विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क अधिसूचित किया। दिल्ली पुलिस ने बताया, ऑपरेशन साई हॉक के पांचवें चरण के अंतर्गत ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से जुड़े 911 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज, कई संस्थानों में योग शिविर आयोजित और एशियाई तलवारबाजी प्रतियोगिता नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज उत्तरी जिले के सब्जी मंडी इलाके में दिल्ली पुलिस के पहले महिला पुलिस थाने का उद्घाटन किया। यह थाना महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने और एक सुरक्षित तथा सुलभ पुलिसिंग माहौल देने के लिए स्थापित किया गया है। उद्घाटन के बाद श्री संधू ने कहा कि यह थाना महिलाओं को बिना किसी भय के शिकायतें दर्ज कराने, न्याय पाने और सहायता प्राप्त करने के लिए एक सहयोगी और सुरक्षित वातावरण देगा। उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस की महिला सुरक्षा से जुड़ी प्रमुख पहलों जैसे कि पिंक बूथ और सशक्ति अभियान की भी समीक्षा की। श्री संधू ने पुलिस बल को राजधानी में ऐसे और भी थाना स्थापित करने का निर्देश दिया। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज राजधानी में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI फॉर गुड गवर्नेंस संगोष्ठी में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में श्री संधू ने कहा कि AI शासन व्यवस्था को केवल प्लेटफॉर्म आधारित से बदलकर इंटेलिजेंस आधारित बनाने के अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि AI प्रणालियों से सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि भारत की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक विविधता को प्रतिबंधित करे। उपराज्यपाल ने देश की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप और पारदर्शिता, डेटा गोपनीयता तथा जन विश्वास आधारित संप्रभु AI क्षमताएं विकसित करने को राष्ट्रीय प्राथमिकता बताई। दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे 42 जन कल्याण शिविरों में पहले दिन कुल 15,000 नागरिकों ने हिस्सा लिया। इन शिविरों के माध्यम से नागरिकों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। एक रिपोर्ट।
1: इस दौरान लोग राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पेंशन, जल कनेक्शन, ई श्रम कार्ड, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित कार्यों के लिए बड़ी संख्या में शिविरों में पहुंचे। शिविर में लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये दर्शाती है कि शहरवासी घर के निकट उपलब्ध हो रही सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ लेने के लिए सक्रिय रूप से आगे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य केवल सरकारी योजनाओं की जानकारी देना नहीं बल्कि पात्र नागरिकों तथा योजनाओं का वास्तविक लाभ पहुंचाना और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। रिशु की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए आनंद पाठक।
0: दिल्ली सरकार ने सर्दियों के मौसम में प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रोएक्टिव विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क अधिसूचित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: इसका उद्देश्य नागरिकों, उद्योगों, संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और निर्माण एजेंसियों को नवंबर से पहले पर्याप्त तैयारी का समय उपलब्ध कराना है ताकि दिल्लीवासियों को अनावश्यक असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि ये व्यवस्था सामान्यतः हर वर्ष 1 नवंबर से 28 फरवरी तक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के साथ लागू रहेगी। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत कई प्रावधान हैं, जिसमें वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल पंप पर ईंधन मिलेगा। 1 नवंबर से 28 फरवरी तक अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना रहेगा। खुले में कचरा जलाने पर सख्त निगरानी और कार्रवाई की जाएगी जैसे प्रावधान शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: दिल्ली को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार इस वर्ष राजधानी क्षेत्र में 70 लाख पेड़ पौधे लगाएगी। अधिक ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: इसके अंतर्गत दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने आज सचिवालय में उम्मीद फाउंडेशन की टीम से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि इस संस्थान की विशेषता है कि इसके अधिकतर स्वयंसेवक युवा हैं, जिनकी पर्यावरण को लेकर समर्पण तारीफ के काबिल है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में कई गैर सरकारी संगठन, निवासी कल्याण संघ, संस्थानों, कॉलेजों, विद्यालयों और युवाओं को एक साथ जोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को हरा भरा बनाने के संकल्प में युवा पीढ़ी की अहम भूमिका है। रिशु की रिपोर्ट।

0: के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन साई हॉक के पांचवें चरण के अंतर्गत विभिन्न ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से जुड़े 911 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खुफिया संलयन और रणनीतिक संचालन के संयुक्त पुलिस आयुक्त रजनीश गुप्ता ने मीडिया को बताया कि दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान इस महीने की 16 तारीख से शुरू हुआ है। इस दौरान 715 छापेमारी टीमों ने दिल्ली सहित 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समन्वित अभियान चलाए।
2: तो ना सिर्फ हमने हॉटस्पॉट्स पर काम किया बल्कि उन आम कंप्लेंट्स पर भी काम किया और उनके एनालिसिस करके हमें लगा कि बहुत सारा जो फ्रॉड है, हालांकि उसमें अमाउंट में एफआईआर बहुतों में नहीं थी और अमाउंट चूंकि 1 लाख से कम था तो ईएफआईआर भी नहीं थी, तो उसके अंदर जब काम करने से पता लगा कि एपी के बेस्ड फाइल्स का बहुत ज्यादा व्हाट्सएप के ऊपर आना होता है और उसी की वजह से पैसा साइफन ऑफ हो रहा है। इसी की मदद से हम लोगों की जो संख्या रही इस बार अरेस्ट की वो पिछले सभी साई हॉक ऑपरेशन से ज्यादा रही और 916 के अलावा अभी भी फॉरवर्ड लिंकेजेस में हमें उम्मीद है कि हम और लोगों को भी पकड़ पाएंगे।
1: श्री गुप्ता ने बताया कि इस दौरान 105 लैपटॉप, 757 मोबाइल फोन, एक कार और लगभग 21 लाख रुपए नगद जब्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अभियान में नाइजीरिया के दो नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्रवाई जारी है। एक अन्य कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी मामले में एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने बताया कि मामले में 4 आरोपी राजस्थान के सीकर जिले से गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी युवाओं, खासकर छात्रों को वर्क फ्रॉम होम का प्रलोभन देकर भर्ती करते थे। मामले की जांच जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब समय आ गया है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाया जाए। नई दिल्ली में 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन 2026 में उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली के बारे में श्री शाह ने कहा कि ऐसे कई मामले हैं जहां इस प्रणाली ने सबसे जटिल मामलों को भी सरल बनाने में सहायता की है।
3: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
1: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज मच्छर जनित बीमारियों के रोकथाम और उनके प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑटो रैली को हरी झंडी दिखाई। एक रिपोर्ट।
4: प्रत्येक ऑटो रिक्शा पर मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए किए जाने वाले उपायों का संदेश प्रसारित किया जाएगा। इस अवसर पर महापौर द्वारा फॉगिंग अभियान का भी शुभारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि ये ऑटो सभी 250 वार्डों में जाएंगे। श्री वाही ने कहा कि ये ऑटो रिक्शा फॉगिंग मशीन और जन जागरूकता सामग्री जैसे मच्छर जनित बीमारियों से बचने के तरीके बताने वाले संदेश, पैम्फलेट और बैनर प्रसारित करेगी। महापौर ने कहा कि इस रैली का आदर्श वाक्य जीतेगी दिल्ली, हारेगा डेंगू मलेरिया महज एक नारा न होकर निगम की प्रतिबद्धता है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: दिल्ली भाजपा ने राजधानी में आज लगातार दूसरे दिन घर घर महाजन संपर्क अभियान चलाया। इस कार्यक्रम का आयोजन राजधानी के सभी 256 मंडलों में किया गया। इस महाजन संपर्क अभियान में मुख्य रूप से सांसद, विधायक और पार्टी के प्रमुख प्रदेश पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। दिल्ली भाजपा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास, विश्वास तथा जन कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने सुल्तानपुरी बी मंडल में घर घर जाकर क्षेत्रवासियों से संपर्क किया। वहीं सांसद कमलजीत सहरावत ने हरिनगर विधानसभा में और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने गोकुलपुर विधानसभा में क्षेत्रवासियों के बीच पहुंचकर जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज रविवार को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के पहले टेलीग्राम को आंशिक रूप से प्रतिबंधित करने संबंधी सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने बताया कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 7827980287 के माध्यम से भेजे जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कर्तव्य पद पर पोर्टेबल शौचालय स्थापित किए हैं। परिषद ने कहा कि इनका उद्देश्य कार्यक्रम के दौरान लोगों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करना, स्वच्छता के मानकों को बनाए रखना और साफ सफाई को बढ़ावा देना है। योग दिवस के उपलक्ष्य में आज दिल्ली नगर निगम मुख्यालय सिविक सेंटर के प्रांगण में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निगम ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों में योग के प्रति जागरूकता फैलाने और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना था। वहीं नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत करते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के रूमेटोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने बताया कि योग को ऑटोइम्यून बीमारियों और रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस के प्रबंधन में सहायक चिकित्सा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आगामी 21 जून को मनाया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से एशियाई तलवारबाजी प्रतियोगिता की औपचारिक शुरुआत हुई। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। 24 जून तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 34 देशों के करीब 400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ओलंपियन भवानी देवी इस प्रतियोगिता में 24 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व कर रही हैं। राजधानी दिल्ली में दोपहर में गर्मी का प्रकोप जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल हल्के बादल छाए रहने तथा कुछ इलाकों में मध्यम वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 39 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने उत्तरी जिले में पहले महिला पुलिस थाने का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे 42 जन कल्याण शिविरों में पहले दिन कुल 15,000 लोगों ने हिस्सा लिया। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रोएक्टिव विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क अधिसूचित किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज, कई संस्थानों में योग शिविर आयोजित और एशियाई तलवारबाजी प्रतियोगिता नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मैं हूं कविता और आज मेरे साथ हैं इस कार्यक्रम में मेरे सहयोगी
2: संचित जैन।
1: मैं और संचित आपको लेकर चलेंगे आज खेल जगत के सुनहरे सफर पे, जहां हम आपको अलग अलग खेल गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। और आज जिन खेल गतिविधियों को हम शामिल करने वाले हैं उसमें है हमारे पास सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप, उसके बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप महिलाओं का चल रहा है, उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे हॉकी के फील्ड में, उसके बाद हम आपको रूबरू कराएंगे यहाँ पर शूटिंग खबरों से। दोहा की डायमंड लीग में भी हमारे जो नीरज चोपड़ा है कम बैक कर रहे हैं, आज उनका देर रात मुकाबला है। इसके अलावा बॉक्सिंग में भी हमारे जो बॉक्सर्स हैं उन्होंने पंच लगाए हैं जो कि हमें मेडल की तरफ लेके जाएंगे। तलवारबाजी में भी हमारे खिलाड़ी दमखम दिखाएंगे। तो संचित, तैयार हो इस पूरे ही प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए?
2: जी बिल्कुल कविता जी, खबरें बहुत सारी हैं, टाइम कम है, तो आइए शुरू करते हैं।

0: फीफा वर्ल्ड कप से।
1: बिल्कुल, तो सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं फीफा के फुटबॉल के उन ग्राउंड्स में जहां पर लगातार टीमें अभी अपना अपना प्लेस बनाने के लिए लगी हुई हैं। तो चलिए चलते हैं संचित के पास।
2: अर्जेंटीना चैंपियन

स्विट्जरलैंड ने बोस्निया को फुटबॉल का जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 4-1 से हरा दिया। सब्स्टिट्यूट योहान मैनजिम्बी ने आकर 2 गोल मारे, वहीं रूबन बारगास ने 84वें मिनट में गोल किया। ग्रेनिट जाखा ने आखिरी मिनट में एक पेनल्टी मारकर स्विट्जरलैंड का 4th गोल मारा। बोस्निया की तरफ से मोहारेमोविच को 80वें मिनट में रेड कार्ड मिला डॉक्सो यानी डिनायल ऑफ गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी की वजह से। मेहमिच ने 93rd मिनट में एक गोल मारा। इस जीत के चलते स्विट्जरलैंड ग्रुप बी में 4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है और बोस्निया 1 अंक के साथ तीसरे स्थान पर। ग्रुप बी की अगर बात करें तो दोनों टीम्स कनाडा और कतर कल एक तनावग्रस्त मैच में शामिल हुए। कनाडा ने 6 गोल मारकर कतर की टीम को पूरी तरीके से तोड़ दिया। कनाडा के जोनाथन डेविड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक हैट्रिक मारी। कतर के हनम अहमद और असीम मडीबो को रेड कार्ड दिखाया गया। कनाडा को इस मैच में 19 कॉर्नर मिले जिन्हें यूज करते हुए उन्होंने कतर को बुरी तरीके से हरा दिया। इस जीत के चलते कनाडा अब ग्रुप बी में पहले स्थान पर आ गया है और कतर अभी 4th और आखिरी स्थान पर है।

चलिए अब बात करते हैं ग्रुप ए की। ग्रुप ए में मेक्सिको और साउथ कोरिया के बीच एक अहम मुकाबला देखने को मिला। होम टीम मेक्सिको ने साउथ कोरिया के गोलकीपर की गलती का फायदा उठाते हुए 50वें मिनट में गोल दाग दिया। बॉल हवा में थी और साउथ कोरिया के गोलकीपर और सेंट्रल डिफेंडर के बीच मिसकम्युनिकेशन के चलते गोलकीपर के हाथ से बॉल नीचे गिर गई और मेक्सिको के प्लेयर रोमो ने गोल कर दिया। इस जीत के चलते मेक्सिको ग्रुप ए में 6 अंकों के साथ पहले स्थान पर है और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में राउंड ऑफ 32 में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम भी बनी। वहीं साउथ कोरिया 3 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। ग्रुप ए की बाकी दोनों टीम्स यानी साउथ अफ्रीका और चेकिया के बीच भी मैच हुआ जो 1-1 से ड्रॉ रहा। चेकिया के मिडफील्डर सैडिलेक ने 6वें मिनट में गोल मारकर चेकिया को 1-0 से आगे कर दिया था। साउथ अफ्रीका पूरे मैच में गोल मारने की कोशिश करता रहा और 83वें मिनट में साउथ अफ्रीका को एक पेनल्टी मिली। चेकिया के प्लेयर ने पेनल्टी बॉक्स में हैंडबॉल किया जिसके चलते साउथ अफ्रीका को पेनल्टी दी गई और साउथ अफ्रीका के प्लेयर मोकेना ने गोल दागकर मैच 1-1 की बराबरी पर ले आया। इस मैच के चलते दोनों चेकिया और साउथ अफ्रीका 1-1 अंक के साथ ग्रुप ए में तीसरे और चौथे स्थान पर हैं।

वहीं आज होने वाले मैचेस पर नजर डालें तो ग्रुप सी में एक अहम मुकाबला होगा स्कॉटलैंड और मोरक्को के बीच। स्कॉटलैंड अपना पहला मैच जीतकर 3 अंकों के साथ पहले स्थान पर है, वहीं मोरक्को 1 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। दोनों टीमें मैच जीतकर राउंड ऑफ 32 में जाने के सपने देख रही होगी। वहीं ग्रुप सी में आज ब्राजील और हैटी के बीच भी एक मैच खेला जाएगा। ब्राजील का पहला मैच मोरक्को के साथ ड्रॉ हो गया था, तो वो आज हैटी को हराकर ग्रुप सी में अपनी स्थिति बेहतर करना चाहेंगे। हैटी के सामने ब्राजील की कड़ी चुनौती रहेगी, लेकिन वर्ल्ड कप फुटबॉल में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। देखते हैं आज के बाद ग्रुप सी किस तरफ मुड़ता है।

वहीं ग्रुप डी की बात करें तो आज यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक कड़ा मुकाबला होने वाला है। दोनों ही टीम्स अपना पहला मैच जीत गए थे और यूएसए ने पैराग्वे को 4-1 से हराया, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने टर्की को 2-0 से हराया था। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में जो भी टीम ये मैच जीतेगी उसकी जगह राउंड ऑफ 32 में पक्की हो जाएगी। यूएसए होम सॉइल पर खेलेगा और लोकल क्राउड

का सपोर्ट का फायदा उठाते हुए ये मैच जीतना चाहेगा। वहीं ग्रुप डी के दूसरे मैच की बात करें तो टर्की और पैराग्वे के बीच ये मैच खेला जाएगा। दोनों टीम्स अपना पहला मैच हार गई थी और आज प्रयास करेंगी कि आज का मैच जीतकर टूर्नामेंट में आगे बढ़ा जाए। जो टीम आज का मैच हारती है उसका राउंड ऑफ 32 में क्वालिफिकेशन बेहद मुश्किल हो जाएगा।

0: तो जहां हम बात करते हैं फुटबॉल के महाकुंभ की यानी फीफा वर्ल्ड कप की, तो हम ऐसे में क्रिकेट वर्ल्ड कप को कैसे भूल सकते हैं संचित। और अब फुटबॉल के मैदान से निकल के हमें क्रिकेट के ग्राउंड में भी तो पहुंचना है, जहां पर भारतीय जो टीम है, हमारी महिला टीम जो है, वो T20 वर्ल्ड कप खेल रही है और बिल्कुल लगी हुई है कि किस तरह से हम एक बार फिर इतिहास को दोहराएं और T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को भी घर ले आएं। तो क्या है खबर क्रिकेट के मैदान से संचित?
1: जी बिल्कुल कविता, ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के बीच में मैच खेला गया, जिसमें वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को 7 रनों से हरा दिया। स्कॉटलैंड की तरफ से कार्टर ने 59 रन और लिस्टर ने 33 रन बनाए। वेस्टइंडीज की तरफ से मैथ्यूज ने शानदार बोलिंग करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 3 विकेट लिए। फ्लेचर ने 4 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट लिए और एलेन ने 2 ओवर में 11 रन देकर 3 विकेट चटकाए। वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को 146 पर आउट करके ये मैच 7 रनों से जीत लिया। पहली पारी में वेस्टइंडीज के लिए कैम्बल ने 26 बॉलों पर 36 रन बनाए और टेलर ने 19 बॉल पर 47 रन बनाए। वहीं आज की बात करें तो न्यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच एक बहुत ही अच्छा मैच खेला जाएगा। आज रात 11 बजे ये मैच T20 वर्ल्ड कप के मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीम अभी तक एक भी मैच नहीं जीती हैं और इसका मतलब ये है कि ये मैच दोनों ही के लिए एक मस्ट विन मैच हो चुका है। न्यूजीलैंड जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस है, अपना पहला मैच वेस्टइंडीज से और दूसरा मैच श्रीलंका से हार गया था। आइए चलते हैं कविता की तरफ।
0: जी हाँ बिल्कुल, और क्रिकेट की खबरों का जो रोमांच है वो अभी जारी है, क्योंकि अभी तो बात हमारे पुरुषों की बाकी है। यहाँ पर इंडिया और अफगानिस्तान जो है वो खेल रहे हैं अपना वनडे सीरीज। पहले 2 मैच में धमाकेदार जीत से उत्साहित भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ कल होने वाले तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, जिसमें केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के प्रदर्शन पर सभी की नजरें होंगी। इंडिया अफगानिस्तान का तीसरा वनडे मैच चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें पूरी तरह से तैयार हैं। मैच में पिछले अगर बात करें तो पिच की, वहां पर जिस तरह से स्टेडियम है वहां पर स्पिनर्स को हमेशा मदद मिलती है। हालांकि शुरुआत में कुछ ओवर जो हैं वो थोड़ा सा जो तेज गेंदबाज हैं उनके भी फेवर में जाता है, लेकिन वक्त के साथ यहाँ पर स्पिनर्स का दबदबा बन जाता है। वहीं अगर मौसम की बात करें संचित, तो शनिवार को चेन्नई का मौसम खराब रहने वाला है, जो मैच पर असर डाल सकता है। एक और बात है यहाँ पर कि एक रिहेबिलिटेशन को पूरा करने के बाद इस मैच में हर्षित राणा जो है वो टीम में वापस आए हैं और ये तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की जगह ले सकते हैं, जिन्होंने इस श्रृंखला में अभी तक 2 मैच खेले हैं। इससे भारत के जो चोटिल खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार रेड्डी, उनकी जो अनुपस्थिति है उसमें निचले क्रम में एक उपयोगी बल्लेबाज का जो विकल्प है वो मिल गया है। इससे टीम का जो प्रबंधन है वो ब्रिटेन दौरे से पहले उनकी जो फॉर्म और फिटनेस है उसका आकलन करने का भी यहाँ पर एक मौका जो है वो मिल जाएगा। जहां तक अफगानिस्तान की बात है तो उन्होंने इस श्रृंखला में एकमात्र टेस्ट मैच और पहले 2 वनडे में वैसा प्रदर्शन नहीं किया जैसा अक्सर हम अफगानिस्तान को लटफेर के लिए जानते हैं, लेकिन वो दिखा नहीं उनकी जो टीम है। हालांकि फिर भी यहाँ पर जो आखिरी वनडे मैच है उसमें जीत के साथ श्रृंखला का समापन करने के लिए थोड़ा ज्यादा ही दम लगाएगी, लेकिन देखना यही होगा कि क्या इंडिया की टीम उन्हें जीतने देगी। फिलहाल अभी तो अच्छा प्रदर्शन इंडिया का है और देखना है कि ये मैच कैसा रह सकता है। तो यहाँ पर हम क्रिकेट की खबरों को विराम लगाएंगे और आपको लेकर चलेंगे हम अभी यहाँ पर तलवारबाजी की जगत में, जहाँ पर हमारे जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप जो है वो खेल रहे हैं। इसका जो आगाज है वो आज से भारत मंडपम में 24 जून तक चलेगा। इस रोमांचक प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों और 400 से अधिक जो एथलीट हैं वो भाग ले रहे हैं। भारतीय दल में भी बहुत सारे खिलाड़ी शामिल हैं और इनकी जो अगुवाई है, भारत का जो नेतृत्व है दल का, वो एकमात्र फेंसिंग ओलंपियन CA भवानी देवी कर रही हैं। तो इसकी विस्तृत जानकारी के लिए चलते हैं अपने सहयोगी मोहम्मद शाहिद आजमी के पास, जो इस रिपोर्ट के साथ तैयार हैं।
2: राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आज से एशियन सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ

0: प्रारंभ हो गया है। पहली बार भारत इस प्रतिष्ठित महाद्वीपीय प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। 19 से 24 जून तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में 30 से अधिक देशों के 400 से ज्यादा खिलाड़ी और अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। आज इस आयोजन का रंगारंग उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस चैंपियनशिप में जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, हांगकांग, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे मजबूत देशों के तलवारबाज अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता में पुरुषों और महिलाओं के फाइल, एपी और सेबर मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं। आगे बढ़े इससे पहले आपको सुनवाते भारतीय तलवारबाजी टीम के कोच ज्ञानेंद्र कुमार को, जो बता रहे हैं फेंसिंग क्या है और कैसे खेला जाता है, साथ ही भारत के लिए पहला दिन कैसा रहा।
1: धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सबका आकाशवाणी का धन्यवाद जो कि मुझे बुलाया इस मंच पे। जो एशियन चैंपियनशिप है इंडिया में पहली बार हो रहा है और ये एक पूरे कंट्री को देखने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि फेंसिंग होती क्या है। तो मोस्टली जो एशियन कंट्री है फेंसिंग में बहुत आगे, मतलब जैसे यहाँ पे 70% ओलंपिक मेडलिस्ट एशियन कंट्री के हैं, जैसे चाइना, जापान, कोरिया और हांगकांग है, ये सब ओलंपिक मेडलिस्ट कंट्रियां हैं। तो एशियन में बहुत टफ कंपटीशन है और इंडिया जो स्पोर्ट्स फेंसिंग का जो अभी बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, काफी पहले पीछे थे मगर धीरे धीरे आगे क्वालिफाई कर रहे हैं। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है मिला इंडिया में और कराने का, सबको देखने का, समझने का। और इसमें मोस्टली मैं बताऊँ टोटल 3 इवेंट होते हैं और एक होता है फॉयल, जिसका टारगेट एरिया होता है हमारे जो वेस्ट साइज है, पूरा बनियान जितना है उसके, वो टारगेट होते हैं। आपको फ्रंट और बैक दोनों होता है। और एक इवेंट होता है ईपी, जो कि इसका फुल बॉडी टारगेट एरिया होता है, उसमें आप टो टू हेड कहीं भी आप हिट करते हैं तो आपको पॉइंट मिलता है। और सेम एक थर्ड इवेंट होता है जो सेबर होता है, जो कि आपका कमर से ऊपर जितना भी होता है उसमें आपका हेड भी इंक्लूड होता है, आर्म्स भी इंक्लूड होता है, वो इवेंट होता है। ये तीनों इंडिविजुअल इवेंट भी खेले जाते हैं और तीनों टीम इवेंट खेले जाते हैं। जैसे इंडिविजुअल में तो पर कंट्री 4-4 प्लेयर होते हैं, अपना अपना पूल खेलते हैं, पूल के बाद फिर नॉकआउट, जो क्वालिफाई करता है नॉकआउट खेलता है और जो जीतता रहता है आगे बढ़ता जाता है, जो हारता आउट हो जाता है। उसके बाद फिर ये जब इंडिविजुअल खत्म होता है तो फिर टीम इवेंट भी होते हैं। टीम इवेंट में टोटल 4 फेंसर होते हैं, इसमें एक रिजर्व होता है और जो कि हम रिप्लेस करते रहते हैं, अगर कोई खराब खेलता है तो चेंज करते हैं। उसमें टोटल 3 फेंसर खेलते हैं और वो 45 टच का मैच होता है। उसमें एक रिले की तरह होता है, जैसे कि एक दूसरे से 5 पॉइंट का एक आदमी खेलता है और 3 मिनट, फिर जितना स्कोर होता है उसी आगे से फिर आगे बढ़ता रहता है। फर्स्ट पहले 45 खत्म करता है और विन करता है। ऐसे टीम इवेंट होते हैं। पूल में 5 टच होते हैं, एक पूल में मैक्सिमम 7 फेंसर और मिनिमम 5 फेंसर होते हैं। फिर उसके व्याप पे जितने पूल कंप्लीट होने के बाद फिर नॉकआउट की जो सीडिंग होती है, जो पूल की रैंकिंग हिसाब से फर्स्ट की लास्ट से फिर सेकंड की सेकंड लास्ट से, ऐसे पूरे नॉकआउट सिस्टम बनता है। जो आगे जीतता जाता है वो आगे बढ़ता जाता है।
0: तलवार में भी कुछ डिफरेंस होता है क्या?
1: हाँ, तलवारों में भी काफी डिफरेंस है। जैसे कि फॉइल का होता है, उसका जो प्रेशर होता है ओनली थ्रस्टिंग वेपन, मतलब आपको सिर्फ कोचने वाला होता है कि आगे से टिप से पॉइंट आप हिट करेंगे तभी वो 500 ग्राम का प्रेशर चाहिए। और उसका जो शेप होता है वो भी बाकी उससे पतला होता है थोड़ा। जैसे आप लेंथ होती है, लेंथ तो लगभग ईपी और फॉइल के बराबर होती है। ब्लेड, जो ब्लेड का होता है एरिया, लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर की होती है। और सेम ऐसे ईपी का है, उसका 750 ग्राम का प्रेशर चाहिए। जैसे फॉइल में 500 ग्राम का प्रेशर चाहिए, उसमें ईपी में 750 ग्राम का प्रेशर से हिट करेंगे तभी आपका पॉइंट रजिस्टर होगा। और सेबर है जो कट एंड थ्रस्ट वेपन, जैसे कि आप उससे, मगर उसमें प्रेशर नहीं होता, आप बस जैसे आप कट करके मार भी सकते हैं। जैसे तलवार, जैसे तलवारबाजी होती है, मारते हैं एक दूसरे को, कहीं भी टच हो गया तो भी पॉइंट मिलता है, ये सिस्टम होता है।
0: आज कंपटीशन खेले गए लड़कों और लड़कियों के, कोई उम्मीद नजर आज नहीं आई, जिसको मैंने देखा वो हार गए, क्या रहा आज?
1: ये सर अभी तो जो फेंसिंग है इंडिया में डेवलप फेज में है, काफी अच्छा कर रहे हैं। पहले जैसे था, आज से कुछ साल पहले था, तो अभी हमारे तो पूल क्वालिफाई भी नहीं करते थे, मगर धीरे धीरे जैसे फेंसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है और हमारी जो गवर्नमेंट है काफी इन्वेस्ट कर रही है, काफी प्लेयरों को ध्यान दे रही है, तो वो धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उनको भी पता चल रहा है कि हमारी गलतियां कर, उसको सीख लेके धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि रुके हुए हैं, जैसे पहले पूल से आउट होते थे मगर अभी अब नॉकआउट में भी पहुंच रहे, फिर नॉकआउट से धीरे धीरे 2-3 बाउट जीत भी रहे हैं, आगे तक आ रहे हैं, 16 तक आ रहे हैं, 32 तक आ रहे हैं। अभी जैसे आज तो फॉइल गर्ल्स का और सेबर बॉयज का हुआ, जो कि 64 के मैच सेबर बॉयज जीते हैं और फिर जाके 32 में हारे। पहले तो ऐसे टीम पूल से आउट होते थे मगर अभी ग्रो कर रहे हैं।
0: यहाँ कुछ मेडल मिलेगा, चाहे ईपी की बात कर लें, फॉइल की बात कर लें, साइबर की बात करें, कहीं लग रहा हूँ।
1: हाँ सर, उम्मीद है काफी। देखिए अभी से ईपी के लड़के भी काफी अच्छा कर रहे हैं, उनके भी चांसेस हैं और टीम्स में भी हैं। और हमारी जो लास्ट ओलंपिक खेली हुई भवानी देवी, मिस भवानी देवी सेबर में, उनकी भी काफी मतलब दावेदारी है कि वो भी मेडल आ सकता है। ऐसा नहीं कि मेडल की उम्मीद है ही नहीं, मेडल की उम्मीद है अभी, अब देखते हैं अभी कौन से इवेंट में आने का चांस है।
0: पहली बार भारत में आयोजित फेंसिंग के इस तरह के बड़े आयोजन से युवा तलवारबाज भी बेहद उत्साहित हैं। आइए आपको ऐसी ही एक फेंसर से मिलवाते हैं जो बिहार के मोतिहारी से आती हैं।
2: मेरा नाम केसर राजा, मैं यहाँ पे मैचेस देखने आई हुई थी क्योंकि कंपटीशन हो रहा है और इंडिया होस्ट कर रहा है, इस करके हम लोग बस मजे करने आए थे और कॉम्पिटिशन प्रेजेंटेशन देके सीखने के लिए।

0: पर यहाँ पे हमें ओलंपिक मेडलिस्ट दिखे तो और एक्साइटमेंट बढ़ गई। अच्छा लग रहा है देख के कि इंडिया बहुत डेवलप हो रहा है और इतने अच्छे तरीके से इन लोगों ने एशियन चैंपियनशिप को पूरे अच्छे से कंडक्ट कराया, बिना किसी कमी के, बिना किसी गलतियों के। हम लोग बाहर खेलने जाते हैं अदर कंट्रीज में तो वहाँ से भी बहुत अच्छा कराया है यहाँ पे, तो इसके लिए बहुत अच्छा फील हो रहा है।
1: कितना एक्साइटमेंट है यहाँ कुछ देखने के लिए?
0: बहुत एक्साइटमेंट है, पूरा माहौल बहुत एनर्जेटिक है, सारे फेंसर्स बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ खेल रहे हैं। कुछ हार भी रहे हैं बट कोई बात नहीं, अगली बार वो अच्छा करेंगे।
1: आपके कौन पसंदीदा एथलीट फेंसर आए हैं जिसको आप देखना चाहती?
0: एक तो सिब्बर के हैं ओसांगो, इंडिया के मेरे पर्सनल फेवरेट फेंसर हैं करण सिंह गुज्जर, तो ये दोनों।
1: अपने बारे में थोड़ा बताइए।
0: मैं तो बिहार में ट्रेनिंग करती थी, स्कूल से ज्वाइन किया था, स्कूल में एक सर आए थे बस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो वहाँ से ज्वाइन किया था। मेरी फैमिली में कोई भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से कोई भी नहीं है, मैं इकलौती लड़की हूँ। और उसके बाद फिर मैंने अच्छा परफॉर्म किया, मेरे मेडल्स आए तो मुझे खेलो इंडिया स्कीम में फिर इंडक्शन हुआ मेरा, और फिर मैं ASI ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन किया। अभी मैं करंटली आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग कर रही हूँ।
1: बिहार में कहाँ से है और किस स्कूल में पढ़ी है, कैसे आप यहाँ तक पहुँची?
0: मैं बिहार में मोतिहारी से हूँ और मैं पहले कैम्ब्रिज इंटरनेशनल अकेडमी में पढ़ती थी, तो मैंने वहाँ से फेंसिंग स्टार्ट की थी। पर फिर मैंने स्कूल चेंज कर लिया था, जीवन इंटरनेशनल स्कूल, तो मैंने वहाँ से खेला। और जीवन इंटरनेशनल स्कूल से मैंने स्कूल नेशनल्स में गोल्ड मेडल सिक्योर किया और सिल्वर मेडल सिक्योर किया था स्कूल नेशनल्स में। और फिर अभी हाल ही में मैं एशियन चैंपियनशिप खेलने गई हुई थी इंडोनेशिया जकार्ता, तो मैं अभी वहाँ से खेल करके आई हूँ।
1: भारत की ओर से अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का मजबूत दल मैदान में उतरा है, घरेलू दर्शकों को भारतीय खिलाड़ियों से शानदार प्रदर्शन और पदकों की उम्मीद है। यह प्रतियोगिता आगामी 2026 एशियाई खेलों की तैयारियों के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माना जा रहा है इस तरह के आयोजन से भारत में फेंसिंग खेल को नई पहचान मिलेगी। आज पहले दिन भारत की महिला खिलाड़ियों ने फाइल और पुरुषों ने सेबर इवेंट में भाग लिया। हालांकि आज का दिन भारत के लिए कुछ खास नहीं रहा और राउंड ऑफ 32 से आगे भारतीय फेंसर नहीं बढ़ पाए। मिलते हैं राउंड ऑफ 32 में हार कर बाहर होने वाली ऐसी ही एक तलवारबाज से।
2: हेलो आकाशवाणी लिसनर्स, मेरा नाम कनुप्रिया चावला है, मैं हरियाणा से हूँ और मेरी एज 18 ईयर्स है। मेरा ये तीसरा सीनियर एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप है और पहले के मुकाबले अभी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट तो मेरे को फील हुआ। हालांकि मेरा रैंक 20th आया लेकिन मेरे को खेल के काफी अच्छा लगा।
1: क्या हुआ आज के इवेंट के बारे में जरा बताइए, राउंड ऑफ 32 तक पहुंची, वहां से बाहर हुई।
2: सबसे पहले तो हमारा पूल टेबल था जिसमें मैं 4 बाउट्स जीती थी और 2 हारी थी, उसकी वजह से मेरा रैंक 19 आया और उसी के कारण मेरा पहला बाउट इंडिया के साथ ही हो गया था और मैं वो जीती 59 से। उसके बाद मेरा फिलीपींस के साथ था, वो काफी स्मार्ट फेंसर थी, काफी अच्छे से उसने खेला, उसकी टेक्निक्स बहुत अच्छी थी और काफी फास्ट थी। हालांकि मेरा स्कोर उसके साथ 15-6 था लेकिन मुझे उससे खेल के काफी एक्सपीरियंस मिला और मैंने मेरी गलतियों से सीखा और मैं कोशिश करूंगी कि अगली बारी जो मैंने अब की बार सीखा है उससे मैं और अच्छा खेलूं।
1: कॉम्पिटिशन लेवल कैसा है?
2: हाई लेवल है क्योंकि एशियन चैंपियनशिप है और एशिया की काफी लड़कियां जो यहाँ खेल रही है, ओलंपियंस है, उनकी टीम ओलंपिक्स खेली हुई है, ओलंपिक मेडलिस्ट है, इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, तो लेवल काफी हाई है। कोशिश कर रहे हैं कि हम भी अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाए।
1: नई दिल्ली में जारी एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप पर आधारित रिपोर्ट में आज बस इतना ही। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ भारत मंडपम से आकाशवाणी के लिए मैं मोहम्मद शाहिद आजमी।
3: तो तलवारबाजों के कारनामे तो अभी देखने बाकी हैं क्योंकि जिस तरह से हमारे भारतीय खिलाड़ी खेल रहे हैं निश्चित तौर पर इसमें हम कुछ अच्छे तलवारबाज हमें मिले जो आगे चल के भारत का जो प्रतिनिधित्व जो है वो कर पाए आने वाले और भी टूर्नामेंट में। चलिए अब आपको लिए चलते हैं सीधा हम हॉकी के टर्फ की ओर जहां पर FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय पुरुष टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी को एक तरफा मुकाबले में 3-1 से हरा दिया। मनदीप सिंह ने 7वें मिनट में और शिलानंद लाकड़ा ने 13वें मिनट में, नीलकांत शर्मा ने 35वें मिनट में गोलों की बदौलत भारत ने शानदार जीत हासिल की है। इस मुकाबले में भारतीय टीम का डिफेंस भी काफी मजबूत नजर आया। मिडफील्डर हार्दिक सिंह और मिडफील्ड से खेल को संभालने के उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं मनप्रीत सिंह भारत की ओर से सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी बन गए। उन्होंने दिलीप तिर्की के 412 मैचों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 413 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले मनप्रीत अब पुरुषों की ऑल टाइम इंटरनेशनल कैप सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ी की लिस्ट में बेल्जियम के जॉन जोहमैन और नीदरलैंड के ट्यून डी नुइजर, ऑस्ट्रेलिया के एडी ओकेन डेन और ग्रेट ब्रिटेन के बैरी मिडिल्टन के बाद 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। भारत ने पोजीशन कंट्रोल करके मैच की अच्छी शुरुआत की और जर्मनी पर दबाव बनाए रखा। इसका फायदा 7वें मिनट

0: मिला जब मनदीप ने गोल के सामने एक तेज टर्न से गोल करके भारत को 1-0 की जो बढ़त है वो दिला दी। पहले क्वार्टर को खत्म होने से ठीक पहले लाकड़ा ने भी अपना जो हुनर है वो दिखाया। उसके बाद दूसरे क्वार्टर में जर्मनी ने वापसी करने के इरादे से अपना खेल बदला जरूर, लेकिन भारतीय खेल खिलाड़ी के सामने ये सारे ही खिलाड़ी कुछ कम नजर आते रहे। भारत ने दूसरे हाफ में भी गोल करने की कोशिश की और टीम को सफलता 35वें मिनट में मिली जब नीलकांत शर्मा ने जर्मन डिफेंडर्स को छकाते हुए शानदार 16 रन बनाया और गेंद को गोल में डालकर भारत की बढ़त 3-0 कर दी। इसके बाद दोनों टीमों ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए और बराबर मौके बनाए। जर्मनी को आखिरकार तीसरे क्वार्टर में सिर्फ 20 सेकंड बाकी रहते एक गोल करने का मौका मिला, जिसका फायदा उठाते हुए राफेल हार्टकॉफ ने 45 मिनट में गोल करके स्कोर को 3-1 कर दिया। लेकिन आखिरी क्वार्टर में जर्मनी की इस रफ्तार के बाद भी जो भारतीय टीम है उनके हाथों से जर्मनी की टीम जो है वो जीत नहीं छीन पाई और जीत का जो सहरा सजा वो सजा भारतीय टीम के नाम। अपना अगला मुकाबला भारतीय टीम अब खेलेगी और देखते हैं कि उस मुकाबले में किस तरह से जो हमारे खिलाड़ी हैं वो प्रदर्शन करते हैं। वही बात करते हैं अब महिला हॉकी की भी। FIH महिला नेशंस कप में पहला सेमीफाइनल मुकाबला भारत और चिली के बीच 20 जून को खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। मैच का जो महत्व है और टीम का जो फॉर्म है ये दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि जीतने वाली टीम को FIH प्रो लीग में प्रमोशन मिलेगा। भारतीय टीम शानदार फॉर्म में है और अपने पिछले तीनों पूल मैच अमेरिका, जापान, उरुग्वे के खिलाफ जीतकर अजेय रही है। दूसरी ओर चिली की टीम ने भी पूल बी में दूसरे स्थान पर रहकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। उरुग्वे के खिलाफ पिछले रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम 1-0 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए 3-2 से जीती थी, जिससे दीपिका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 पेनल्टी कॉर्नर दागे थे। हेड टू हेड की अगर बात करें तो पिछले मुकाबले में आंकड़े पूरी तरह से भारत के पक्ष में हैं। पिछली 6 भिड़ंत में से भारत ने 5 जीत हासिल की है जबकि एक मुकाबला ड्रॉ रहा। इन दोनों ही टीमों के बीच आखिरी मुकाबला FIH नेशंस कप का 2022 में हुआ था, जहां भारत ने चिली को 3-1 से हराया था। तो मुख्य जो पॉइंट है और जो मुख्य खिलाड़ी है वो है स्टार ड्रैग फ्लिकर अटैकर दीपिका, जिन्होंने उरुग्वे के खिलाफ मैच में शानदार लय दिखाई, और कप्तान सलीमा टेटे जो मिडफील्ड को संभालते हुए काउंटर अटैक का जो नेतृत्व है उसे संभालेंगी। और चिली की टीम अपने मजबूत डिफेंस और शुरुआती हमलों पर निर्भर करती है, इसीलिए भारतीय डिफेंस को भी शुरुआत से ही सतर्क रहना होगा। चलते हैं हम अपने सहयोगी संचित के पास अन्य खबरों के लिए।
1: हाँ जी, आइए सुनते हैं मकाऊ ओपन सुपर 300 में क्या रहा। अश्विता चालेहा ने शुक्रवार को कोरिया की किम मिन सन पर शानदार जीत दर्ज करते हुए मकाऊ ओपन सुपर 300 में अपना दबदबा बरकरार रखते हुए महिला एकल सेमीफाइनल में जगह बनाई। अश्विता ने किम को 21-16, 21-18 से सिर्फ 37 मिनट में हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। उनका मुकाबला कोरिया की ही एक अन्य खिलाड़ी पार्क गायुन से होगा। अश्मिता और किम के बीच पहला गेम 14-14 तक बराबरी का रहा। इसके बाद भारतीय खिलाड़ी ने लगातार 4 अंक जीतकर बड़ी बढ़त बना ली और फिर से बरकरार रखा। दूसरे गेम में किम ने पहल की और मध्यांतर तक अश्मिता पर 11-5 की बढ़त बना ली, लेकिन बाएं हाथ की भारतीय खिलाड़ी ने दबाव बनाए रखा और 16-18 के स्कोर पर लगातार 5 अंक जीतकर मैच अपने नाम कर लिया। और इसी के साथ अश्मिता चालेहा अब सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और आकाशवाणी की तरफ से हम उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं।
0: और शुभकामनाएं हम यहाँ पर देंगे यहाँ पर नीरज चोपड़ा को भी, जो कि आज दोहा डायमंड लीग में एक बार फिर से मैदान पर उतर रहे हैं और चोट की वजह से एक लंबे समय तक प्रतियोगिताओं से दूर रहे थे और अब वापसी कर रहे हैं। ऐसे में उनकी कोशिश ये है कि जो उनकी लय है वो प्रभावित ना हो। तो यहाँ पर प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा जो उनका मुकाबला होगा वो होगा श्रीलंका के स्टार रुमेश थरंगा से, जिन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले 90 मीटर का आंकड़ा पार किया था। नीरज चोपड़ा अपनी वापसी पर क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं।
2: Always feel amazing to back in competition season and in Doha especially, and a little bit nervous after speaking in front of so many people after long time. So I had some injury last year before Tokyo World Championship. We work a lot and I also compete in Tokyo, but that was not I don't think so that was good decision because I already know that I have some problem, but that was last competition, so I decide to compete there, and then we work a lot and then I sit together with my team and my physio, and then we work on every part, and we just decide. We start throwing 1.5 months ago, and we take our time. I took to Doha and I asked them if

0: it's possible if I will let you know very in very short period, like one week ago. And then they said yes, and then we decide after my last session, okay, let's compete in Doha. I was in Mecklingen. It's a Swiss Olympic training center there. So I really like that place. It's in mountain and very quiet, so you can focus on your things and on your technique. So I really like that place.
1: तो अब देखना होगा क्योंकि आज देर रात नीरज चोपड़ा जो है वो अपने मुकाबले खेलेंगे. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट नीरज चोपड़ा. चलिए अब चलते हैं शूटिंग की तरफ, जहां पर शूटिंग जगत से आ रही है बहुत ही शानदार खबरें, क्योंकि भारत जो है आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप में खेल रहा है, जहां पहला दिन तो शानदार रहा. उसमें दो स्वर्ण और एक कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किया. भारतीय निशानेबाजों ने प्रतियोगिता की शुरुआत बेहतरीन अंदाज में की और पदक तालिका में एक मजबूत स्थिति जो है वो अपनी दर्ज करवा ली. प्रतियोगिता के पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान आकर्षित किया. खासकर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत का दबदबा साफ दिखा, जहां पर सेजल कांबले ने जूनियर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को एक स्वर्ण पदक दिलाया और उनकी सटीकता और शांत खेल ने उन्हें शीर्ष स्थान तक पहुंचाया और भारत के लिए पहले दिन की शुरुआत शानदार तरीके से की. मेडल जीतने के बाद सेजल ने क्या कहा, लीजिए सुनिए.
2: Feeling grateful for all the hard work I've been through and all the sacrifices, and I'm most grateful to my coaches, my parents and my friends and my institute. Yeah, it's like we have seen each other's worst and each other's best, and we have trained together for so long, and it feels so good to win together.
1: इसी के साथ यहाँ पर भारत की ही हिमांशी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया, कांस्य पदक जीत कर देश को खुशी दिलाई. इसके बाद अगर बात करें हम आज के मुकाबलों में भी, तो आज का दिन भी भारतीय शूटिंग के लिए खुशी का दिन लेकर आया. 25 मीटर रैपिड पिस्टल में समीर ने गोल्ड जीता, तो वहीं 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में महिला जूनियर में प्राची गायकवाड़ ने सिल्वर मेडल जीता. अगर अंक तालिका पर नजर डाले तो भारत इस वक्त 3 गोल्ड 1 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज जीतकर टोटल 7 पदक के साथ टॉप पर है. समीर ने क्या कहा मेडल जीतने के बाद, आइए सुनते हैं.
3: इट्स फील ग्रेट टू बी अ जूनियर वर्ल्ड चैंपियन इन 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप. आई मिस द गोल्ड, आई वाज सेकंड, बट दिस टाइम आई वांट टू क्लेम द गोल्ड बी द वर्ल्ड चैंपियन.
1: तो यहाँ पर वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं. चलिए अब वर्ल्ड चैंपियन से निकलकर वर्ल्ड बॉक्सिंग कप की तरफ चलते हैं, जहां पर स्टेज 2 के जो मुकाबले हैं उसमें आज 5 मैच जो है वो खेले जाने थे. 5 मैचों में मीनाक्षी, स्नेह, निखिल, प्राची और दीपक का मैच होना था. इसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे जो 4 बॉक्सर्स हैं यहाँ पर, स्नेह को छोड़कर निखिल, प्राची और दीपक, उनमें से सभी का जो मेडल है वो पक्का हो चुका है. और इसके साथ ही अब हम चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जहां पर हमारी जो टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं मनिका बत्रा, उनको घरेलू इवेंट्स में उनकी जो गैर मौजूदगी थी उसकी वजह से उन्हें रिजर्व में रखा गया है. 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक यहाँ पर जो एशियन गेम्स होंगे उनमें उनकी जगह नहीं है. फिलहाल जो टीम में है उनमें काफी सारे नाम है और इस वक्त समय की कमी है, तो हम आपको अपडेट जो है वो अगले कार्यक्रम में जरूर देंगे. इसी के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, मुझे कविता शर्मा
4: और संचित जैन
1: अपने प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ आप सभी से लेते हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी से अनुमति. नमस्कार, गुड नाइट.
5: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि 8:30 हो चुके हैं और ये वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम गीत मालिका का। तो आइए सुनते हैं इस माला का ये पहला मोती जो है फिल्म अग्निपथ से, और इस गीत को गाया है सोनू निगम ने।

कुछ गीत लिखने वालों ने सिर्फ गीत नहीं लिख दिए हैं, वो दिल के जज्बात लिख दिए हैं, वो बातें लिख दी हैं जो कहने में कभी इंसान झिझक जाता है, कभी वो ठहर जाता है, कभी वो सोच में डूब जाता है, और कभी वो इस हद तक कंफ्यूज हो जाता है कि वो ये बात कहे या ना कहे, या इस मौके पर वो खुश हो या रोए, या वो किस तरह से रिएक्ट करे। ऐसे वक्त में जो शायर होता है, जो गीतकार होता है, जो गीत लिखता है, वो भी उस कर्ब से, उस दर्द से गुजरता है, और उस दर्द को या उस खुशी को जो वो बयान करता है, तो हम सभी के दिलों पर चढ़ जाता है, हमारे दिलो दिमाग पर वो असर डाल देता है कि आप अपनी कैफियत को, अपनी उस सिचुएशन को उससे जोड़कर देखने लगते हैं। हर एक लफ्ज, हर एक शेर आपकी बयान हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ ये गीत था, और अगला गीत भी कुछ कुछ ऐसा ही है। फिल्म है तमाशा, और इस गीत को गाया है अलका याग्निक ने, और मुझे ये गीत बहुत बहुत बहुत पसंद है। उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आएगा, और मुझे लगता है कि शायद शायद ये इस कार्यक्रम का आखिरी गीत होगा।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अभी आपने गीत मालिका कार्यक्रम सुना। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। ठीक 9 बजे समय होगा इवनिंग न्यूज का और 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में खबरें।

0: ठीक 10 बजे आप सुन सकते हैं हिंदी में समाचार और 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। और ठीक 10:10 पर आप सुनेंगे माटी के रंग। इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं श्वेता सुष्मिता झा से मैथिली गीत। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए, अब से कुछ ही देर में समाचार संध्या सुनेंगे आप।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया, इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित, बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
2: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
3: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूरदराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: As our foreign policy, हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
4: Remains a matter of right, not as a struggle.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर MQ खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
6: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
5: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
7: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का असम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
5: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: करता है।
1: दिस इज द कंट्री,
0: यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
2: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana. Says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon. Israel and Hezbollah later agreed to cease fire. And in sports, Ashmita Chaliha to face Park Ae-yeon in women's single semi-finals of Macau Open Badminton in China tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This disbursal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship.

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम की। उन्होंने कहा कि आइंदा बरसों में भारतीय नौजवान आलमी तरक्की को फरोग देने, इख्तिरा और इंटरप्रेन्योरशिप में कायदाना रोल अदा करेंगे। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से कोयले से अमोनियम नाइट्रेट तैयार करने वाला मुल्क का पहला कमर्शियल प्लांट उड़ीसा के झारसुगुड़ा में कायम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर चलने का हक एक बुनियादी हक है। उसने इसके नफाज के लिए एक इंजिबाती इदारे के क्याम पर जोर दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने, उन्हें तरबियत फराहम करने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने का इल्ज़ाम लगाते हुए अक़वाम-ए-मुत्तहिदा में उसकी सख्त नुक्ताचीनी की है। लेबनान पर इसराइली हमले में 21 अफराद की हलाकत के बाद अमरीका और ईरान के बीच बराह रास्त अमन बातचीत का नया दौर मुलतवी हो गया है। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला जंगबंदी पर मुत्तफिक हुए। और बैडमिंटन में कल चीन में मकाऊ ओपन टूर्नामेंट के खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की अश्मिता चलिहा का मुकाबला पार गायुन से होगा। अब खबरें तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में

0: तकरीब में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम की। PMVBRY के नफाज के तहत तरगीबात तकसीम किया जाना एक अहम संगमील की हैसियत रखता है, जो रोजगार से मुंसलिक हुकूमत की अहम तरगीबाती स्कीम है, जिसका मकसद रोजगार के मौके पैदा करने में तेजी लाना, रोजगार फराहम करने में इजाफा और मुख्तलिफ शोबों में समाजी सिक्योरिटी को वसत देना है। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि 21वीं सदी में उन ममालिक में मौके फराहम होंगे जो हुनरमंदी को फरोग देंगे, इख्तरा में इजाफा करेंगे और क्वालिटी के आला तरीन मेयारात को बरकरार रखेंगे। उन्होंने कहा कि भारत आगे बढ़कर कायदाना रोल अदा करने के लिए तैयार है। जनाब मोदी ने कहा कि आइंदा बरसों में भारतीय नौजवान आलमी तरक्की में इजाफे, इख्तरा और कारोबार को बढ़ाने के सिलसिले में अहम किरदार अदा करेंगे।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: जनाब मोदी ने कहा कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का मकसद पहली मर्तबा रोजगार हासिल करने वालों को बाएख्तियार बनाना और नौजवानों और सनअत के दरमियान एक पुल का रोल अदा करना है। उन्होंने कहा कि उमंगें, हुनरमंदी और भारतीय नौजवानों की सलाहियत विकसित भारत की राह मुतय्यन करती हैं। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि स्कीम के अब तक तकरीबन 70 लाख नौकरियां कायम की जा चुकी हैं।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
0: स्कीम के तहत पहली बार रोजगार हासिल करने वाले 15,000 रुपए तक की तरगीबात के अहल होते हैं, जो उन्हें अफरादी कुवत की हैसियत से तस्लीम किए जाने में अहम मदद फराहम करती है। रोजगार के इजाफी मौके पैदा करने वाले आजिर 3,000 रुपए फी माह तक की तरगीबात के अहल होते हैं, जो फी इजाफी रोजगार पाने वाले के हिसाब से दी जाती है, जिससे रोजगार के पायदार मौके की हौसला अफजाई होती है। इससे कबल तरगीबात की तकसीम से पहले वजीर आजम ने विज्ञान भवन में कुछ नौजवानों से बातचीत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मेहनत और रोजगार के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी हुकूमत ने वर्करों की बहबूद और मफादात की खातिर 4 अहम लेबर कोड नाफिज किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल उड़ीसा में झारगोड़ा के लखनपुर में कोयले को गैस में तब्दील करने के अमल से मुतालिक प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखेंगे। इस प्रोजेक्ट की तखमीना लागत 25,000 करोड़ रुपए है। कोयले की वजारत ने बताया कि यह प्रोजेक्ट मुल्क की पहली कमर्शियल सतह की कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की सहूलत की तारीखी संगे मील की निशानदेही करता है। ये प्रोजेक्ट भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड के जरिए तैयार किया गया है, जो कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एंड कोल इंडिया लिमिटेड का एक मुश्तरका इदारा है। यह देसी साख्ता कोयले को गैस में तब्दील करने के अमल का इस्तेमाल करते हुए 2000 टन योमिया अमोनियम नाइट्रेट की पैदावार करेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अपनी आबाई रियासत के दो रोज़ा दौरे पर उड़ीसा पहुंची। खराब मौसमियाती सूरतहाल के पेश नज़र मयूरभंज जिले की डंडबोस हवाई पट्टी पर उनकी तयशुदा परवास की लैंडिंग मनसूख कर दी गई, जिसकी वजह से पड़ोसी रियासत मगरबी बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस से राय रंगपुर सड़क के जरिए सफर किया। अपनी आमद के फौरन बाद सदर जमहूरिया ने एम्स भुवनेश्वर सेटेलाइट सेंटर और राय रंगपुर में एक मेगा सब डिवीजनल हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। इस पहल से शुमाली उड़ीसा के लोगों के लिए सेहत की देखभाल की मेयारी सहूलत की फराहमी में मदद मिलेगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि भारत की घरेलू सतह पर दिफाई साजो सामान की तैयारी 2014 में 46,000 करोड़ रुपए से बढ़कर गुज़िश्ता माली

0: बरस में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। उन्होंने कहा कि दिफाई साजो सामान की बरामदात जो 2014 से पहले सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए थी वो अंदरूनी मुल्क तैयार करता भारतीय दिफाई साजो सामान की बढ़ती आलमी मांग के सबब बढ़कर तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए हो गई है। जनाब सिंह नागपुर के अंबाझरी में यंत्र इंडिया लिमिटेड की हथियारों की फैक्ट्री में 10,000 टन एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस का संग बुनियाद रखे जाने के बाद खिताब कर रहे थे। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस नए एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस से नागपुर और विदर्भ खित्ते में दिफाई साजो सामान की तैयारी का इको निजाम मुस्तहकम होगा।
1: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज हुक्म दिया है कि चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर पैदल चलने का हक एक बुनियादी हक है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और एएस चंद्रकर पर मुश्तमिल एक बेंच ने फैसला सुनाया है कि एक शहरी का चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर चलने का हक बुनियादी है और उसे मोटर गाड़ियों की आमदोरफ्त पर तरजीह दी जानी चाहिए। एक अहम फैसले में अदालत आलिया ने कहा है कि आर्टिकल 19(1)(d) के तहत आमदोरफ्त के हक की गारंटी का एक हिस्सा है और इसमें आर्टिकल 21 के तहत जिंदगी के हक और जीने की आज़ादी समेत दीगर बुनियादी हकूक शामिल हैं। अदालत उज़्मा का यह फैसला मोटर गाड़ी के एक अफसोसनाक हादसे में मुआवजे के केस में सामने आया है जहां एक बाप ने स्कूल ले जाते वक्त अपने 5 साल बेटे को खो दिया। भारत ने पिछले 12 साल में वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों की बुनियाद पर काबिले ज़िक्र तब्दीलियां की हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों किसानों ख़वातीन और नौजवानों की भलाई और उन्हें बाएख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए खसूसी फ़ीचर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम शुमाल मशरिक में बड़ी तब्दीली लाने से मुतालिक हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम का जायजा ले रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: अगर मुल्क की तामीर और तरक्की की बात की जाए तो शुमाल मशरिक को नज़रअंदाज करना नए भारत में मुमकिन नहीं है। एक वक्त था जब इस खत्ते की पहचान सिर्फ तशद्दुद नाकेबंदी और नज़रअंदाज होने तक महदूद थी, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इसे बदला। गुज़श्ता 12 साल में वज़ीर आज़म ने 83 मरतबा से ज़्यादा शुमाल मशरक़ का दौरा किया है। इस दौरान दूरदराज के पहाड़ी इलाकों तक कनेक्टिविटी बढ़ी है जिसकी वजह से सियाहत को फ़रोग मिला है और आमदनी के मकामी ज़राए से मुतालिक मौाक़े बढ़े हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 47,270 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किए जा चुके हैं और 46,290 किलोमीटर से ज़्यादा का रोड नेटवर्क तामीर किया जा चुका है। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए ईटानगर के डेरा नातुंग के गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एम क्यू खान ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में फिजाई कनेक्टिविटी बेहतर हुई है।
3: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
2: आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में शुमाल मशरक की 8 रियासतें या अष्ट लक्ष्मी तरक्की की नई दास्तान लिख रही हैं। दिल्ली से सुपर्णा साइके की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: भारत ने अक़वाम मुत्तहदा में पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने, उन्हें तरबियत फराहम करने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने का इल्ज़ाम लगाते हुए इसकी शदीद नुक्ताचीनी की है। भारत ने पाकिस्तान को फ्रैंकनस्टीन स्टेट करार देते हुए कहा कि उसे उस वक्त बेपनाह हैरत होती है जब उसका ही राक्षस उसे जकड़ लेता है। ये बातें अक़वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने कल कहीं। उन्होंने ये बातें उस वक्त कहीं जब पाकिस्तान और इस्लामी तआवुन तंजीम OIC ने अक़वामे मुत्तहिदा हाई कमिश्नर की सालाना

रिपोर्ट पर गुफ्तगू के दौरान जम्मू और कश्मीर का मामला उठाया। मोहतरमा सिंह ने कहा कि भारत, पाकिस्तान और ओआईसी के जरिए दिए गए हवाले का जवाब देने के लिए इस हक को इस्तेमाल करने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके मौजूदा वजीर दिफा सरकारी पॉलिसी के तौर पर दहशतगर्दों को पनाह देने, ट्रेनिंग देने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने की बात को बड़े फख्र से बयान करते हैं। मोहतरमा सिंह ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी इल्जामात को यकसर मुस्तरद करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट और कभी अलग न होने वाला हिस्सा था, है और रहेगा। वाहिद हल तलब मसला पाकिस्तान का भारतीय इलाकों पर गैर कानूनी कब्जा और उनकी वापसी है। मोहतरमा सिंह ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास आबी मुआहदे का जिक्र करते हुए इसे फरसूदा करार दिया। इसराइल और हिजबुल्ला जंगबंदी पर रजामंद हो गए हैं। इससे पहले इस लड़ाई के सबब स्विट्जरलैंड में ईरान और अमरीका के दरमियान जारी बातचीत मुलतवी हो गई थी। ये जंगबंदी आज मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे से नाफिजुल अमल हो गई है। अमरीका के एक सीनियर अहदेदार ने कहा है कि अमरीका और कतर के मुजाकरातकारों ने ईरान की मदद से यह समझौता तय किया था। अहदेदार ने कहा कि आज सुबह सवेरे लड़ाई के बाद अब इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान जंगबंदी हो गई है। दूसरी जानिब इसराइल और हिजबुल्ला ने फौरी तौर पर जंगबंदी के नफाज की तस्दीक नहीं की है। इससे पहले आज जनूबी लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान शदीद लड़ाई के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुजाकरात मुअत्तल कर दिए गए थे। बैडमिंटन में भारत की अश्मिता चलिहा आज चीन में जारी मकाऊ ओपन के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई। अश्मिता ने क्वार्टर फाइनल में जनूबी कोरिया की किम मिनसन को सीधे गेम में और 21-16, 21-18 से हरा कर आखिरी 4 में अपनी जगह बना ली है। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला कल जनूबी कोरिया की पार्गायुन से होगा। इससे पहले अश्मिता ने राउंड ऑफ 16 में अमरीका की शिका जयसवाल को 22-20, 21-15 से हरा कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। दूसरी जानी भारत की अनमोल खरब क्वार्टर फाइनल में चीन की चौथी पोजीशन की खिलाड़ी हैन क्विंसी से 14-21, 21-15, 21-13 से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम की। उन्होंने कहा कि आइंदा बरसों में भारतीय नौजवान आलमी तरक्की को फरोग देने, इख्तिरा और एंटरप्रेन्योरशिप में कायदाना रोल अदा करेंगे। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से कोयले से अमोनियम नाइट्रेट तैयार करने वाला मुल्क का पहला कमर्शियल प्लांट उड़ीसा के झरसुगुड़ा में कायम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर चलने का हक एक बुनियादी हक है। उसने इसके नफाज के लिए एक इंजिबाती इदारे के क्याम पर जोर दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने, उन्हें तरबियत फराहम करने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने का इल्ज़ाम लगाते हुए अक़वामे मुत्तहदा में इसकी सख्त नुक्ताचीनी की है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 10 बजने को है। आइए सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
3: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट

0: हो रहा है।
1: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना भेल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूरदराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है। भारत ने पाकिस्तान को फ्रैंकनस्टाइन स्टेट यानी ऐसा देश बताया जो खुद आतंकवाद को बढ़ावा देता है और बाद में उसी का शिकार बनता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने ये बात कही। उन्होंने ये बयान तब दिया जब पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। चीन में मकाओ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi today dispersed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said India is set to lead from the front. Mr. Modi said, India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come.
3: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
2: The Prime Minister also said that during his recent visit to France and Slovakia, he felt the world is gradually recognizing the potential of India's youth. Mr. Modi said, The PM Viksit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and industry. Speaking on the occasion, Union Minister for Labour and Employment, Dr. Mansukh Mandaviya said that the Modi government has implemented the 4 important labour codes for the welfare and interest of the workers. Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of a coal gasification project worth over 25,000

कार्यक्रम माटी के रंग के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कलाकार श्वेता सुष्मिता झा की आवाज में मिथाली गीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मिडी वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित गजानन राज जोशी का राग बहार में वायलिन वादन।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 11 बजने को है, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

0: मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्णन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। आईएक्स पोर्टल, माई IRINN पोर्टल, .IN ऑक्शन पोर्टल और एक AI संचालित हुज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today dispersed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come. Mr. Modi said the PM Vikasit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and the industry.
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
1: Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of a coal gasification project worth over 25,000 crore rupees at Lakhanpur in Jharsuguda district of Odisha tomorrow. The Ministry of Coal informed that the project marks a historic milestone as the country's first commercial-scale coal-to-ammonium nitrate facility. President Draupadi Murmu today inaugurated AIIMS Bhubaneswar Satellite Centre and Mega Health Camp at the Subdivisional Hospital in Rai Rangpur. The initiative is expected to enhance access to quality healthcare services for people across northern Odisha. The President also dedicated several public welfare and infrastructure projects, including a mega integrated piped water supply project for mining affected villages in Kusumi Block. The Supreme Court today ruled that the right to walk on a demarcated footpath is a fundamental right. A bench of Justices P.S. Narasimha and A.S. Chandrukar held that a citizen's fundamental right to walk on a demarcated footpath is primary and shall have priority over movement by motorized vehicles. In a significant verdict, the apex court said it forms part of the right to movement guaranteed under Article 19(1)(d) and other fundamental rights, including Article 21, right to life and liberty. The National Testing Agency, NTA, today said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026 re-examination, which is scheduled for the upcoming Sunday. In a statement, the NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. Meanwhile, the NTA has also launched an official WhatsApp channel for candidates. It said that all official WhatsApp messages will be sent only from its verified number, which is +91 78 27 98 02 87. India has slammed Pakistan at the United Nations as it is accused Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. India called Pakistan a Frankenstein state that gets shocked when its own monster bites back. The remarks were made by Anupama Singh, First Secretary at India's permanent mission to the United Nations yesterday, after Pakistan and the Organization of Islamic Cooperation raised the issue of Jammu and Kashmir during the interactive dialogue on the UN High Commissioner's annual report.
3: This is the country where the sitting defense minister boasts of hosting, training and deploying terrorist state policy, and yet Pakistan calls itself a victim of terrorism. Indeed, a paradox which only Pakistan could sustain. It is a living example of a Frankenstein state which is shocked when its own monster bites back.
1: In badminton, India's Ashmita Chaliha stormed into the women's single semi-final of the Macau Open in China today. Ashmita secured her place in the last four with a straight game victory over South Korea's Kim Min-sun in the quarterfinals. And with that, we end this news bulletin.
4: Yeh, Akashvani Delhi ka Press Channel hai. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. रात्रि के 11:10 हुए हैं. सभी श्रोताओं को मेरा यानी प्रिया का स्नेह भरा नमस्कार. मैं हाजिर हूँ कार्यक्रम आपकी पसंद और आपकी फरमाइश लेकर. दोस्तों, पहला खत लिखना भी कितना खास होता है. हर लफ्ज में एक एहसास होता है. दिल की बातें कागज पर उतर आती हैं और हर पंक्ति में किसी अपने का नाम होता है. तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली पेशकश.

लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत फिल्म शक्ति से। इस गीत की फरमाइश की थी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा हसन, बाबू मिफ्रा, बेबी चाहत ने। साथ ही दिल्ली से इस गीत की फरमाइश की थी मनीष गीतांजलि, तनिष्का प्रियाशी और बेबी वेदांशी ने।

0: जी हाँ दोस्तों, एक खत से शुरू हुई थी प्रेम कहानी। कुछ शब्द थे और थोड़ी सी थी नादानी। पन्नों पर लिखे जज्बात जब दिल तक पहुँचे तो बन गई एक खूबसूरत सी जिंदगानी। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत फिल्म प्रेम कहानी से। इस गीत की फरमाइश की थी चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने, साथ ही पंजाब से खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विशु विशाल लाडी और शालिनी ने।
1: मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है,
2: अच्छा
1: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
2: बाप रे,

धड़कन उसकी याद सुनाती है, फिर ना भूख का पता रहता और ना नींद का ख्याल आता है। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म दस नंबरी से। इस गीत की फरमाइश की थी अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक, और गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद ने।

दोस्तों, जब मोहब्बत दिल में घर कर जाती है ना, तो भूख भी कम, नींद भी उड़ जाती है। हर पल उसी का ख्याल रहता है और दुनिया कहीं पीछे छूट जाती है। आशा भोसला की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म लव स्टोरी से। इस गीत की फरमाइश की थी जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियात रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर ने।

जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग किस्मत से मिलते हैं और दिल में हमें हमेशा के लिए बस जाते हैं। फिर ख्वाहिश सिर्फ इतनी रह जाती है कि उनका साथ उम्र भर यूं ही बना रहे। अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म आशिकी से। इस गीत की फरमाइश की थी एयरपोर्ट रोड वंदना।

नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायणा खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी, स्वाति ने, और साथ ही रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायाब और लड्डू ने।

अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म बेटा से। एक प्यार का साथ निभाना आसान नहीं होता, हर मोड़ पर दोस्तों वफा का इम्तिहान होता है। जो हर हाल में थामे रखे हाथ अपना, वही रिश्ता सच्ची मोहब्बत का नाम होता है। इस गीत की फरमाइश की थी शास्त्री नगर भीड़ शहर से किशन सपकाल, आशा सोनिया और विशाल ने।

उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म आई मिलन की राज से। इस गीत की फरमाइश की थी दिल्ली से सचिन, अंजू, राखी, मनीष, एसपी सिंह और संजय कीर्ति ने।

0: इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। मैं आपकी दोस्त प्रिया अब आपसे विदा लेती हूँ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर 12 बजने को है। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24/7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। अब कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा है कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के बारे में बात की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस

समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की चार नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत के इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी और सत्यापन तंत्र को मजबूत करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्विता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्विता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कीर्तिका है आप सभी को प्रणाम। सुरों का सफरनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ और एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम आप सभी प्यारे श्रोताओं के नाम। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो इतिहास पढ़ते हैं और दूसरे वो जो चुपचाप अपनी बंद कमरों में बैठकर कागज पर कलम चलाकर इतिहास रच देते हैं। संगीत की दुनिया में गायक और संगीतकार तो हमेशा रोशनी देते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे छुपा वो जादूगर जो गानों को रूह देता है, वो होता है गीतकार। आज की महफिल एक ऐसे ही नायाब कलमकार के नाम है जिन्होंने सादगी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड और भारतीय टेलीविजन के सबसे सम्मानित और बहुमुखी लेखकों में से एक, नवाब आरजू साहब की, जिन्होंने बाजीगर और बाजीगर से लेकर रिश्तों के भी रूप बदलते हैं तक हमारे जीवन के हर जज्बात को शब्दों में पिरोया है। तो चलिए अपनी इस बिना रुकावट वाली संगीत में यात्रा का आगाज करते हैं नवाब साहब के लिखे उस ऐतिहासिक गाने से जिसने 90 के दशक में हर धड़कन पर राज किया। सुनिए फिल्म बाजीगर से ये सदाबहार नगमा।

दोस्तों, सचमुच नवाब आरजू साहब शब्दों के जादूगर ही हैं। चलिए अब इस सफर की शुरुआत में सबसे पहले उनके निजी जीवन के उन पन्नों को पलटते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नवाब साहब का जन्म 1 जनवरी 1956 को बिहार के एक बेहद संस्कारी और अदबी माहौल वाले परिवार में हुआ था। बिहार की उस मिट्टी में जहाँ लोकगीतों की मिठास और उर्दू हिंदी शायरी की सादगी रची बसी थी, नवाब साहब का बचपन वहीं बीता। उन्हें बचपन से ही किताबों, गजलों और कविताओं का बेहद शौक था। घर में जब भी अदबी महफिलें जमती, नवाब साहब चुपचाप बड़ों की बातें सुनते और शब्दों के उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश करते। अपनी स्कूली और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। उनके दोस्त बताते हैं कि कॉलेज के दिनों में ही उनकी लिखी नज़में और शेर पूरे परिसर में मशहूर हो चुके थे, लेकिन बिहार की उस शांत फिजा से निकलकर माया नगरी मुंबई तक का सफर कैसा रहा, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुनते हैं उनके कलम से निकला ये बेहद सुरीला और रोमानी गीत।

आप सुन रहे हैं सुरों का सफरनामा, सिर्फ और सिर्फ मेरे यानी कीर्ति के साथ, जहां आज बातें हो रही हैं नवाब आरजू साहब की। दोस्तों, जब नवाब साहब अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने और हाथों में अपनी शायरी की डायरी लेकर मुंबई पहुंचे, तो राहें आसान नहीं थी। 70 और 80 के दशक का वो दौर ऐसा था जहां पहले से ही बड़े बड़े दिग्गज गीतकार अपनी जगह बनाए हुए थे। नवाब साहब हफ्तों और महीनों तक स्टूडियोज

चक्कर लगाते, डायरेक्टर्स और म्यूजिक कंपोजर से मिलते, उन्हें अपनी नज़में सुनाते। शुरुआती दिनों में उन्हें छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स मिले, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका मानना था कि अगर आपके शब्दों में सच्चाई है तो वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगी, और ऐसा ही हुआ। 90 के दशक की शुरुआत में जब बॉलीवुड में रोमांटिक म्यूजिक का दौर दोबारा लौट रहा था, तब नवाब साहब की मुलाकात उस दौर के उभरते हुए संगीतकारों से हुई। उन्होंने फिल्मों में सिर्फ रोमांटिक गाने ही नहीं लिखे, बल्कि गानों में छुपे दर्द और तड़प को भी बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया, जिसने निर्देशकों का ध्यान उनकी तरफ खींचा। आइए सुनते हैं उनका लिखा एक और बेहतरीन नगमा।

दोस्तों, साल 1991 में आई फिल्म डांसर के बाद नवाब आरजू साहब के काम को नोटिस किया जाने लगा था, लेकिन उनकी ज़िंदगी और करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आना अभी बाकी था। साल 1993 में निर्देशक अब्बास मस्तान एक थ्रिलर फिल्म बना रहे थे बाजीगर। इस फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी अनु मलिक के पास थी। फिल्म के टाइटल ट्रैक को लिखने के लिए एक ऐसे गीतकार की तलाश थी जो फिल्म के ग्रे शेड हीरो को किरदार के रोमांटिक अंदाज में ढाल सके। नवाब आरजू साहब ने जब बाजीगर और बाजीगर के बोल लिखे थे तो अनु मलिक और दोनों डायरेक्टर्स दंग रह गए। इस गाने ने रिलीज होते ही धूम मचा दी थी। ये गाना न सिर्फ उस साल का सबसे बड़ा हिट साबित हुआ, बल्कि इसने शाहरुख खान के करियर को एक ऊंचाई दी और नवाब आरजू को रातों रात बॉलीवुड का ए लिस्ट गीतकार बना दिया। इसके बाद नवाब साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चलिए उस दौर की यादों को ताज़ा करते हैं और सुनते हैं उनकी लेखनी से सजा एक और दिलकश गीत।

थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी। इस गाने की सादगी आज भी हर प्रेमी जोड़े के दिल को छू लेती है। दोस्तों, नवाब साहब की प्रतिभा सिर्फ हिंदी सिनेमा के ओरिजिनल गानों तक सीमित नहीं रही। जब 2000 के दशक में साउथ इंडियन सिनेमा की फिल्मों का हिंदी में डब होने का चलन शुरू हुआ, तो मेकर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी गानों के मूल अर्थ और उनकी आत्मा को बिना बदले उन्हें हिंदी में ढालना। इस मुश्किल काम के लिए मेकर्स ने नवाब आरजू साहब पर भरोसा जताया। उन्होंने पुरी जगन्नाथ और सुकुमार जैसे दिग्गज निर्देशकों की ब्लॉकबस्टर फिल्मों जैसे देशमुद्रु और आर्या 2, पंचाक्षरी के हिंदी सब डब वर्जन किए के लिए गाने लिखे, बल्कि कई फिल्मों के डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले पर भी काम किया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि भाषा चाहे कोई भी हो, जज्बात हमेशा एक जैसे होते हैं। चलिए सुनवाते हैं इसी कमाल के सफर से जुड़ा एक और सुरीला ट्रैक।

आप सुन रहे हैं सुरों का सफरनामा कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ कीर्ति। नवाब आरजू साहब के सफरनामा की ये दास्तान अब उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां उन्होंने एक नया इतिहास रचा। साल 2000 के आसपास भारतीय टेलीविजन का चेहरा पूरी तरह बदलने वाला था। एकता कपूर और उनका प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स दूरदर्शन के दौर से निकलकर सैटेलाइट टीवी पर डेली सोप्स का एक नया साम्राज्य खड़ा कर रहा था। एकता कपूर का मानना था कि उनके सीरियल्स का टाइटल ट्रैक ऐसा होना चाहिए जो शो की पूरी कहानी को बयां कर दे और दर्शकों को सीधे बांध ले। इस बेहद जिम्मेदारी भरे काम के लिए उन्होंने चुना नवाब आरजू साहब को। नवाब साहब ने जब लिखना शुरू किया तो उन्होंने टीवी के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये गीत ऐसा था जिसने हर भारतीय घर के ड्रॉइंग रूम को एक नया एहसास दिया। अब आपको सुनवाते हैं इन्हीं का लिखा एक और गीत और इसके बाद करेंगे और भी बातचीत।

नवाब आरजू साहब टेलीविजन इंडस्ट्री के सबसे महंगे और डिमांडिंग लेखक बन गए, क्या क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि टाइटल ट्रैक व और भी टीवी कार्यक्रमों के गीत लिखने के बाद तो जैसे बालाजी टेलीफिल्म्स और नवाब आरजू की जोड़ी ने सुपरहिट टाइटल्स की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहानी घर घर की, कुटुंब, कुसुम, कसम से और बड़े अच्छे लगते हैं जैसे दर्जनों मेगा हिट सीरियल्स के टाइटल सॉन्ग्स लिखे। आप सोचिए, रोज शाम को करोड़ों लोग उनके लिखे शब्दों को सुनते थे। टीवी राइटिंग के इस दौर में नवाब साहब ने सिर्फ गाने ही नहीं लिखे, बल्कि कई सीरियल्स के महत्वपूर्ण जोड़ों के लिए शायरी और संवाद भी लिखे।

दोस्तों, जब कोई कलाकार इतनी शिद्दत से और इतना बेहतरीन काम करता है तो पुरस्कार और सम्मान खुद ब खुद उसके कदम चूमने चले आते हैं। नवाब आरजू साहब को उनके इस बेमिसाल योगदान के लिए इंडस्ट्री में कई बड़े सम्मानों से नवाजा गया। फिल्म बाजीगर के लिए जहां उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में खूब सराहना मिली, वहीं टेलीविजन की दुनिया में तो उन्होंने अवार्ड्स की लाइन लगा ली। उन्हें इंडियन टेली अवार्ड्स और स्टार परिवार अवार्ड्स में कई बार बेस्ट लिरिसिस्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कई सांस्कृतिक मंचों और साहित्य अकादमियों ने भी उन्हें भाषा की सादगी को बनाए रखने और शायरी को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए गौरव सम्मान दिए। आइए सुनते हैं उनका एक और सुरीला गीत।

0: और दोस्तों, इसी खूबसूरत नगमे के साथ वक्त आ गया है आज की इस महफिल को यहीं पर थामने का। ये वक्त नवाब आरजू साहब के खूबसूरत अल्फाजों के साए में कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। बिहार की गलियों से शुरू हुआ एक आम लड़की का सफर आज भारतीय मनोरंजन जगत के इतिहास का एक सुनहरा अध्याय बन चुका है। हम नवाब साहब की अच्छी सेहत की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी कलम इसी तरह आने वाले कई दशकों तक हमें जिंदगी के नए मायने सिखाती रहेगी। आज के शो सुरों का सफरनामा कार्यक्रम में बस इतना ही। अब अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे अन्य कार्यक्रम पर। फिलहाल रात्रि के 1 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के विषय में बातचीत की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि

राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर। मध्यरात्रि के 1:10 हुए हैं। गीत सुनहरे, गोल्डन एरा के पुराने गीत आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ कीर्ति। सबसे पहला गीत फिल्म आनंद से, जिसमें आवाज है मन्ना डे की, बोल योगेश के हैं और संगीत से पिरोया है सलील चौधरी ने।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: जी हाँ, जिंदगी तो ऐसी ही है कि कभी आपको हंसाती है और कभी रुला देती है। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में आपको सुनवाएंगे, फिल्म है कटी पतंग। ये भले ही शाम नहीं रात का सफर है, लेकिन इस गीत के जरिए आप जानेंगे कि ये शाम कितनी मस्तानी है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कौन सा गीत आपको सुनवाने वाले हैं हम। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

फिल्म धरती से आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये गीत। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा था और शंकर जयकिशन ने संगीत दिया था। अब आपको दीवानेपन की ओर लेकर चलते हैं, जो कि आप सुनेंगे गीत महबूब की मेहंदी से। फिल्म किशोर कुमार की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया है संगीत।

ये खूबसूरत गीत इंदीवर का लिखा हुआ था। कल्याण जी आनंद जी ने संगीत दिया था और मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे पूरब और पश्चिम से ये गीत। अगला गीत आ रहा है लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की आवाजों में, फिल्म है एक दूजे के लिए। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

दोस्तों, आपका दिल है या शीशा, ये आपको तय करना है। लेकिन जो गीत आपको सुनवाने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है।

जी हाँ, हमने कहा ही था कि ये कुछ ऐसा ही कहना चाह रहे हैं कि शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। लेकिन जब दिल टूटता है, तभी प्यार की जो अहमियत है वो समझ आती है। आप को अब अगला गीत सुनवाते हैं, उषा मंगेशकर और कल्याणी की आवाज़ों में।

बताओ, नाम बताओ, क्या किया है काम बताओ। बारिश में ये भीग रहा था, बिन परमिट के छींक रहा।

0: इसका काम, इसकी हरकत, जुर्म बताओ, हम करें मरम्मत।
1: सड़क पे चलते चलते छिलके पे गिर पड़ा था और मुझसे दो कदम पर ये संतरी खड़ा था। इसने नहीं बचाया, मुझको नहीं उठाया, रस्सी से बांध कर ये दरबार में ले आया।
0: वीरों की इस धरती पर अब ऐसे लोग भी रहते हैं। इस देश का फ्यूचर क्या होगा, हिस्ट्री में क्या कुछ कहते हैं। गिरे तो बस एक छिलके पर और छिलका भी एक केले का। इस देश में ऐसा वीर भी है, ना दमड़ी का ना ढेले का। किसी भी चिकनी फिसलन पर 6 बार ले जाओ, गिराओ इसको। जिस केले पर ये फिसला है वो केला

0: चक्कर है सर, घन चक्कर।
1: घन चक्कर,
0: घन चक्कर, सुनासा सुनासा सुनाई देता है। ये शायर है सर, दुआ देता है या दुहाई देता है, सभी काम उल्टे हैं इसके हुजूर। रात को जागता है, सुबह सोता है, गम अगर इसका अपना हो तो हंसता है, दूसरे का मिले तो बहुत रोता है।
1: समझे।
0: यही है वो हजरत, बोलते कुछ नहीं, शोर करते हैं ये, सोचते हम हैं, वोर करते हैं ये, कोई कानून ये मानते ही

रोको इन्हें, और करते हैं ये, खुद तो करते नहीं, सब कराते हैं ये, पेन में बारूद भर के चलाते हैं ये। ईश, इनका साया भी रहने न दो पास में, दफन कर दो इन्हें, जाओ इतिहास में।

हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत। फिल्म कुदरत से किशोर कुमार की आवाज़ है। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था और संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। हाँ, ये सुनते हैं। हमें तुमसे प्यार कितना।

इसी तरह अगर कोई प्यार का इजहार कर दे तो मना कौन कर सकता है। और इसी तरह आप सुन रहे थे ये गीत, और इसी के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम, पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त, और सुनते रहिए हमारे अन्य कार्यक्रम। ये आर लाइव न्यूज़ 24।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के बारे में बात की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। भारत के वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का अगला उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के जॉयल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। इससे पहले वे FATF में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल के वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के उपाध्यक्ष चुने जाने को भारत के लिए एक बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का समर्थन करता रहा है। ऐसे में ये नेतृत्वकारी भूमिका वैश्विक आतंकवादी फंडिंग नेटवर्क से निपटने और गैर कानूनी वित्तीय प्रणालियों को खत्म करने के प्रयासों को और मजबूत करती है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरलम और माही में भी मंगलवार तक बारिश का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है। भारत ने पाकिस्तान को फ्रैंकनस्टाइन स्टेट यानी ऐसा देश बताया जो खुद आतंकवाद को बढ़ावा देता है और बाद में उसी का शिकार बनता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एआरलाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 2:10 हुए हैं। मैं हूं आपके साथ कीर्ति और नॉनस्टॉप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं, गीत बहार। जी हां, इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह आपके लिए गानों की जो लिस्ट है वो तैयार है और बैक टू बैक गीत आप तक आने वाले हैं। तो इस सफर में मैं और आप एक दूसरे का साथ निभाएंगे 3 बजे तक। तो साथ रहिएगा और एंजॉय करिए इन गीतों को।

इसी के साथ हम चलते हैं और गीत बहार का कार्यक्रम यही समाप्त करने की अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इजाजत। रात्रि के 3 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।

0: 790 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवरब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के बारे में बात की। भारत के वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का अगला उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के जाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे जो जुलाई 2025 से इस पद पर कार्यरत हैं। श्री अग्रवाल वर्तमान में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले भी वे FATF में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं। ये फैसला 17 से 19 जून तक हुई FATF की बैठक के दौरान लिया गया। विदेश मंत्रालय ने संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल के वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के उपाध्यक्ष चुने जाने को भारत के लिए एक बड़ी जीत बताया है। लंदन के पास बेडफोर्डशायर इलाके में दो ट्रेनों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। लंदन के टाइम्स अखबार ने बताया है कि बेडफोर्ड अस्पताल के कर्मचारियों को लगभग 50 घायलों के बारे में सूचित किया गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि दोनों ट्रेनों की टक्कर में मारे गए व्यक्ति के परिवार के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अभी आप सुन रहे थे गीत और गजल का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक सुबह के 4 बजने को हैं। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। कलाकार हैं अंजना सुधाकर और मालाडी वासावी।
1: लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। वक्त हो चला है 4:13। श्रोताओं, आइए सुनते हैं नाद ब्रह्म कार्यक्रम में चारण्या लक्ष्मी कुमारन की प्रस्तुति। वायलन पर संगत कर रहे हैं जी राघवेंद प्रसाद, जबकि मृदंगम पर संगत की है R. नारायणन ने।

श्रोताओं, नाद ब्रह्म कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने चारण्या लक्ष्मी कुमारन की प्रस्तुति सुनी। वायलन पर जी राघवेंद्र प्रसाद, जबकि मृदंगम पर आर नारायणन ने संगत की थी। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 जून 2026 सुबह के 4:53 और 55 सेकेंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। पांच बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, जबकि पांच बजकर बीस मिनट पर आप देशभक्ति संगीत का आनंद ले सकते हैं।

5:30 का वक्त होगा कार्यक्रम स्वर रंजनी का, जिसके अंतर्गत आज आप रोहित प्रसन्ना द्वारा बजाए बांसुरी पर राग नट भैरव सुनेंगे। 6:00 का वक्त होगा हिंदी में समाचार का, जबकि अंग्रेजी में समाचार आप 6:05 पर सुन सकते हैं।

6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना, जबकि 6:40 का वक्त होगा कार्यक्रम चिंतन का। 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रामचरित मानस।

0: सुबह के 5 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिन की पश्चिम बंगाल यात्रा पर रहेंगे। राज्य में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनने के बाद ये उनकी पहली यात्रा है। इस यात्रा के दौरान वे हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे और स्वदेश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्रालय ने संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल के वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुने जाने को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त करने की नीति का समर्थन करता है, ऐसे में ये नेतृत्व भूमिका आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय प्रणालियों को खत्म करने के प्रयासों को और मजबूत करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी का उल्लेख किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि एक महत्वपूर्ण फैसले में ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। लंदन के पास बेडफोर्डशायर इलाके में 2 ट्रेनों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टामर ने हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दोहा डायमंड लीग में भारत के स्टार ट्रैक एंड फील्ड एथलीट और जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतन में 4th स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिससे वह अपने सीजन के पहले इवेंट में 4th स्थान पर रहे। वहीं श्रीलंका के स्टार और विश्व शीर्ष खिलाड़ी रोमेश थनंगा पथिरागे ने 88.68 मीटर के थ्रो के साथ खिताब जीता। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका ग्रुप डी के एक मैच में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट चरण में पहुंच गया है। कैमरून बर्गेस के आत्मघाती गोल और एलेक्स फ्रीमैन के हेडर से अमेरिका ने पहले हाफ में ही 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। 2 मैचों में 2 जीत के साथ अमेरिका नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई करने वाली मैक्सिको के बाद दूसरी टीम बन गई है। फुटबॉल विश्व कप में आज 4 मैच होने वाले हैं। ग्रुप बी के मैच में स्कॉटलैंड का मुकाबला मोरक्को से और ग्रुप सी के मैच में हैती का सामना ब्राजील से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शिवांगी। Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Paharpur village in Mayurbhanj district on the occasion of the president's 68th birthday. The two leaders will later address a massive public gathering marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led government of Odisha. During the program, they will launch development projects worth over 47,600 crore rupees at Rai Rangpur in Mayurbhanj. In West Bengal, Mr. Modi will participate in Paschim Banga Divas, West Bengal Day, celebrations at Tarkeshwar in Hooghly district today. He is also scheduled to launch Dedicate to the Nation and lay the foundation stone of multiple development projects in the state. Mr. Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan. Under this installment, more than 18,880 crore rupees will be transferred directly into the bank accounts of over 9.44 crore farmers across the country. Prime Minister Modi dispersed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi yesterday. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, "In the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation, and uphold the highest standards of quality." He said India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation, and entrepreneurship in the years to come. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has stressed that India must optimize relationships across geographies while pursuing its national interests, strategic autonomy and multipolarity,

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी सांस भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें और सांस भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं, सांस छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं, पुनः सांस भरते हुए दाहिना पांव यानी कि जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी सांस लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में

तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे 3 श्वास पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी 3 श्वास का अभ्यास करें और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें। कहां शरीर के किस भाग पर इंपैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे 3 श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी 1 आवृत्ति। इसी आवृत्ति को 2-3 बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी श्वास से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। तो आज एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोअर बॉडी के हिप्स के नीचे के हिस्से को, वेस्ट से नीचे के हिस्से को सक्रिय रखती है, अकड़न जकड़न से दूर रखती है। अर्थात आप सब समझ गए होंगे हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, तितली अभ्यास की बात कर रहे हैं। तितली आसन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट है। तितली वाला अभ्यास हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कुर्सी पर तो हम बैठ नहीं सकते, आवश्यक है एक प्लेन स्थान का चुनाव करके सीधे बैठ जाएं। अपने दोनों पैरों को आगे फैलाएं, दोनों हथेलियों को जंघा के बराबर में रखें, पैरों को थोड़ा हिला लें, आगे पीछे मूव कर लें, पैरों में थोड़ी शिथिलता दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। एक दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर उठा के रखें और धीरे धीरे घुटने को पकड़ के, एक दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ के ऊपर नीचे हिलाएं, ऊपर नीचे करें। श्वास के साथ श्वास लेते हुए नीचे की ओर दबाएं, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लाएं। कम से कम 15 आवृत्ति ऊपर नीचे 15 बार उसको घुमाएं, ऊपर नीचे करें। ऊपर करते समय अपने वक्ष तक मिलाएं और नीचे ले जाते समय धरती से मिलाएं। 15 आवृत्ति के बाद वापस आ जाएं। इसी क्रिया को फिर दूसरे पैर से दोहराएं, यानी कि दाहिना पैर सीधा और बायां पांव आप उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर रखें, दाहिने हाथ से पैर के पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ से घुटने के ऊपर दबाएं, प्रेशर डालें। अर्थात श्वास लेते हुए नीचे की ओर ले जाएं घुटने को और श्वास छोड़ते हुए अपने वक्ष की तरफ लाएं। इस आवृत्ति को भी कम से कम 15 बार दोहराएं। ऊपर नीचे करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि खुलने लगा है हमारी जंघाओं का पेल्विक हिस्सा।

पेल्विक फ्लोर, फिर पैर को सीधा कर दें। अब दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, धीरे धीरे खींचते हुए अपने पेल्विक रीजन की तरफ, जंघाओं की तरफ लाएं, पैर मोड़ दें, सुखासन जैसे अवस्था, लेकिन दोनों पैर के अग्रभाग मिले हुए, और दोनों हाथों से पकड़ लें अग्रभाग को, पैर के अग्रभाग को दोनों हाथों से पकड़ लें, अपने पेल्विक फ्लोर के ज्यादा से ज्यादा एड़ियों को करीब लाएं, और सामान्य श्वास के साथ अपने घुटनों को नीचे ऊपर हिलाएं, अर्थात थोड़ी देर के लिए तितली बन जाएं। अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएंगे, धीरे धीरे आपकी जंघा की मांसपेशियां स्वस्थ होती जाएंगी, पैरों की अकड़न जकड़न दूर होती जाएगी। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा अपने देश और विदेश की माता और बहनों से कि उन्हें तो यह अभ्यास रोज करना चाहिए। ये महिला जनित रोगों से मुक्ति दिलाने वाला अभ्यास है। जो महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को प्रॉब्लम होती है मेंसुरेशंस के दौरान, पीरियड के दौरान, और भी कोई महिलाओं के रोग हो सकते हैं, गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब में लाभकारी अभ्यास है ये तितली का अभ्यास। तितली की क्रिया आप दोहराएं और अपने पेल्विक फ्लोर को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाकर पूरे जंघा को, पैरों को शक्तिशाली बनाएं, और जीवन का शक्तिशाली होते हुए ही आनंद उठाएं। धन्यवाद।

श्रोताओं, स्वर रंजनी कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए रोहित प्रसन्ना द्वारा बजाए बांसुरी पर राग नट भैरव।